योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठ करके सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए,

समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि ही मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जा करके एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं,

0: तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं योग के माध्यम से पानी की उपयोगिता। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि योग के माध्यम से पानी की उपयोगिता भला क्या हो सकती है। बिल्कुल, पानी सभी को पता है कि जल ही जीवन है, और योग के माध्यम से जल ही जीवन को और अच्छे से हम आपको विस्तार से बताएंगे। योग, सभी को पता है कि जब हम योग करते हैं तो हमारे संपूर्ण शरीर का विकास होता है। विकास, हम अपने आप को विकसित करते हैं, हम अपने आप को जानते हैं, हम अपने आप को पहचानते हैं। योग ही एक ऐसा माध्यम है जब हम अपने आप से मिलते हैं। साधारणता अगर हम ये कहें कि योग का मतलब क्या होता है, तो वो होता है जोड़ना। तो आज हम पानी से, हम जल से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे। सुनने में कुछ ऐसा आपको एक अद्भुत सा लग रहा होगा कि योग और जल, योग और पानी, पानी और योग का मेल तो है ही नहीं। लेकिन आज हम योग के माध्यम से ही पानी का महत्व बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज्यादा थके होते हैं, बहुत ज्यादा निराश होते हैं, हमें लगता है कि अब हमारे शरीर में स्फूर्ति नहीं है, हमारा काम करने का मन नहीं होता है। अमूमन हम उन सभी के लिए कहना चाहेंगे जो लगातार 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे का मतलब ये हुआ सुबह से लेकर के रात तक, उनके लिए कहीं विश्राम करने की कोई जगह नहीं हो पाती है, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से। हम अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने शरीर को आराम देने की बजाय हम उनसे 100 में 90% काम लेने की सोचते रहते हैं। लेकिन इसी बीच में जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है वह होता है हमारे शरीर में पानी की अथवा जल की कमी। इसीलिए हमने कहा कि सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि योग और जल एक साथ मिलकर के हम आपके लिए एक नई और अद्भुत स्फूर्ति लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि जल हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जैसे हम एक लाइन में भी पढ़ते आ रहे हैं, जल बिन मछली न रहन। तो आपको पता है कि जब मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, ऐसे ही एक मनुष्य भी जल के बिना नहीं रह सकता है। हमारे शरीर में पानी का उपयोग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी पीने से समग्र स्वास्थ्य को कई लाभ होने लगते हैं, और यह कई प्रकार की शारीरिक कार्यों पर भी प्रभाव डालता है, जिसमें सर्वप्रथम जोड़ों को चिकना बनाना, पसीना लाकर शरीर का तापमान नियंत्रित करना, पाचन में सहायता करना, अपशिष्ट को बाहर निकालना, वायु मार्ग को खुला रखना और वजन कम करने में सहायता शामिल करना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जोड़ों को चिकना पानी के माध्यम से? जी हाँ, मैं आज आपको यह सर्वप्रथम बता देना चाहती हूँ कि जिन लोगों को जोड़ों की दर्द की समस्या है, वह अगर अभी से ही पानी को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना ले, यानी कि एक महत्वपूर्ण अंग बना ले, तो अभी से ही अगर आपको शुरुआती तौर है जोड़ों में दर्द, तो वो नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब हमें जोड़ों में दर्द होता है तो हम सीधे जाते हैं, उसका एक्सरे करवाते हैं, एक जेरोक्स कॉपी जब बाहर आती है तो घुटने का आकार हमारे पैर के आकार से बड़ा हो चुका होता है। उसका कारण ये है कि उसमें चिकनाई जो होती है वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। पानी के माध्यम से हमारे जोड़ों में, चाहे वो हाथ हो या पैर हो, उसमें चिकनाई पहुंचाने का कार्य पानी ही करता है, जिसकी वजह से उसमें चलन में, उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें, जब हम अपने घर में खिड़की दरवाजों को देखते हैं तो खिड़की और दरवाजों के मध्य में एक रोलर होता है। रोलर में काफी समय के बाद, यानी कि जब हम नया घर में कुछ बनवाते हैं तब तो वो रोलर बहुत ही अच्छे से काम करता है, लेकिन कुछ सालों के बाद में उस रोलर से आवाजें आने लगती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ग्रीसिंग करते हैं, हम उसमें ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीस लगवाते हैं, फिर से वह उसमें चिकनाई को डालते हैं ताकि वह बहुत ही स्मूथली से चलने लगे। ये उपयोग हमने इसलिए आपको बताया क्योंकि हमारे शरीर के कुछ अंग भी रोलर के माध्यम से ही चलते हैं, जहां जिसको हम जोड़ कहते हैं, चाहे वो हाथ के हों, पैर के हों, हाथों की उंगलियां, गर्दन के पास, ये सारे जो जोड़ हैं, हमें इसमें चिकनाई की आवश्यकता होती है, ग्रीसिंग की आवश्यकता होती है, और ग्रीसिंग हमें पानी के माध्यम से ही मिलती है। काफी लोगों को यह जानकारी है कि यदि हम ऑयल खाएंगे, हम घी खाएंगे, तभी हमें हमारे जोड़ों में ग्रीसिंग का काम करेगा। बिल्कुल, हमें हर एक दिन में, यानी कि ज्यादा घी तेल का इस्तेमाल न करते हुए, सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में एक चम्मच देसी घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बाकी काम हमारा जो पानी है वो ग्रीसिंग का काम कर देता है। जिन भी लोगों को अभी से, अगर जैसे 40 प्लस जो हैं, उन्हें अगर जोड़ों में दर्द होने लगा है, हाथ पैरों में दर्द होता है, तो वह पानी की मात्रा को अभी से ही बढ़ा दें। पानी हमारे लिए इतना आवश्यक है कि कई बीमारियां सिर्फ और सिर्फ पानी के उपयोग से, पानी के निरंतर उपयोग से ठीक हो सकती हैं, जिसमें हम कई फायदे आज आपको बताएंगे। पानी पीने के कई शारीरिक कार्यों के लिए जरूरी है। आपको बताया हमने कि चिकनाई देना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना भी महत्वपूर्ण कारण है पानी का। किडनी को नुकसान से बचाना बहुत आवश्यक होता है, जिसमें सबसे पहले आता है पानी की आवश्यकता। जब हम पानी ठीक से पीते हैं तो हमें यूट्रस पे होने वाली जितने भी प्रभाव होते हैं वह धीरे धीरे कम होने लगते हैं। पानी का उपयोग हमने क्या कहाँ देखा है, सबसे पहले पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन को धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, फल सब्जियां और अपने आप को साफ रखने के लिए। तो सोचिए, जब हमें ये बाहरी तौर से पानी का उपयोग इतना महत्व दे सकता है, तो जब हम इंटरनल पानी का यूज करेंगे तो हमारे ऑर्गन्स, यानी हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो किस तरीके से शुद्ध क्यों नहीं होंगे। पानी का उपयोग हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि हमें शारीरिक गतिविधि जो भी हम पूरे दिन में करते हैं उसमें हमें वो लाभदायक हो। शारीरिक गतिविधि के कारण, आपके आसपास के वातावरण के कारण, या बुखार आने के कारण आपको पसीना आता है, आपका शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि आपका पसीना वाष्पित हो जाता है, जिसमें पानी ही सबसे ज्यादा हमें मदद करता है। आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पानी आपकी सेहत का प्राकृतिक डॉक्टर है, जिसे हमारी सेहत भी इससे बूस्ट हो सकती है। पानी के बिना एक भी दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब शरीर को पानी की आवश्यकता होती है तो प्यास के माध्यम से ही शरीर इसका संकेत देता है। जल ही जीवन है, ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जल हमारे लिए कितना जरूरी है ये हमें उस दिन पता चलता है जब हमें प्यास लगी होती है और हमें पानी नहीं पीना होता है। शरीर को पानी की आवश्यकता होती है तो प्यास के माध्यम से इसका संकेत होता है और हम जान जाते हैं कि हमारी बॉडी को यह हाइड्रेट मांग रहा है। पानी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, जिससे कि बॉडी के तमाम फंगस सही से, फंक्शंस सही से कार्य करते हैं। सबसे पहला हमने आपको बताया कि यह जोड़ों को ल्यूब्रिडेट करता है, दूसरा ये सलाइवा और म्यूकस बनाते हैं। सलाइवा हमको सभी को पता है, नेशनल लाइब्रेरी और ऑफ इंडिया मेडिकल के अनुसार सलाइवा हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, मुंह, नाक और आंखों को नम रखता है, साथ ही यह घर्षण और शक्ति को रोकता है। पानी पीने से मुंह पूरी तरह से साफ रहता है क्योंकि पानी मुंह खाना फंसने नहीं देता। शुगरी ड्रिंक के बजाय इसका उपयोग दांतों की सड़न को भी रोकता है। यह पूरे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 90% से अधिक पानी हमारी बॉडी में होता है, यह सभी को पता है। ब्लड शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी को पीते हैं तो आपकी ब्लड क्वालिटी को भी यह प्रभावित करता है। पर्याप्त मात्रा में हमें पानी जरूर पीना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, त्वचा स्वास्थ्य और सुंदरता को बढ़ाता है। शरीर में पानी की कमी से त्वचा संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। समय से पहले त्वचा झुर्रियों के अधिक संवेदनशील हो जाती है। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखने का प्रयास करें। इससे आपकी त्वचा तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचता है और आपकी स्किन यंग और ग्लोइंग रहती है। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और अन्य संवेदनशील अंगों को प्रोटेक्ट भी पानी ही करता है। हमारे सर की संरचना और कोकार को प्रभावित करता है। यह हार्मोन्स के उत्पादन में भी शामिल होते हैं। ऐसे ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखें और हमारा और आपका, हम सभी को स्वास्थ्य के प्रति हमेशा से सचेत रहना चाहिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं पानी के माध्यम से योग हमारे लिए कितना जरूरी है। हमने हमेशा से बताया है कि जब हम योग करते हैं तो पानी का जो सेवन होता है वह संपूर्ण मात्रा के लिए हमें थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पानी की कमी के कारण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। योग उन बीमारियों को दूर करता है। योग और पानी दोनों का समावेश हो जाए तो हमारा शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ बन सकता है। योग कई प्रकार से हम करते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जयी, अग्निसार, भ्रामरी, भस्त्रिका। ये सारे प्राणायाम हमारे इंटरनल अंगों को स्वस्थ रखता है और पानी भी अगर हम नियमित रूप से पीते हैं तो वह भी हमारे इंटरनल सभी अंगों को स्वस्थ व हाइड्रेट रखता है। तो हुआ ना योग के माध्यम से पानी का उपयोग। तो आज हमने सीखा कि पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी में से जिन भी लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी अगर दुख रोग है या कोई भी परेशानी है तो पानी सिर्फ पीने से आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। मिलेंगे हम फिर एक नए सीरीज में, एक नए योगा वाले चैप्टर में। आज के लिए बस इतना ही। करें योग, रहें निरोग। आइए अब हम बताने जा रहे हैं आपको कपालभाति प्राणायाम के कुछ प्रमुख फायदे, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। तो सबसे पहले कपालभाति के शारीरिक लाभों की ओर चलते हैं। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, एलर्जी में ये लाभ देता है। रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर करता है। मोटापा नियंत्रित करता है और पेट की चर्बी घटाने में भी यह सहायक सिद्ध होता है। लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने में यह बहुत ज्यादा मददगार रहता है। शारीरिक लाभों में बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिसे हम शुद्ध प्राणायाम भी कहते हैं, यानी कि कपालभाति को हम एक और नाम से जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, शक्तिशाली श्वास क्रिया और शुद्धि प्राणायाम, कपालभाति, मोमबत्ती आसन, ऐसे ही कपालभाति के बहुत ही नाम हैं। लेकिन फायदा एक,
0: दूसरा लाभ की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है मानसिक लाभ। तनाव, चिंता, डिप्रेशन को कम करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग को ठंडक और शांति प्रदान करता है। मानसिक लाभ में यह आसन प्राणायाम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ही हम आगे की क्रियाओं को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य और दिनचर्या के लाभ। चेहरे पर प्राकृतिक चमक आता है, बाल और त्वचा स्वस्थ रहते हैं, आंखों की रोशनी में भी सुधार होता है। आध्यात्मिक और ऊर्जा के लाभ। शरीर के नाड़ियों की शुद्धि करता है, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है, जिससे ध्यान और साधना में मदद मिलती है। शरीर और मन में प्राण शक्ति का संतुलन बरकरार रखता है। कपालभाति को सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है। शुरुआत में 2 से 3 मिनट में शुरू करके धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक यह आसन किया जा सकता है। तो आइए हमसे फिर मिलेंगे एक नए आसन के फायदे, एक नए योग क्रिया को लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।
2: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का।

सुप्रभात साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने सुबह के कार्यक्रम में, जो कि भक्तिमय कार्यक्रम है पहली किरण, जो लेके आ गई है आपकी आरजे आकांक्षा। आज की सुबह हम लेकर आए हैं एक विशेष विषय, भक्ति की शक्ति। भक्ति, भक्ति वो शक्ति है जो इंसान को भगवान से जोड़ देती है, कभी प्रेम के रूप में, कभी सेवा के रूप में, कभी बलिदान और ईमान के रूप में। हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर सभ्यता में भक्ति की यही लौ जलती रहती है। आज हम इस अनोखे सफर में हर धर्म से किसी न किसी महान भक्त की कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि भक्ति आखिर इतनी शक्तिशाली क्यों है।

भक्तों को भगवान से भी बड़ा कहा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, भक्त बड़े भगवान से कही तुलसीदास, बलिहारी भगवान की जो भय भक्त के दास। यानी भगवान भी अपने भक्तों के सामने झुकते हैं। दोस्तों वो लाइन तो याद होगी ना, चित्रकूट के घाट पे भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। हाँ जी, जब ईश्वर भक्त को उसकी भक्ति से जानता है तो वो अपने भक्त के सामने विनम्र हो जाता है।

0: साथियों, भक्ति की बात हो और हनुमान जी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान जी की सेवा सबसे बड़ी पहचान है। यही है उनकी पहचान कि वो राम भक्त हैं। युद्ध के मैदान में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी ने बिना देर किए पूरा पर्वत उठा लिया। लोग पूछ बैठे, हे पवनसुत, पूरा पर्वत क्यों लाए? हनुमान जी ने कहा, राम काज कीने बिनो मोय कहाँ विश्राम। सोचिए, जो भक्ति आपको अपने प्रभु का काम ही जीवन मानने पर मजबूर कर दे, वही है ना सच्ची भक्ति।
1: श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले

वैसे हनुमान जी के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। कहा जाता है, जब माता सीता वनवास के उपरांत वापस अयोध्या आती है, उस वक्त हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा की जाती है माता सीता जी के द्वारा। अब भाई हनुमान जी तो भाई माता सीता के ही आशीर्वाद से सभी शक्तियों का ज्ञान रखने वाले हैं, रुद्र के अवतार हैं और साथ ही साथ श्री राम के भक्त, यानी हर तरह से पूर्ण। जब बात हुई माता की महिमा की, हाँ ये एक छोटी सी महिमा ही थी, एक परीक्षा हनुमान जी की, उनको रोक दिया गया कि एक दिन आप खाली प्रभु की सेवा नहीं करेंगे। सीता जी का कहना था हनुमान जी से कि आज आप एक दिन के लिए खाली हमारे प्रभु की सेवा नहीं करेंगे, आज पूरा दिन मैं स्वामी की सेवा करूंगी। हनुमान जी कहाँ रहने वाले भाई, राम नाम का भजन जहाँ होता है वहीं हनुमान जी मिल जाते हैं। तो हुआ क्या, हुआ यूं कि उस दिन पूरे दिन हनुमान जी चुटकी बजाते हुए खाली राम नाम राम नाम राम नाम जपते रहे, यानी राम नाम का जप करते रहे। और इस तरह से एक बार आ गई हमारे प्रभु श्री राम को उबासी, उसी दौरान उनके सांस में अटकन आ गई। फिर राज वैद्य को बुलाया गया, सारी तरकीबें अपना ली गई, कोई फायदा नहीं रहा। तब जाके हनुमान जी को बुलाया गया और जब हनुमान जी स्वयं प्रभु श्री राम के समक्ष आए और हाथ जोड़कर जब उन्होंने उनके चरणों में वंदन किया, उनकी सांस वापस आ गई, क्योंकि वो राम भजन करना बंद कर चुके थे। एक तार में एक ही धुन में पूरे दिन लगातार उन्होंने राम नाम का जप किया था। तो ये थी राम भक्ति की शक्ति। हाँ जी, जब हम अपने ईष्ट में अपने ईश्वर में पूरी तरह से रम जाते हैं तो ईश्वर भी हमारे अधीन हो जाते हैं।

आगे आएगा उसे देखा जाएगा रे।

0: कोई उपाय कीजिए गुरुदेव, कोई उपाय कीजिए।
1: नारी ठीक है, पाप नहीं, कुछ नहीं। हनुमान जी कहाँ गए?

0: प्रभु बजरंगबली, तो ये हनुमान जी की चुटकी का चमत्कार था। सत्य है, सेवक बिना स्वामी को, भक्ति बिना भगवान को चैन का।
1: हाँ हनुमान, तुम जीते हम हारे।
2: आज से राम की सारी सेवाओं का अधिकार हनुमान को है, ये अनन्य सेवक है।
3: और अब सुनिए प्रेम भक्ति की मिसाल, मीराबाई। मीराबाई एक राजकुमारी थी, लेकिन जीवन भर कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था। उन्हें जहर का प्याला दिया गया उन्हीं के ज्येष्ठ के द्वारा, लेकिन उनके कृष्ण ने उस जहर को भी अमृत बना दिया। फिर मीरा ने उनके लिए भजन गाया। वो भजन क्या था वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रेम की भक्ति के बारे में कुछ जान लेते हैं। जब ईश्वर के सिवा कुछ और ना सोचे, कितना भी बड़ा संकट हो पल में बूझे, उसे कहते हैं प्रेम की शक्ति, यानी प्रेम में भक्ति।

तो इस तरह हनुमान जी ने सेवा और निष्ठा से भक्ति दिखाई, मीरा ने प्रेम और समर्पण से, यानी भक्ति की शक्ति सेवा और प्रेम का मिलाप है, भगवान का आशीर्वाद है।

तो इस तरह से हनुमान जी का प्रभु श्री राम के प्रति अटूट प्रेम, संजीवनी पर्वत उठाना, लंका दहन आदि लीलाएं, और राजमहल की राजकुमारी होकर भी कृष्ण भक्ति में लीन, विष का प्याला पीना लेकिन भक्ति से विष अमृत हो गया, ये है प्रेम की सबसे बड़ी पराकाष्ठा में से एक। हाँ, भक्ति में प्रेम।

अब चलेंगे इस्लाम धर्म की ओर और जानेंगे भक्ति क्या है। हजरत बिलाल पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के साथ थे। उन्हें काफिरों ने पत्थरों से दबाया, फिर भी वे कहते रहे अहद अहद, यानी ईश्वर एक है। ईश्वर के प्रति अटूट ईमान ही भक्ति की शक्ति है। इस्लाम धर्म के मुताबिक ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह ताला एक है।

आवाजें सुन रहे हैं, बड़े घुंघरू की आवाजें। एक बहुत छोटा घुंघरू होता है, चार मुंह का घुंघरू, उसकी आवाज में डिफरेंट होता है। जरा मुलाहिजा कीजिए कि बदलाव कैसा आवाज में आता है। एक कलाकार ने बड़े घुंघरू बांध रखे हैं और एक कलाकार ने छोटे घुंघरू, दोनों की आवाजों में फर्क मुलाहिजा फरमाइए। तवज्जो चाहता हूँ समाज फरमाइए।

सोचिए, मौत सामने खड़ी हो और फिर भी इंसान का ईमान ना डिगे, यही है भक्ति की असली शक्ति। अब चलते हैं एक और कहानी की ओर, जो कि सिख धर्म से है। गुरु अर्जुन देव जी, नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बताती हूँ। गुरु अर्जुन देव जी, जिनको जबरन गर्म तवे पर बैठाया गया, उन्हें जलते रेत और उबलते पानी से सताया गया, लेकिन उनके होठों से निकला, तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। यानी, प्रभु जो भी तेरा किया है वह मुझे मीठा लगता है। सोचिए ये कैसी भक्ति है जो दर्द को भी प्रसाद मान लेती है। है ना भक्ति की पराकाष्ठा, जहाँ भक्त भी भगवान को अपने अधीन कर लेता है।

0: अब आपको एक और भक्त की कहानी बताते हैं। भक्त कबीर। जात पात मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर कहा उन्होंने, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ कोई बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी भक्ति का अर्थ है सीधा ईश्वर से प्रेम, ना ही मंदिर, ना ही मस्जिद, ना ही गुरुद्वारा। ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं है।
1: Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence.

इन दोनों की भक्ति बताती है कि भक्ति का मार्ग सत्य और बलिदान से होकर गुजरता है। ईश्वर के प्रेम को पाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप ईश्वर में प्रेम रखते हैं तो ईश्वर खुद आपसे जुड़ जाता है।

साथियों, जब हम भक्ति की शक्ति पर मनन करते हैं तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है। भक्ति केवल मंदिर की घंटियों या मस्जिद की अजान तक नहीं सीमित है, ना सिर्फ ये वेद, कुरान, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों में है। भक्ति की असली शक्ति, भक्ति का असली रूप है प्रेम, सेवा, सत्य और करुणा। हनुमान जी की भक्ति में निष्ठा है, बिलाल की भक्ति में अडिग ईमान है, गुरु अर्जुन देव की भक्ति में बलिदान है, मदर टेरेसा की भक्ति में सेवा है और आनंद की भक्ति में करुणा है। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर सिर्फ प्रेम और समर्पण में जीना सीख लेता है तो वही है भक्ति की असली शक्ति। और याद रखिए, भक्ति का अर्थ है ईश्वर को पूजना। नहीं नहीं, भक्ति का अर्थ ईश्वर को पूजना नहीं, बल्कि ईश्वर के स्वरूप इंसान की सेवा करना।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन पर आपका मॉर्निंग वाला शो। गुड मॉर्निंग गोंडा लेकर आ चुकी है आपकी अपनी आरजे उन्नति, आपके साथ मौजूद हैं आप सभी के अपने वाले स्टूडियो में, और ऑफ कोर्स हमारी इस मुकम्मल मुलाकात में आपका स्वागत करते हैं, यानी कि आपके मॉर्निंग के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। इस बेहद खूबसूरत और ताज़ा तरीन घंटे में मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजुवंती ऑफ कोर्स। और मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी आपसे अपनी इस मुलाकात में, यानी कि आज जो हमारी आपसे स्पेशल वाली मुलाकात हुई है, जो कभी कभी ही हो पाती है थर्सडे वाले दिन, लेकिन हाँ आज थर्सडे का दिन है और आज ही आपसे मुझे कुछ बातें शेयर करनी है। तो सबसे पहले क्या कहना है जानना चाहेंगे? चलिए बता देते हैं। हम सब दौड़ रहे हैं ना दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, अपनों की मदद करने के लिए, हर काम को परफेक्ट करने के लिए, और इन सब में हम अक्सर ख़ुद को बहुत ज़्यादा सख्त दिखाते हैं, प्लस ख़ुद के साथ बहुत ज़्यादा सख्त हो भी जाते हैं। अगर कोई गलती हो भी जाए तो ख़ुद को कोसने लग जाते हैं। पर आज सुबह सुबह थोड़ा सा ठहरिए, रोकिए, थामिए खुद को, ख़ुद को एक जादू की झप्पी दीजिए और दिल से कहिए इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्योंकि किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि गलतियों की उलझनों को ज़रा सुलझा देते हैं, चलो आज ख़ुद को थोड़ा सा मना लेते हैं। दूसरों को तो माफ़ किया है हमने कई बार, आओ आज अपनी भी खता भुला देते हैं। ज़िंदगी एक सफ़र है, कोई इम्तिहान नहीं, थोड़ी धूल जो लगी है पैरों में उसको भी मुस्कुराकर उड़ा देते हैं, है कि नहीं? तो बस पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, सारा तनाव सारा बोझ आज इसी मॉर्निंग वाले प्रोग्राम में छोड़ दीजिए, खुद को माफ़ कीजिए, क्योंकि आप भी भैया एक इंसान हो, कोई रोबोट नहीं। एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और मेरे साथ मिलके कहिए गुड मॉर्निंग गोंडा, क्योंकि भैया इतनी ज़बरदस्त मॉर्निंग में अगर किसी का उदास चेहरा मुझे नज़र आया ना, तो भैया हम भी उदास हो जाएंगे। और मुझे पता है हम कई बातों को लेकर के बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं और हमें लगता है कि यार लाइफ तो ऐसे ही चल रही है, मैं ही कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ही सब कुछ ख़राब कर रहा हूँ। स्पेशली जब हमारी लोगों की हमसे लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, फिर चाहे वो फैमिली की हो, बच्चों की हो, पड़ोसियों की हो, न जाने किस किस की टेंशन हमें सर पे लेकर घूम रहे होते हैं, और हमें लगता है कि इस पूरे दुनिया का बोझ तो उठाने का जो जिम्मा है वो खुदा ने हमको ही दिया है, हम अपने छोटे छोटे दो कंधों पर पूरे दुनिया का बोझ लेकर चलेंगे और यही बोझ हम पूरी ज़िंदगी ढोते रह जाते हैं। खुद के साथ इतनी सख्ती करते हैं, इतनी सख्ती करते हैं कि ऑलमोस्ट ये भूल जाते हैं कि हमें भी माफ़ी का अधिकार है, हम भी इंसान हैं और ख़ुद के साथ नरमी बरतनी होती है। दूसरों को तो हम माफ़ कर देते हैं, दूसरों को हम कह भी देते हैं इट्स ओके कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलती से हमसे कोई गलती हो जाए या फेल हो जाए तो ख़ुद को इतना कुछ बोल जाते हैं कि जैसे कि हमें तो भैया सब कुछ परफेक्ट करने की आदत है, हमसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, इवन कभी खुदा से भी गलती हो जाएगी लेकिन हमसे गलती ना ऐसा नहीं हो सकता। तो आज के इस मॉर्निंग वाले थॉट ऑफ द डे और पोइट्री में बस इतना ही था कि खुद को माफ़ कर दीजिए, जो चीज़ें जा चुकी हैं उन्हें थोड़ा लेट गो कर दीजिए, और अगर आपसे कोई चीज़ ख़राब हुई है, बिगड़ गई है, या ख़ुद के साथ आप बहुत ज़्यादा सख्ती बरतते हैं, तो थोड़ा नरमी लेकर आइए और अपने दिल से कहिए, दिल पे हाथ रखे, ऑल इज़ वेल एंड इट्स ओके डियर, हम कर लेंगे। फिलहाल आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट वाला FM रेडियो ज्ञान 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन पर। चलिए चलते एक छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार और हम आपको सुनाते हैं आपका पसंदीदा सॉन्ग एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, क्योंकि भैया हमारी मुलाकात तो हो चुकी है और जो अभी तक नहीं आए हैं ये संदेश उन तक पहुँचाना है कि ये वाली मुलाकात बहुत ज़रूरी है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपनी आरजे उन्नति के साथ, आपका अपना मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा, स्टे ट्यून्ड।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग के स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे मॉर्निंग जॉक की उन्नति और मौजूद हूँ आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। आपने ट्यून कर रखा है 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और भैया यूँ तो आप बहुत दिमाग लगाते हो ना, बिल्कुल लगाते हैं। आपका दिमाग आपसे बहुत सारा सौदेबाजी भी करता है, जैसा कि आज का हमारा थॉट ऑफ द डे था, प्लस हमारी जो पोइट्री थी उसमें साफ तौर पे बस इतना ही था कि हमारा दिमाग हमारे साथ बड़ी ज्यादती करता है। अक्सर हम खुद करवाते हैं वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत तो इसकी दिमाग से ही होती है। और यही दिमाग आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताता है जो आपको कभी पता भी नहीं चलती हैं, आपको लगता है कि ये हकीकत है, बट दिमाग कहता है ना, ये तो हमने बनाई है। जी हाँ, आपको भी नहीं पता कि आपके पास जो मेमोरीज है, यानी कि जो यादें अभी तक आपने बटोर कर रखी हैं, संजो कर रखी हैं, आपको याद है, आप सोचते हैं तो मुस्कुराते हैं। हो सकता है आपके बचपन की यादें और आप सोचते हैं कि मैं पापा के साथ यहाँ गया था, मैंने ये देखा था, मुझे पापा ने ला कर दिया था, मैं दादू के साथ था। बहुत सारी चीज़ें कभी रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, वो सिर्फ आपका दिमाग आपके साथ गेम खेल रहा होता है। ये बात सुन के कैसा लगेगा कि पिछले कई सालों से, 20-30 सालों से आपने जो अपने बचपन की एक मेमोरी इकट्ठी कर रखी है, या फिर 40 सालों से आपने जो अपने बचपन की एक इमेज सोच रखी है और आप सोचते हैं कि मेरा बचपन ऐसा रहा था, वो एक्चुअल में आपका बचपन कभी हो ही ना तो क्या हो। और ये सिर्फ एक दो लोगों के साथ नहीं होता है, ये मोस्ट ऑफ द पे इंसान के साथ होता है, क्योंकि उनका दिमाग उनके साथ कुछ ऐसे गेम्स खेलता है जो उन्हें भी नहीं पता होता। उन्हें लगता है कि हकीकत उनकी आंखों के सामने चल रही है, बट दिमाग बाबूजी कहते हैं कि नुप, ये तो हम ही हैं, सबसे अच्छे डायरेक्टर हम ही हैं, सबसे अच्छे राइटर हम ही हैं, तुम सोच क्या रहे हो, तुम तो मेरे ऊपर ही चल रहे हो ना। जी हाँ, तो ये क्या है और क्यों कुछ लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है? क्या उनकी याददाश्त कमज़ोर होना उनकी कोई कमज़ोरी है या कोई बड़ी ताकत? क्योंकि भैया बायोलॉजी और साइकोलॉजी तो लोगों को अलग अलग नज़रिए, अलग अलग पैमानों से देखती है, और वो नहीं सोचती कि जिनकी याददाश्त कमज़ोर है वो इंसान कमज़ोर हो सकते हैं, ये उनकी कोई वीकनेस होती है। जिनकी हैंडराइटिंग ख़राब है, हो सकता है कि भैया ये इसके दिमाग में कुछ ना आता हो, ये बिल्कुल भी क्रिएटिव ना हो, बल्कि बायोलॉजी इसको पलट के देखती है और कहती है जिसका दिमाग बहुत तेज़ काम करता है उसके हाथ काम नहीं कर पाते, और इसी वजह से उनकी हैंडराइटिंग बेकार होती है। और जिनकी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत होती है उनके दिमाग में थॉट इतनी जल्दी नहीं आते। तो अगर आपकी मम्मी ने कभी आपको अपनी दोस्त से, पड़ोसी से, अपनी चाचा की लड़की से, मामा की बिटिया से कंपेयर किया है कि ये तुम्हारी हैंडराइटिंग देखो और उसकी हैंडराइटिंग देखो, क्या सुंदर हैंडराइटिंग, कंप्यूटर फेल है, ऐसा लगता है कि उसी ने फॉन्ट लगा रखा है, तो ज़रा उनको बताइए कि आपके दिमाग में जो है ना वो थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत स्पीड में चलते हैं, और आपका हाथ आपके दिमाग से मैच नहीं कर पा रहा है उस स्पीड को, और दैट्स वाई आपके हाथों से लिखने वाले शब्द टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, और आपका दिमाग कहता है चलने दो बाबूजी, मैं जो सोच रहा हूँ वो फटाक से लिखो। वहीं पर जो बहुत कर्सिव में घुमा के कैलीग्राफी कर रहे हैं उनके दिमाग में थॉट्स इतने जल्दी नहीं आ रहे, इसलिए उनका हाथ उनके दिमाग से सिंक हो पा रहा है। तो आइए भैया और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आपको आपके ब्रेन के बारे में, यानी कि वो जो छोटा सा हिस्सा आपके सर के ऊपर है, खोपड़ी के अंदर बैठा हुआ है और आपको दुनिया भर की चीज़ें दिखाता रहता है। पहला, मेमोरी डिलीट हो जाती है। हम कहते हैं कि हमारा दिमाग दुनिया भर की मेमोरीज को इकट्ठा कर सकता है, जो कि सच बात भी है, हम कुछ भी चीज़ अपने दिमाग के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। आपको बता दें कि आप 30 मिनट से ज़्यादा एक जगह पर फोकस नहीं कर पाएंगे। क्लास में बैठा बच्चा भी सिर्फ एक ही क्लास में अच्छे से फोकस करता है, दूसरे में तो उसको भी नींद आ ही जाती है, और ये उसकी वीकनेस नहीं है, ये दिमाग का एक्चुअल रीज़न है। बट वहीं पर हम जो चीज़ें याद करते रहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए याद की हों, चाहे हमने किसी और काम के लिए याद की हों, उसको एक घंटे के अंदर हमारा दिमाग टाटा बाय बाय गुड बाय कर देता है कि ये जानकारी बहुत हुई, अब इसको धक्के मार के निकाल दो, और आप एक घंटे के अंदर हर एक चीज़ भूल जाते हैं। वो अलग बात है, आपको कभी महसूस नहीं होता कि आपने जो पढ़ा था वो क्या था, क्या आपको याद है आपने जो लास्ट एग्जाम दिया था उसमें जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर क्या था, या आपने जो लास्ट एग्जाम में पढ़ा था, रटा था पूरी रात बैठ के तोते की तरह, क्या वो अभी भी आपको याद है? नहीं याद होता है, 90% चांसेस है आपको वो नहीं याद होगा, और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि आपका दिमाग आपके साथ गेम्स खेलता है। इसके बाद फॉल्स मेमोरी, यानी कि आपकी ब्रेन जो है वो कुछ ऐसे इवेंट्स को तैयार करता है जो आप कभी पता ही नहीं कर पाते हैं कि ये सच है कि झूठ है। आपको लगता रहता है कि ये बहुत सच है, ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ घटा है, बट दिमाग आपके साथ यूं गेम खेलता है कि ना तो वो चीज़ कभी आपके साथ घटी होती है ना आपके साथ कभी हुई होती है, बस आपको महसूस हो रहा होता है कि आपके साथ कुछ हुआ था जिसकी मेमोरीज आपके पास है। इसको साइंस में फॉल्स मेमोरीज के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, जो लोग याददाश्त की बहुत मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी तो याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, ये उनके लिए है। स्पेशली 90% ऑफ योर डेली डिटेल्स, यानी कि आप 90% अपने दिन का हर एक चीज बहुत आसानी से भूल जाते हैं अगले दिन तक विदाउट एनी वार्निंग। आपका दिमाग आपसे कभी नहीं कहता कि मैं इन चीज़ों को डिलीट करने चाह रहा हूँ, क्या मैं इसको परमानेंटली डिलीट करूँ, अगर कर दूंगा तो ट्रैश बिन में नहीं मिलेगा, जैसा आपका फ़ोन आपसे पूछता है। बिल्कुल भी ऐसा कोई सवाल वो आपसे नहीं करता है, और आपके दिमाग में 90% चीज़ों को वो ऐसे ही मिटा देता है। इसको कहते हैं यू फॉरगेट मोर, यानी कि आप भूलते ज़्यादा हो, याद करने से ज़्यादा भूलते ज़्यादा हो। आपकी मेमोरीज बदलती रहती हैं, जी हाँ, आप जितनी दफ़ा किसी याद को याद करोगे उतनी दफ़ा वो याद आपको दूसरी तरह से मिलेगी, क्योंकि आपका दिमाग भी एडिटिंग करता है। जिस तरह से हम इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करने से पहले, एक ही वीडियो को चार तरह अपलोड करने से पहले एडिटिंग करते हैं कि लो थोड़ा सा एंगल चेंज कर दें, थोड़ा सा फिल्टर चेंज कर दें, ये कर दें, वो कर दें, जी, और यही चीज़ आपका दिमाग आपके साथ भी करता है। अगर आपकी कोई बहुत पसंदीदा मेमोरी है तो आप उसे याद कीजिए और देखिएगा हकीकत से बहुत दूर होगी, और जितनी दफ़ा याद करेंगे ये उतनी दफ़ा अलग आएगी, बिकॉज क्योंकि हमारा दिमाग हर एक मेमोरी में कुछ ना कुछ नमक मिर्ची डाला करता रहता है, इसको और भी चट

जरूरत नहीं है। प्लस आपकी मेमोरी 30% कम कर देता है, वो याद करने की क्षमता कम हो जाती है जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। इसके अलावा स्ट्रेस आपके यादों को, आपकी मेमोरी को, आपकी याददाश्त को और छोटा कर देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो अपनी लाइफ में तो यकीन मानिए एक वक्त के बाद आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहने वाली है, बिकॉज स्ट्रेस हमेशा आपकी याददाश्त को कम करता है। जी हाँ, इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ ऑफ कोर्स, और आप भी शामिल हो सकते हैं, और हमारे स्टूडियो में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अकेले रहने में बहुत मज़ा आता है। मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है आपके घर का बच्चा भी अकेले ही रहता हो और आपने बहुत कोशिश की हो उसे किसी और से बात करवाने की, चलो भैया बात कर लो, ये लड़के का क्या होगा, इस बिटिया का क्या होगा, ये तो किसी से बात ही नहीं करते, इसके तो कोई दोस्त ही नहीं बनते। ये एक्चुअल में बड़े इमोशनल और बड़े क्रिएटिव इंसान होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज़ चल रहा होता है और इसीलिए ये किसी के साथ नहीं रहते, हमेशा अकेले बैठे रहते हैं। अगर आप उनमें से एक है ना, तो थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आप दूसरों से थोड़े अलग हैं और आपका दिमाग थोड़ा तेज़ चल रहा है। तो ये वो फैक्ट थे जो मुझे आपको आपके दिमाग के बारे में बताने थे, आपके इस छोटे से माइंड के बारे में बताने थे जो पूरा का पूरा शरीर कंट्रोल कर रहा है, पूरा की पूरी जिंदगी कंट्रोल कर रहा है, आपके आसपास की चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है और आप उसको ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। और आइए चलिए इन्जॉय करते हैं गुड न्यूज़ से चंडीगढ़ में सॉन्ग। हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, यानी कि इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

हंस जी, और एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी अपनी आर श्रीमती। आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। अच्छा भैया, आपने कभी गौरव दवे का नाम सुना है? इंटरनेट पे काफी पॉपुलर फेस हो चुका है, हालांकि वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जाते जाते कई लोगों को जिंदगियां दे दी हैं। कैसे, चलिए बताते हैं आपको। कौन है ये गौरव दवे जिनके बारे में आज हर कोई बात कर रहा है, जिनके बारे में लोग पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, इवन मीडिया भी जिनको कवर कर रही है, इंटरनेट पे जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उनके इस निर्णय को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके माँ बाप की बहुत तारीफ कर रहे हैं, ये कह करके कि भैया जब एक वक्त था जब बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहा था कोई इंसान, उस तकलीफ में भी हिम्मत का चुनाव किया गया। इंदौर के खजूरी बाजार निवासी सतीश दवे और कविता दवे के 25 वर्षीय बेटा गौरव 13 जुलाई को अचानक ब्रेन हैमरेज से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक रेयर बीमारी थी। उन्हें राजश्री अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, डॉक्टर ने इलाज किया, लेकिन गौरव की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनका 2 बार मेडिकल चेकअप भी कराया गया, और जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कह दिया कि गौरव अब उनके बीच नहीं है, क्योंकि गौरव का ब्रेन डेड हो चुका है, और इसीलिए उन्होंने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। जवान बेटे के खोने का दर्द बीच परिवार में बहुत ज़्यादा था, और उसी दौरान उसी तकलीफ में, उसी दर्द में, उसी गम में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने 4 लोगों की जिंदगियां बचा ली। आपको बता दें, ब्रेन डेथ की पुष्टि होने के बाद गौरव की बहन, उनके बहनोई और उसके भाई ऋतिक ने माता पिता को संभाला और गौरव के अंग दान करने की बात की, यानी कि ऑर्गन्स को डोनेट करने की बात की गई। जब माँ बाप ने पहली दफ़ा ये सुना कि अपने बेटे का ऑर्गन्स डोनेट करने की बात की जा रही है, तो उन्होंने भी सहमति दे दी। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा बेटा ना सही, कोई और सही। और आपको बता दें, सोमवार सुबह गौरव का लीवर राजश्री अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती 42 वर्षीय मरीज उनको डोनेट किया गया, और अब उसका लीवर किसी और की जिंदगी बचा रहा है। प्लस इसके अलावा इंदौर में रह रहे 3 और लोग जो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे, गौरव के बाकी चीजें उनके पास पहुंची, जिसमें उनका दिल है, जिसमें उनके गुर्दे हैं, और ये भी डोनेट किए गए थे। गौरव ने जाते जाते भी 3 से 4 लोगों की जान बचाई, 3 इंदौर से और 1 अहमदाबाद से। 4 लोगों को नई जिंदगियां वो इंसान देकर गया है, तो गौरव को हमारी तरफ से एक सल्यूट तो बनता है। हालांकि परिवार को आज भी, यानी कि परिवार को अभी भी उनके जाने का गम जरूर है, और इस बात को तो आप बहुत बेहतर समझते हैं, है कि ना? लाल, सुनते रहिए आपका अपना शो गुड मॉर्निंग गोंडा। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तो के लिए आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि डोनेशन को लेकर के, यानी कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें डोनेशन में देने के लिए, डोनेट करने के लिए आप क्या सोचते हैं, बताइएगा जरूर। स्टे ट्यून्ड।

आपको पता है आपके गार्डन में लगी बहुत सारी चीज़ें हज़ार तरह की दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हम निकाल निकाल के तोड़ फोड़ के ऐसे ही फेंक देते हैं सोच सोच कर कि ये सारी तो खतपतवार है, यानी कि ये सारी तो घास है और इसको निकालो फेंक दो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपको चलते फिरते रोड के साइड में मिल जाती हैं और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये कितने काम की होती हैं। जैसे कि आजकल क्योंकि बारिश हो रही है, नमी का मौसम है और नालियों में, आसपास आपके गड्ढों में, गमलों में एक चीज़ उग रही है जिसको आप बड़ी महंगी पैसे देकर खरीदते हैं, उसको हम कहते हैं हेयर फॉल का राजा, यानी कि भृंगराज। आपके घर के अंदर लगे गमलों में वो कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, अगर वहाँ नहीं है तो आसपास चलते फिरते आपको वो कहीं भी दिख जाता है। बट क्योंकि सही पहचान ना होने की वजह से हम भृंगराज को नहीं लेते हैं, मार्केट से हज़ार रुपए में जाकर खरीद लेते हैं महंगे से महंगी सामान। इसके अलावा क्योंकि मौसम हो रहा है बारिश का और इस मौसम में सांप बहुत ज़्यादा निकलते हैं, आपने देखा होगा आजकल सांप के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मदर नेचर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। अगर सांपों का सीजन आ चुका है तो सांपों से लड़ने वाले पौधे और फल भी आ चुके हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे पौधे और फलों का जिक्र आपको आयुर्वेदा में मिल जाता है जो ये दावा करते हैं कि अगर आपको सांप काट ले तो वो जहर रोकने का काम करते हैं, बट उनके बारे में भी हमको नहीं पता है। हालांकि वो आपके सामने वाला जो खाली प्लॉट पड़ा है उसके अंदर ही पीले फूलों में नजर आ रहा होगा, बट आपने उन पीले फूलों को कभी ध्यान से देखा ही नहीं और आपने सोचा कि ये तो सिर्फ बेकार सी चीज़ है, इसमें क्या ही होगा, प्लस उसमें कुछ बीन्स भी लगती हैं और उसे भी आपने कभी गौर से देखा ही नहीं। इसके अलावा यूं ही चलते फिरते आपको हिमानी का पौधा भी मिल जाता है जिसमें इसकी डंडी बहुत लंबी होती है और एक येलो वाइट कलर का छोटा सा फूल आता है जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा, देखने में खूबसूरत लेकिन वो भी एक्चुअल में एक आयुर्वेदा की दवा है। इसके अलावा आजकल एक और चीज़ है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वो है अस्थमा का प्लांट। जी हाँ, जिसको हिंदी में दमा बूटी या बड़ी दूधी भी कहा जाता है। हम आपको बता दें इसे एक औषधि वाला प्लांट माना जाता है, एक ऐसा पौधा माना जाता है जिसमें अंदर औषधीय गुण है। सांस लेने में और डाइजेशन के लिए ये पौधा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, बट क्योंकि हमें नहीं पता ये पौधा कहाँ होता है, कैसे होता है, तो फिर हम इसको हमेशा खतपतवार समझ के गमलों से उखाड़ के फेंक देते हैं। इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ आपके पास उगी होती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, और जिस दवा की मैं बात कर रही हूँ अस्थमा प्लांट, वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। पतला सा ज़मीन में फैला हुआ, साइड साइड में पत्तियाँ हैं और बीच में गोल गोल छोटा सा फूल दिखता है और हमको लगता है ये बस एक घास है और कुछ भी नहीं। ये आपको खुले मैदानों, रास्तों में, सड़कों के किनारे और यहाँ तक कि आपके छोटे छोटे गमलों के अंदर भी नजर आता है। ये बेल की तरह होता है, यानी कि ये लसने वाला पेड़ होता है, बेल की तरह नजर आता है, ये खड़ा नहीं होता, लेटा होता है। ये दवा सांस फूलने, कफ जैसी कई समस्याओं में मदद आता है। इसे पहाड़ी लोग बहुत अलग तरीके से खाते हैं, जो चीज़ें हम यहाँ पर ये सोचकर हटा देते हैं, ये सोचकर फेंक देते हैं कि यार ये तो सिर्फ एक घास है, वहीं पहाड़ों में इसका सेवन किया जाता है। कोई इसका रायता बनाकर खा रहा है, कोई इसको कच्चा ही खा रहा है। कुछ लोगों को कहा जाता है कि जिनको डाइजेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, वो इस अस्थमा प्लांट को, यानी कि इसके पत्तों को रोज़ सुबह 5 से 6 पत्ते खाकर गर्म पानी पीते हैं और उनका डाइजेशन इससे अच्छा रहता है। जिनके मुँह से स्मेल आती है वो इसका सेवन करते हैं क्योंकि ये माउथ की जो बैड स्मेल होती है उसको भी ख़त्म करने का काम करता है, बट क्योंकि हम नहीं जानते तो हमने कभी इसको देखा भी नहीं। इसके अलावा गमले में एक और पौधा उगता है जो देखने में बिल्कुल मॉस रोज की तरह लगता है, बट उसमें कभी फूल नहीं आते, उसके सिर्फ पत्ते जो होते हैं वो मॉस रोज की तरह होते हैं। मॉस रोज, इसे आम भाषा में कई लोग 10 बजिया भी कहते हैं, जो फूल 10 बजे खिलता है उसका भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। कोई उसका रायता बना रहा है, कोई उसका साग बना रहा है, इवन चलते चलते आपको सड़क के किनारे पालक से ज़्यादा अच्छी एक जंगली पालक मिलती है जिसको
कहा तो जंगली पालक जाता है क्योंकि उसके अंदर पालक से 10 गुना ज्यादा आयरन मौजूद होता है, 10 गुना ज्यादा कैल्शियम मौजूद होता है और उसको किसी ने भी छेड़ा नहीं है, तो वो अभी तक प्राकृतिक रूप से खुद ही उगती हुई आ रही है। उसमें किसी भी तरह की कोई भी टेक्निक्स नहीं शामिल है, कोई भी साइंस नहीं शामिल है, वो आज भी मदर नेचर का प्योर गिफ्ट है। बट कमाल की बात यह है कि जिस खेतों में ये लगता है, जहां जहां ये उगता है, इवन आपके गमलों में भी आपको नजर आता है, बट किसी को ये बात समझ नहीं आती कि ये जो चीज़ आप घास समझ के उखाड़ के फेंक रहे हैं, यही आपकी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। इसीलिए आयुर्वेदा हमेशा अपने आसपास की चीज़ों को देखता चलता है। अगर अपने आसपास की चीज़ें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो छोटे छोटे से पौधे आपको ज़मीन पर फैले नज़र आते हैं, ये सब दवाइयाँ हैं। प्लस आपको भी पता होगा हमारे आसपास कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं और वो अक्सर बहुत खूबसूरत फूल देते हैं, अक्सर आपको वो रोड पर चलते फिरते दिखाई पड़ जाएंगे। याद है वो पौधे जिन्हें हम आम भाषा में कनेर कहा करते हैं? जी हाँ, एक पीले आते हैं और एक पिंक कलर आता है, दोनों दिखते बड़े खूबसूरत हैं, पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनका फल, इनकी पत्ते, इनका दूध, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा जहरीला होता है और हमने इसको अपने चारों तरफ ऐसा सजो सजो कर लगा रखा है और जो असल दवाइयाँ हैं उन्हें हम निकाल निकाल के फेंकते जा रहे हैं। आप बताइए, आपके साथ होता है ऐसा कि आप भी इन चीज़ों को खटपतवार समझ के उखाड़ के फेंक देते हैं, या आप उस स्पेसिफिक पौधे के बारे में सर्च करते हैं और उनकी खूबियाँ सुनकर आप भी मेरी तरह हैरान हो जाते हैं? यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधों से मोहब्बत करने वाले लोग होंगे उनको तो ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। फिलहाल एंजॉय कीजिए कुमार सानू की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत 90s का, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें या नहीं। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके वाले प्रोग्राम मॉर्निंग स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी अपनी आरचुनती और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। अच्छा दोस्तों, आपसे मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर आपके हाथ की उंगलियाँ टेढ़ी हो जाएं या फिर पीछे की तरफ हो जाए तो आप कोई सर्जरी कर सकते हैं क्या, आप डॉक्टर बन सकते हैं? तो आपका असल जवाब होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी उंगलियां ही डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हमें चीज़ें पकड़नी होती हैं, औजार पकड़ने होते हैं, न जाने कितने इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारे उंगलियों के बलबूते ही चलते हैं। डॉक्टर जो एक पेन नहीं पकड़ पा रहा, उसने सर्जरी कैसे की होगी? वो भी एक दो नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी में 1,00,000 से ज़्यादा सर्जरी। सुनने में अजीब लगता है राइट, जब हमें पता ये चलता है कि एक डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने कभी पेन नहीं सही से पकड़ पाए क्योंकि उनकी उंगलियाँ टेढ़ी मेढ़ी थी और वो पेन नहीं पकड़ पाते थे, ग्रिप नहीं बना पाते थे। उन्होंने एक ऐसा प्रोफेशन चुना जहां पर सिर्फ 1 मिलीमीटर की गलती किसी की पूरी जिंदगी भर की रोशनी छीन सकती थी, पूरा जिंदगी उसका अंधकार में डुबा सकती थी। बट उनकी कोई भी सर्जरी फेल नहीं हुई। उन्होंने अपनी इस सबसे गजब की वीकनेस को अपनी ताकत बना लिया था। इनको शुरुआत में बनना तो था एक गायनेकोलॉजिस्ट, यानी कि वो डॉक्टर जो बच्चों की डिलीवरी कराता है। बट धीरे धीरे धीरे धीरे इन्हें समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनके हाथ, उनके हाथों की उंगलियां उनका साथ नहीं दे रही हैं, वो टेढ़ी हैं, वो पीछे की तरफ है। जो इंसान एक पेन तक नहीं पकड़ पा रहा सही से, वो डिलीवरी कैसे कराएगा? ये सवाल लोगों के दिमाग में हमेशा था। बट इन्होंने कहा अगर गायनेकोलॉजिस्ट ना सही तो कुछ और सही, और उस वक्त इन्होंने चुना एक ऐसा प्रोफेशन जो लोगों की आंखों से जुड़ा था। क्योंकि भारत में उस वक्त मोतियाबिंद के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और इसी कारण लोग अपनी आंखों की रोशनी खोते जा रहे थे। उस वक्त इन्होंने जब देखा कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और एक अच्छे सर्जन की ज़रूरत है, एक नेत्र विज्ञान विभाग के प्रमुख बने ये। हम आपको बता दें कि इनको, इन्होंने शोध किया, इन्होंने रिसर्च की और इन्होंने अपना योगदान भी दिया, दूसरों को सिखाया भी कि कैसे आप आंखों को लेकर डॉक्टर बन सकते हो। जो पेन नहीं पकड़ पा रहे थे उन्होंने आंखों का ऑपरेशन करना शुरू किया, पहले 1, फिर 2, फिर 10, फिर 100, और एक एक दिन में 100-100 लोगों को ये हैंडल करने लगे। इन्होंने सोचा क्यों ना एक हॉस्पिटल तैयार किया जाए। 11 कमरों से शुरू हुआ एक छोटा सा हॉस्पिटल, नाम अरविंदा। अरविंद हॉस्पिटल शुरू हो चुका था, सिर्फ 11 कमरे थे और मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा। अब लोग सोचते थे कि भैया ये होगा कैसे, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, कैसे एक डॉक्टर इतनी सारी चीज़ों को एक दिन में हैंडल कर लेगा। तो उन्होंने इंस्पिरेशन ली मैकडॉनल्ड से। उन्होंने देखा कि मैकडॉनल्ड में हर एक दूसरे बंदे का काम पहले से बटा होता है, कौन काउंटर पे खड़ा होगा, कौन ऑर्डर्स नोट करेगा, कौन बनाएगा, कौन डिलीवरी देगा, कौन पैसे लेने वाला है, हर एक चीज़ पहले से ही डिसाइड की गई है। और यहीं से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स को, जो उनके साथ काम कर रही टीम थी, उनका काम बांट दिया। जब वो एक ऑपरेशन कर रहे होते, एक सर्जरी कर रहे होते, उतनी देर में उनकी टीम दूसरा मरीज दूसरे बेड पर तैयार कर चुकी होती थी। जैसे ही एक सर्जरी ख़त्म होती, दूसरी सर्जरी शुरू हो जाती। एक डॉक्टर जहां सर्जरी करने में घंटों का वक्त लेते, वहीं को मिनिमम टाइम में निपटाने की कोशिश थी। और कमाल की बात यह है कि इतनी सफाई से काम होता था कि लोगों को लगता था कि ये कोई फरिश्ता है, और सच में फरिश्ते थे। कई लोगों ने तो कई सालों बाद, या कहें तो अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारने के बाद कहीं जाकर के अपने घर वालों का चेहरा देखा था। इससे पहले उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनकी माँ जो उन्हें बचपन से खिला रही है, पिला रही है,

पास पैसे होते थे, बस उन्हीं के पैसों से हॉस्पिटल का खर्चा निकाला जा रहा था और मरीजों का इलाज हो रहा था। उन्होंने किसी से ज़बरदस्ती नहीं की और ये भी नहीं किया कि जिनके पास पैसे हैं उनका इलाज बहुत अच्छा होने वाला है और जिनके पास पैसे नहीं हैं उनका मुफ्त इलाज मुफ्त खोरी में ऐसे दिखा दिया जाएगा। ना, दोनों की क्वालिटी एकदम से, दोनों को बराबर की क्वालिटी मिल रही थी, दोनों को बराबर का रिस्पेक्ट मिल रहा था, बराबर का सम्मान मिल रहा था। गरीब भी खुश थे और जो पैसे दे सकते थे वो भी अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश थे। सबकी आंखों की रोशनी वापस आ रही थी और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 1,00,000 से ज़्यादा लोगों को रोशनी दी थी देखने की, उनकी आँखें सही की थी। अब बात यह है कि इनका नाम क्या है, चलिए इनका नाम भी बता देते हैं। गोविंद अप्पा वेंकटेश स्वामी, ये इनका नाम है। एक ऐसे डॉक्टर जिनके पास शायद बहाने बनाने के लिए बहुत टाइम था, जो कह सकते थे कि मेरी उंगलियां ही जब टेढ़ी हैं तो मैं क्या करूं, मैं ये प्रोफेशन में नहीं जा सकता, मैं तो काम भी नहीं कर सकता, मैं तो कुछ चीज़ पकड़ नहीं सकता, मैं चम्मच नहीं पकड़ सकता, पेन नहीं पकड़ सकता, तो मैं कैसे एक डॉक्टर बनूंगा। बहाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, बहाने कुछ भी बन सकते हैं। पर जितने भी लोग हैं जिनकी कहानियां मैं आपको सुनाती हूं, इन्होंने अपनी कमियों को अपनी खूबियां बनाई हैं। इन्होंने लोगों को एक अलग तरीके से ज़िंदगी को देखने का नज़रिया दिया है। इन्होंने बताया है कि जब हो सकता है किस्मत आपके साथ कोई गेम खेल जाए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी आपके साथ कोई गेम खेल जाए, हो सकता है किसी हादसे में आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, हो सकता है कोई बीमारी हो, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जो आपको बाकियों से अलग बनाता है। लेकिन ये सिर्फ आपको बाकियों से अलग बना सकता है, कमज़ोर नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। ऐसे न जाने कितनी ही कहानियां हमारे भारत देश में ही पड़ी हुई हैं जो आपको जिंदगी के हर एक मोड़ पर एक नई इंस्पिरेशन देती हैं, जिसमें से आज हमने बात की गोविंद अप्पा की। और एक ऐसी ही स्टोरी मेरे पास और है, एक ऐसी मोहतरमा की जिन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई ना करने के बाद भी न जाने कितने लोगों की डिलीवरी कराई है। उनका नाम क्या है, उनकी कहानी क्या है, आप मेरी जुबानी सुनेंगे जरूर इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस बात। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब की डेथ तो 2006 में हो गई थी, लेकिन उनका जो 11 कमरों से शुरू हुआ अरविंद हॉस्पिटल है, आज वो 15 हॉस्पिटल्स में बदल चुका है और पूरे देश के लोगों की सेवा अभी भी जारी है। उनके इस सपने को आगे बढ़ाया जा रहा है और आज भी लोगों की आंखों की रोशनी वापस लाई जा रही है। ऐसे डॉक्टर्स को मेरा सल्यूट है। बनारस के एक डॉक्टर से हमने आपकी मुलाकात करवाई थी अपनी कहानी के जरिए, जिसमें वो एक कमाल के हार्ट सर्जन हैं, मुफ्त में दिल की सर्जरी किया करते हैं, पैसे भी नहीं लेते, इवन उन्हें जो पैसे मिलते हैं वो उसको भी डोनेट कर देते हैं, अवार्ड मिलता है तो लेने नहीं जाते। और ऐसे ही डॉक्टर्स को लोग भगवान के नाम से कहते हैं, यूं ही थोड़ी फेमस है कि डॉक्टर्स खुदा होते हैं, ऐसे ही होते हैं। अगर आपने कभी खुदा नहीं देखा है तो इन डॉक्टर्स की झलक एक बार जरूर देखिएगा। फिलहाल एंजॉय कीजिए अनवर फिल्म से मौला मेरे मौला। मिलते हैं इस गाने के उस पर, बने रहिए, सुनते रहिए। आप सुन रहे गुड मॉर्निंग गोंडा अपनी आशियों के साथ 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। स्टे ट्यून्ड।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में न जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। भाई, जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: हाँ जी, तो भैया हमने आपको बताया था एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जिन्होंने 1,00,000 से ज़्यादा लोगों की आंखों की रोशनी वापस लाई। और अब बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिसको एक वक्त में लोगों ने अछूत का नाम दिया कि नहीं, तुमको तो छूना भी पाप है, तुमको छू लेंगे तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, हमको नर्क की आग में जला दिया जाएगा। ना जाने कैसी अफवाहें उनके लिए उड़ाई गई। और उनकी ही मदद से उस गांव में 15,000 लोगों की डिलीवरी हुई। यकीन करेंगे? नहीं ना? जी हाँ, एक ऐसी भी जनजाति है जिसको कर्नाटक में उस वक्त अछूत माना जाता था, छूना भी पाप था। कहते थे अगर छू लेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, तुमको छू नहीं सकते तो हमारे साथ बैठ नहीं सकते। और इसीलिए उन्होंने कभी पढ़ाई भी नहीं की, उन्हें कभी स्कूल भेजा ही नहीं गया क्योंकि जहां स्कूल था वहां आम लोग पढ़ते थे, अछूतों के लिए स्कूल बना ही नहीं था। वो कभी स्कूल नहीं गई और एक ऐसी जनजाति से आ रही थी जिसे समाज में कभी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था उस वक्त में। बट जैसे ही उनकी उम्र हुई 12 साल, 12 साल में उनकी शादी तक करा दी गई। 12 साल की शादी, कोई पढ़ाई नहीं, कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं। करियर के नाम पर तो शायद कभी सपना भी नहीं सोचा होगा कि मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ करूंगी, क्या मुझे भी कोई सम्मान मिलेगा। हालांकि उन्हें एक बार नहीं, दो दो बार सम्मान मिला है। जी हाँ, हम आपको बता दें 2012 में भी उन्हें अवार्ड मिला था और 2018 में भी अवार्ड मिला था। और 2018 में जो अवार्ड मिला था वो तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री से मिला था। अब ये मोहतरमा हैं कौन, चलिए अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने भले ही डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की, इन्होंने भले ही कुछ और नहीं किया, बट इनके हाथों में वो जादू था कि ये सिर्फ पेट पर हाथ लगाकर बता देती थी कि बच्चे की पोजीशन क्या है, वो राइट है, वो लेफ्ट है, वो अप है, वो डाउन है, वो ठीक है, उसके दिल की धड़कने ठीक है, क्या माँ ठीक है, नहीं तो क्यों नहीं। सिर्फ उन्हें पेट पर हाथ लगाना था, कुछ देर सोचना था और यूं ही वो गेस कर लेती थी, हर एक चीज पकड़ लेती थी। इवन उस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, जितनी भी डिलीवरियां हुई वो सिर्फ इनको और इनकी दादी नहीं कराई। हाँ, इनकी दादी भी बच्चों की डिलीवरी कराया करती थी और ये हुनर उन्हें उन्हीं से मिला था। 15,000 से अधिक सुरक्षित डिलीवरी कराना, आपको भी पता है कि बच्चे की डिलीवरी कराना कितने मुश्किल जंग होती है। इवन डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं। कोई कोई केस तो बहुत लंबा जाता है। लिवर पेन का दर्द होना, बाद में उसको संभालना, ब्लीडिंग को रोकना, जैसे कितनी ही चीज़ें होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी होता है, सी सेक्शन होता है, और दोनों ही बहुत टफ होते हैं, उस माँ के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। घंटों घंटों का काम लग जाता है कभी बार। और उस दौरान इन्होंने 15,000 लोगों की डिलीवरी कराई। कोई MBBS की डिग्री नहीं थी, इवन कोई सिंपल डिग्री भी नहीं थी। 98 वर्ष की थी जब इनकी डेथ हो गई थी 2018 में 25 दिसंबर को बेंगलोर में, और इनका जन्म हुआ था 1920 में तुमकुरु जिले के पावागढ़ा तालुक स्थित कृष्णापुरा गांव में। बिना किसी आधुनिक चिकित्सा सुविधा अस्पताल के लगभग 70 वर्षों तक पारंपरिक तरीकों से महिलाओं की डिलीवरी कराती आई। और कमाल की बात यह है कि इन्होंने इसके भी पैसे तक नहीं लिए, कभी भी एक भी पैसा नहीं लेती थी। लोग इन्हें देना तो चाहते थे, बट कभी इन्होंने मांगा ही नहीं, और जो देते थे उनको भी इनकार हो जाता था कि नहीं, हम पैसे लेकर क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने कभी पैसे लिए ही नहीं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में इन्हें राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार मिला समाज सेवा के लिए, प्लस डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई। हम आपको बता दें, तुमकुरु विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की भी उपाधि दी गई थी, प्लस भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, और इन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया, और इनका नाम था सुलगती नरसम्मा। एक ऐसी अम्मा जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बचाई, कितने लोगों की डिलीवरी कराई। लोग इन्हें बहुत प्यार करते थे। एक वक्त था जब इन्हें लोग अपने पास नहीं बिठाना चाहते थे। इनके घर को, इनके घर वालों को, इनकी जनजाति को खानाबदोश माना जाता था, और उन्हें गाँव से दूर बाहर रखा जाता था। किसी ने भी नहीं सोचा होगा ना कि हम जिसको अभी तक गांव से बाहर भगा रहे हैं, गांव के अंदर आने नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, छूना मना है, देखना मना है, वही इंसान न जाने कितनी जिंदगियों को जिंदगी देने वाला है। 15,000 मामूली संख्या नहीं होती है दोस्तों। 70 वर्ष तक लगातार बिना किसी हॉस्पिटल, बिना किसी मेडिकल, बिना किसी डॉक्टर की मदद के, अकेले बिना किसी डिग्री के ये पता करना कि बच्चे की पोजीशन क्या है, क्या वो स्वस्थ है, क्या वो स्वस्थ नहीं है, क्या कोई दिक्कत है, और एक से बढ़कर एक सफल डिलीवरियां कराना आसान काम नहीं था। सब जंग था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और उन्होंने अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करा दिया। आप बताइए, आपके पास कौन सा बहाना बाकी है? क्योंकि ये कहानियां मुझे तो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड करती है, मुझे इतना ज्यादा इंस्पायर्ड करती है जब मैं इनकी कहानियां सुनती हूं कि लगता है कि यार, लाइफ ना फुल ऑफ स्ट्रगल्स जरूर है, लेकिन जीतता वही है जो कभी खुद से हार नहीं मानता। और इसीलिए मैंने आते ही आज आपसे कहा था कि खुद को माफ कर दो। अगर आपने कोई गलती की है या आपके साथ किसी ने कभी कोई गलत किया, तो खुद के साथ इतनी सख्ती मत बरतो। खुद को माफ करना सीखो। दुनिया भर को माफ करते आ रहे हो, दुनिया भर को सिखाते आ रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, होता है यार, सिचुएशंस है, चलती रहती हैं, स्ट्रगल्स हैं, होते रहते हैं, तो जब अपनी बारी आती है तो आप क्यों भूल जाते हैं कि दुनिया है, चलता रहता है, सिचुएशंस है, ये तो आती जाती रहती हैं, और जिंदगी का नाम ही होता है दुख और सुख को साथ साथ में लेके चलना। खुद की एक छोटी सी गलती आपके लिए इतना बड़ा गुनाह कैसे बन जाती है कि आप खुद को सजा देना शुरू कर देते हैं, न जाने कितनी ही घटिया बातें बोल देते हैं, खुद को कोसते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, ये बोलते रहते हैं कि आई एम सच अ लूजर, मुझसे अब कुछ होने वाला नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। क्यों ऐसा होता है? हाँ, चीजें होती हैं, थोड़ी अलग होती हैं। अच्छा, सुलगती के पास भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी। वो नरसिम्हा, जिनको सब लोग अम्मा भी कहते हैं, अगर वो सोचती कि यार मेरे पास तो पढ़ाई का भी वक्त नहीं है, मुझे तो गांव वाले छुआछूत में बांधते हैं, छूने भी नहीं देते हैं यार खुद को, मैं क्यों इनकी मदद करूं, तो क्या आज ये यहाँ होती? क्या मैं इनकी कहानी आपको सुना रही होती? अगर या खुद के ऊपर सख्ती बरतती, ये कह करके कि मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ने मेरे साथ गलत किया, मुझे ऐसी जगह पर भेजा ही क्यों है, तो क्या आज इनकी कहानी मैं आपको सुना रही होती? नहीं ना। इसीलिए कभी कभार चीजों को जैसा है वैसा चलने देना चाहिए। प्लस अगर आपने कभी कुछ किया है या फिर आपसे कुछ गलतियां हो चुकी हैं कभी भी कहीं भी, तो खुद को माफ कीजिए, क्योंकि आप भी इंसान हैं और आपको भी मोहब्बत की जरूरत है, दूसरों से ज्यादा खुद के। आप जब तक खुद से मोहब्बत नहीं करते, दूसरे भी आपसे मोहब्बत नहीं कर पाते हैं। और ये कहानी आपको ये ज़रूर सिखाती है कि कमियां सबके अंदर होती हैं, लेकिन उन कमियों को ताकत में कैसे बदलना है, ये आपका चुनाव है। कैसे लगी आपको ये कहानी, चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और इंजॉय कीजिए कियान का फिल्म से मिथुन का गाना जी हुजूरी। मिलते इस गाने के उस पार आपके चैट बॉक्स में, आपके फीडबैक को और आपके मैसेजेस को पढ़ने। सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग ओना अपनी आज हिंदी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग के स्पेशल वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोना में। और मैं हूं आपकी अपनी मॉर्निंग रेडियो चौकी उन्नति, आपकी होस्ट एंड दोस्त आपके साथ मौजूद हैं पिछले काफी टाइम से। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह गोना शहर की धड़कन, आपका अपना रेडियो ज्ञान असली। और वक्त हो चला है अब आपके चैट बॉक्स की तरफ चलने का, जिसमें आपके कुछ मैसेजेस आए हैं। चैट बॉक्स मिलता है आपको एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन मौजूद है प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM के नाम से, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, अपना फीडबैक भेज सकते हैं। आलोकी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं और लिख रही हैं, गुड मॉर्निंग मैम जी, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हैं आप। विभु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं हाय मिश्रा जी फ्रॉम गोंडा, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड इसके बाद काफ़ी सारे इमोजीज हैं, थैंक यू सो मच। एंड मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, मोहम्मद सलीम, ओके वहाँ कलीम यहाँ सलीम। फिलहाल के लिए आपका स्वागत करते हैं, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा, आपका वेलकम इस्तकबाल करते हैं। एंड सुजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग आरज्योति मैम जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके बाद लिखा है मैम आपकी दोनों स्टोरी दिल को छू गई, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद कलीम जी लिख रहे हैं वेरी नाइस नेम, जानकारी भी अच्छी है, थैंक यू सो मच। एंड सुजीत जी ने लिखा है उन्नति जी कहानी कैसी भी हो उसे खूबसूरत बनाने में सबसे बड़ा रोल आप जैसी आरजे का होता है, वेल डन आरजे जी, बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ के लिए। एंड अनोखी जी ने नाइस मैम लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके बाद कलीम जी का एक और मैसेज है जो मुझे समझ नहीं आया, तो हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कलीम जी। फिलहाल के लिए आज तो हमने बहुत सारी आपसे बातें कर ली, आपसे हमने बात की आपके अपने ब्रेन के बारे में, यानी आपके खुद के दिमाग के बारे में। आपके दिमाग आपको बहुत कुछ सिखाता है और कई बार उल्लू भी बनाता है। जो यादें आपको याद होती हैं वो सच होती ही नहीं है। कुछ चीज़ें जो आप याद करते हो उसे एक घंटे के अंदर भूल जाते हो, लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी थी वो ये लगी थी कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो या नींद को पूरा नहीं करते हो तो आपकी याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये सुनने के बाद मुझे लगता है कि मेरे लिसनर आज के बाद तो अपनी नींद के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करने वाले हैं, अपनी नींद कंप्लीट करने वाले हैं। प्लस जो बेवजह का टेंशन लेकर आप अपने सर पे घूमते रहते हैं कि क्या हो जाएगा, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो क्या दुनिया डूब जाएगी, तो डूब जाने दीजिए दुनिया को, लेकिन अपनी टेंशन को थोड़ा साइड में कर दीजिए, क्योंकि आपके टेंशन की वजह से आपकी हेल्थ पर बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ते जा रहे हैं, इसी से आप चिड़चिड़े होते जा रहे हैं और अपने बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ख़ास लोगों के ऊपर चल्ला भी देते हैं, झल्ला लेते हैं, भले ही बाद में सॉरी बोल देते हैं, कई बार तो हम सॉरी भी नहीं कहते, वो तो यूं ही मान जाते हैं, आपकी आदतों को जानते हैं, बट ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके अलावा हमने बात की कि इस मौसम में क्योंकि सांप बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग अपना स्पेशली ध्यान रखेंगे। जब बारिश होती है और अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं, अंधेरे रास्तों पर हैं, तो लाइट का ज़रूर इस्तेमाल करें, ध्यान रखें, आसमान को देखते ना चलें। हाँ माना आसमान बहुत खूबसूरत लगता है, चांद बहुत प्यारा नज़र आ रहा है आजकल, बट कोशिश करें कि आजकल आपकी जो नज़रें हैं वो ज़मीन की तरफ ज़्यादा रहें, अगर आप पेड़ पौधों के आसपास से गुजर रहे हैं, क्योंकि रोड पर चलते चलते कहीं नहीं सांप दिख जाता है, कभी कभी ऐसा होता है गलियों से गुजरते हुए सांप दिख जाते हैं। अगर आप घर से बाहर आ रहे हैं या घर के बाहर आपका जो गेट है उसमें कहीं ऐसा है खुला पार्ट है जहाँ से सांप अंदर आ सकते हैं, तो कोशिश करें कि वो भी ध्यान रखें। ऐसे केसेस मेरे आसपास बहुत आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा केसेस मैं ऐसे देख चुकी हूँ, प्लस ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपके साथ अभी ऐसा कभी होता है कि सांप ने आपको काटा है, तो भैया टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, पैनिक ना करें। सबसे बड़ी बात यही है कि जब भी किसी को कोई सांप काटता है तो इंसान पैनिक कर जाता है ये बात सोच कर कि अरे अब क्या होगा, और वही पैनिक स्टेट आपको और भी ज़्यादा मुसीबत में डाल सकती है। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, बाबाओं के पास ना जाएं, झाड़ फूँक ना कराएं, नीम के पत्तों से जहर नहीं उतरेगा। हाँ जब आप एंटी वेनम लगवा लेंगे तो इसका जहर ज़रूर काम डाउन हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपकी नज़रें नीची हैं, आप सड़क को देख रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, हाँ अपनी धुन में रहिए, लेकिन अपने सेहत का भी ख्याल रखिए। और अगर आपके पास
ऐसा कुछ होता है या आपके आसपास कभी ऐसा कुछ होता है तो उन्हें हॉस्पिटल जाने की सलाह दे, ना कि नीम के पत्ते, बेल के पत्ते, ये पत्ते वो पत्ते खाने की, क्योंकि खाने से कुछ नहीं होने वाला। हालांकि कुछ ऐसे पौधे हैं जो जहर को रोकने का काम करते हैं, लेकिन वो पौधे आपको ढूंढने में बहुत वक्त लग जाएगा और इतना वक्त उस इंसान के पास नहीं होता जिसको किसी सांप ने काटा हुआ है। जहर बहुत तेजी से चढ़ता है। हर एक जिंदगी बहुत कीमती है, तो अपनी जिंदगी का भी ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। प्लस प्लस प्लस अपने स्ट्रेस को टाटा बाय बाय कर दें भैया, क्योंकि स्ट्रेस ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन भी इतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना आपका खुद का स्ट्रेस है। आपके पेट से शुरू होता है, आपके दिमाग को ख़राब करता है, दिमाग के साथ साथ बाकी चीज़ें भी फिर ख़राब हो ही जाती हैं। फिर चाहे वो चीज़ें आपकी काम की हों, ना काम की हों, रिश्तों की हों, बच्चों की हों, कोई भी हो, क्योंकि स्ट्रेस आपको हमेशा चिड़चिड़ा बनाता है। आप नींद पूरी नहीं करते इसलिए भी चिड़चिड़े रहते हैं, और इसीलिए भारत में न जाने कितने लोग सुबह उठते ही गुस्सा करते हैं क्योंकि उनकी नींद कंप्लीट नहीं होती। आप जे 4-5 घंटे नींद पूरी करते हैं, इसके अलावा आप नींद नहीं ले रहे, तो इसीलिए आपको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर आप वो इंसान हैं जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, कोशिश करें 7-8 घंटे सोने की, 9 घंटे सोने की, और उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड कितना रिलैक्स होता है। जी नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ। भले ही हमारे यहाँ पे कहा जाता है देर तक सोने वाला बहुत बड़ा आलसी होता है, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि साइंस ये प्रूव करती है नींद इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कम नींद लोगे तो आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि आप अभी पहले से ही गजनी से इंस्पायर्ड हो जाए, है कि नहीं। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का। एंड सुजीत जी लिख रहे हैं नींद के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। वाह मैम, थैंक यू सो मच, आपका ये फीडबैक जान के अच्छा लगा कि आप नहीं करने वाले हैं, यही बस मेरा समझाने का तरीका था। और घड़ी ने भी कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का। तो सुबह 8:30 बजे से जो मैं आपको परेशान कर रही हूँ, अब चाहूँगी आपसे इजाज़त। ख्याल रखिएगा आप सभी अपना। आपका अगला कार्यक्रम गांव की गूंज सुनना मत भूलिएगा, आपको आपके गांव की मिट्टी की खुशबू बहुत दूर तक आने वाली है इसको सुनने के बाद। फिलहाल अगर आप अवधि सुनते हैं तो जरूर एंजॉय करें। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM, यही गुना शहर की धड़कन पर। अभी तक आपके साथ मौजूद थी आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी मॉर्निंग चौकी उन्नति। ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM कोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। गांव के गूंज की अपार सफलता के बाद में हम सभी मिलकर एक फिर से नया एपिसोड ला रहे हैं, जिसके अंदर मधुर मधुर गीतों की जो माला पिरोई गई है वो श्रीमती किरण पांडे जी की आवाज में, और उनका साथ देने आ रही हैं श्वेता जी, जिमी जी। और आज की हमारे नए एपिसोड की जो थीम है वो है श्रावस्ती। तो आइए हम सभी मिलकर के एक नए एपिसोड की ओर चलते हैं। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अरे आज सूरज किधर से निकला है, सब हमें लेने आ गए हैं, और देखो कितने खुश हैं सब।
2: हाँ समता मैम, हम सब श्रावस्ती घूमने चल रहे हैं।
3: मौसम कितना प्यारा है और बदली छाई हुई है, हवा भी कितनी ठंडी ठंडी चल रही है।
4: हाँ, पिकनिक के लिए बिल्कुल मस्त मौसम है। लो, हम दाल भरे पराठे लाए हैं तुम सब के लिए।
1: मम्मी ने कॉफी भेजी है गर्मा गर्म। भैया बैंगलोर गए थे तो वहाँ से फिल्टर कॉफी लाए हैं।
2: काले बादल हम लोगों के साथ चल रहे हैं। अरे लगता है आज तो पानी जोर से बरसेगा।
3: अरे नहीं श्वेता मैम, दादी ने बचपन में बताया था, काला बादल जी डरवावे और भूरा बादल पानी लावे।
4: ड्राइवर भैया एसी धीरे रखिएगा, श्वेता अभी भी खांस रही है। श्वेता शाल ओढ़ लो।
1: आप बरसात पर गाना सुना दीजिए, श्वेता ठीक हो जाएगी।

0: हम लोग रज्जो बुआ से भी मिलेंगे। अरे किरण दीदी, उनकी दोस्त कहाँ हैं?
1: रज्जो बुआ कौन है और उनकी कौन दोस्त?
2: रज्जो बुआ, कम्मो बुआ, मुन्नी बुआ और कुक्कू बुआ, ये चार बहुत अच्छी दोस्त हैं।
3: राधा कुंड में जो सफेद घर है ना, उससे थोड़ा आगे इन चारों का घर है।
0: अरे किस्मत तो देखो, चारों की शादी कटरा श्रावस्ती में ही हुई है।
2: जब इनकी शादी तय हुई तो सब लोग गुइया गाना गाकर खूब चिढ़ाते थे।
1: कौन सा गाना, हमें भी सुनाइए ना।

0: इटिया थोक आ रहा है, कौन कौन शुक्ला के दही बड़े खाएगा?
1: हम भी खाएंगे।
2: बुआ लोगों के लिए भी ले चले क्या? अरे ये तो बहुत टेस्टी है,
3: लौटते समय हम भी पैक करवा लेंगे, बहुत ही यमी है ये।
4: केवल रज्जो बुआ मिलेंगी तुम सबको, कम्मो बुआ बेटे के पास रहती हैं और मुन्नी बुआ फैजाबाद में रहती हैं और कुक्कू बुआ टीचर हैं, तो उनकी पोस्टिंग बहराइच में है।
0: जल्दी गाड़ी में बैठो, बहुत तेज पानी बरसने वाला है।
2: अरे बच गए सब, नहीं तो बहुत ज्यादा भीग जाते सभी लोग। हाँ हाँ भैया सुनो, धीरे धीरे गाड़ी चलाना,
4: बिल्कुल रास्ता नहीं दिख रहा है।
3: किरण दीदी और बातें बताइए ना रज्जू बुआ की।
4: कुक्कू बुआ जब शादी हुई तब जॉब कर रही थी, अरे स्कूल टीचर थी तो बहुत बिजी थी।
0: हम भी उनको जानते हैं, सबको डांट लगाती थी, ये करो ये मत करो।
2: फिर तो उनके पति देव को भी डांट पड़ती होगी।

0: की शादी में कितना मजा आया होगा। मम्मी बताती है कि पहले जब किसी की शादी होती थी तो पूरा मोहल्ला तैयारी करवाता था।
1: सही कह रही हो जिम्मी, मुन्नी बुआ के हस्बैंड थोड़े डार्क थे।
2: अरे DTH, टॉल डार्क एंड हैंडसम, सच में बहुत हैंडसम।
3: तो क्या वह कहती थी कि

0: बिल्कुल सही कहा श्वेता मैम। रज्जो बुआ के बारे में और भी बताइए ना।
1: रज्जो बुआ बिल्कुल टॉम बॉय हैं। मम्मी दादी चाची सब नाच रहे थे उनकी शादी की तैयारी में।
2: उन्होंने कभी भारी साड़ी गहने कुछ पहने ही नहीं थे, तो कुछ भी पहना दो सब में नखरे करती थी।
3: सब कैसे पहन लेते हैं। अरे आजकल की दुल्हन के लहंगे ही देखो कितने भारी होते हैं।

0: जिम्मी को कितना मजा आ रहा है। उन चारों की शादी में हमको बहुत मजा आया था।
1: हमें थोड़ा थोड़ा याद है, एक महीने के अंदर सबकी शादी हुई थी।
0: एक गाना और था जिसे हम लोग खूब

0: हे भगवान, कितनी तेज पानी बरस रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज हम पूरा श्रावस्ती घूम पाएंगे।
1: कोई बात नहीं, एक दिन फिर आएंगे श्रावस्ती घूमने हम लोग। आज तो चारू बुआ की कहानी सुनकर लग रहा था कि कोई पिक्चर देख रहे हैं।
2: नदिया के पार जैसी ना जिमी। लो हम लोग पहुंच गए।
3: ये है रज्जू बुआ, फूफा जी, आजी और बाबा। ये बुआ की बेटी है डिम्पी।
2: अरे डिम्पी, तुम श्रावस्ती में रहती हो? हम लोग योगा कैंप में मिले थे।
0: समता मैम, आपने बताया था कि ये लोकगीत बहुत अच्छा गाती हैं।
1: बाबा बता रहे हैं कि भारी बारिश के कारण अंगुलीमार की गुफा, सहेत महेत, थाई टेंपल, ये सब बंद है। तो कम्मू बुआ के बारे में बताइए ना।
3: कम्मू बुआ के ससुराल वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो जो लाल घर देख रही हो ना, वो उन्हीं का है।
2: पहले खाना खा लेते हैं फिर बताइएगा, बहुत भूख लग रही है।
0: चलो चलो, पहले कम्मो से गाना सुनते हैं।

0: आज तो गाना गाइए, बरसते पानी में मैं तो ना जाऊंगी।
1: वाह भाई वाह।
2: आजकल के बच्चे ना बहुत बदमाश होते जा रहे हैं। अरे कम्मो बुआ की शादी में सबने गाना गाया, सैया बड़े कठोर हैं।

0: याद आया, उनकी बुआ सास बहुत गुस्सा हो गई थी। उन्होंने बोला था बारात वापस लेकर चलो।
1: अरे फिर क्या हुआ? उन लोगों ने तो बुआ को बहुत परेशान किया होगा।
2: कम्मो बुआ भी कम शैतान नहीं है। देखिए बाद जब उससे गाना सुनाने को कहा गया तो उन्होंने गाया।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी, हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
3: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में, और मैं हूँ आपका अपना आरजे अदनान। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना?
4: बिल्कुल, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप सवर जाता है।
3: बात तो सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है, और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है कि आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी।
4: अरे मतलब बच्चे का भविष्य स्कूल से भी पहले ही शुरू हो जाता है।
3: बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए।
4: अच्छा, तो क्या जन्म के बाद?
3: नहीं, उससे भी पहले।
4: उससे भी पहले? अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं, आखिर कब से?
3: विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चे को भी जीवन का मजबूत आधार मिलता है, यानी एक मजबूत शुरुआत होती है।
4: यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं, बल्कि माँ के स्वास्थ्य और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है।
3: बिल्कुल, जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, जब हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की जन्म की ओर ले जाता है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है।
4: और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर जोर दिया जा रहा है।
3: बिल्कुल सही कहा, हाल ही में संपन्न हुए पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर ही नहीं बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।
4: यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है।
3: बिल्कुल, और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी साथी टीकन देवी जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
5: धन्यवाद आरजे जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
6: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार।
3: सेहतिया जी, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच में माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण होता है?
5: बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और यह केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोजाना संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है, वह कम बीमार पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल भी कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना ही नहीं रहता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसके शरीर से पहुँचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी बेहतर होगी।
6: यानी माँ जो खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुँचता है।
5: बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसका शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसके मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वस्थ और पोषण पर ही निर्भर करता है।
4: अच्छा, यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
5: बिल्कुल सही कहा।
3: सेहतिया जी, आपने पोषक तत्वों की बात की। आजकल एक शब्द और सुनने को मिलता है, एनीमिया, यानी कि खून की कमी। आखिर ये समस्या कितनी गंभीर है?
5: यह बहुत गंभीर समस्या है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता है कि उन्हें खून की कमी है। वो कमजोरी, थकान या चक्कर आने को समान बात समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।
4: ओ, इसलिए हमेशा उन्हें थकान रहती है।
5: बिल्कुल, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के समान लक्षण हैं। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिला में हो तो जोखिम भी और बढ़ जाता है।
3: और किस तरह का जोखिम?
5: समय से पहले परसों हो सकता है, कम वजन वाले बच्चे का जन्म हो सकता है, और परसों के समय अगर ज़्यादा रक्त स्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
4: अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोरी महसूस करना होता है।
6: यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है। एनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं है बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अगर माँ एनीमिक है तो बच्चे में भी आयरन की कमी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
3: यानी इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं बच्चा भी चुकाता है।
6: बिल्कुल, इसलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियां, नियमित जांच और पोषण संबंधी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
4: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए। क्या तैयारी उससे पहले से भी जरूरी है?
5: बिल्कुल, स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है और उसे आयरन की कमी नहीं है तो भविष्य में गर्भावस्था भी अधिक सुरक्षित रहती है।
6: यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है।
5: आपने बिल्कुल सही कहा।
3: हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था। क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध होता है?
5: बिल्कुल, बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फोलिक एसिड

0: शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेजी से विकास होता है। अगर इस पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले तो बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
1: टीकन जी, अब श्रोताओं को ये भी बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
0: सबसे जरूरी चीज है बच्चे के जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना। बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे के लिए पहली प्राकृतिक सुरक्षा का कवच होता है। ये उसे कई संक्रमणों से बचाता भी है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी या कोई भी दूसरी चीज नहीं देनी चाहिए।
2: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
1: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, फल, अंडा और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
1: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, अंडा, जहां परिवार खाता हो, दही और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत थोड़ी थोड़ी मात्रा से करें और धीरे धीरे बच्चों की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता बढ़ाते जाएं।
3: यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं है, अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिल सकता है।
0: बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खाना, जबकि सच ये है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही और अंडा जैसे खाद्य पदार्थ भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात है कि भोजन संतुलित हो और समय पर दिया जाए।
2: सेहतिया जी, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ और पोषित हो।
1: अक्सर हम बच्चों के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं।
3: और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बना रहे हैं।
0: बिल्कुल सही। परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों को सबसे अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है कि हम ये सोच बदलें। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वो अपने बच्चे, परिवार और समाज की बेहतर देखभाल कर पाएगी।
2: और इसमें परिवार के बाकी सदस्यों की भी बराबर जिम्मेदारी है। पति, सास ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है।
1: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जाँच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती हैं।
3: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब सही जानकारी और सही व्यवहार साथ आते हैं तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं।
2: श्रोताओं, आज की इस चर्चा में हमने कई महत्वपूर्ण चीजें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों को अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जाँच और आयरन

0: फोलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए जरूरी हैं।
1: तो श्रोताओं, हमने ये भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।
2: और मैं सभी बहनों और परिवारों से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सेहत को कभी भी नजरअंदाज न करें, समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
3: अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई सवाल हो तो अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता, एनम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है।
0: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से बस इतना ही। याद रखिए, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा।
1: इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ।
3: धन्यवाद। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें।
2: धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही खत्म होता है और जाने से पहले लेंगे हम शपथ।
0: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे
0: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
0: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
4: साफ सफाई और स्वच्छता का
0: पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे
4: ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
4: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
0: तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं, अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है, तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का पसंदीदा शो शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सुन सहेली। और तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूं मैं, यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो कैसे हैं आप सब, सबसे पहले तो अपना हाल बताइए कि कैसे हैं आप सब, आप सभी का हाल चाल क्या है। और भाई, मौसम जो है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुहाना है। और आज तो मौसम का प्यारा होना, सुहाना होना बनता भी है, और वो क्यों बनता है, आज के दिन में ऐसा खास क्या, ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले पहले पहले आपका अपना पसंदीदा शो शुरू हो चुका है सुन सहेली, जो कि लेकर के आती है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका। तो आइए, इस प्यारे से मौसम के साथ ही विश कर देती हूँ आप सभी को कि बहुत ही प्यारी वाली आप सभी को शुभ दोपहरिया, मेरी तरफ से भी और आपकी अपनी आरजे समता की तरफ से भी, जो कि आज अभी फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैम छुट्टी पे हैं, तो आज वो फिलहाल यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि वो सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पे भी होंगी ना, उनका मन जो है ना, वो 1:30 बजते ही बस लग गया होगा कि सुन सहेली शुरू हो गया होगा। उनका मन जो है वो हमारे साथ है, यहीं पे है, बस वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। और कोई बात नहीं, कल तक आ जाएंगी, आपसे बहुत सारी बातें करेंगी, फिर से आपके साथ जुड़ेंगी। तब तक के लिए, जैसे कि मैंने कल कहा था, वैसे आज भी कहती हूँ कि हम उन्हें याद करते रहेंगे, उनकी बातें करते रहेंगे, और साथ ही साथ ये विश भी करते रहेंगे कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, और जल्दी से आकर हमें ज्वाइन करें। तो आइए चलते हैं अब सबसे हमारे स्टार्टिंग वाले सेगमेंट की तरफ, जो कि होती है प्यारी सी पोएट्री। लेकिन उससे पहले पहले पहले मैंने ये क्यों कहा कि आज का दिन खास है, क्योंकि आज है 30 जुलाई, और 30 जुलाई के इस दिन में आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन यानी कि शिव और शक्ति का, कहते हैं ना, शिव शक्ति का बेहद ही प्यारा सा संगम आज से शुरू हो रहा है। इस एक महीने में, और जितनी कहते हैं ना कि जिसे सावन का एक महीना होता है वो भक्ति के तो करीब लेकर के जाता ही है आपको। हम बाबा भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, नाथ की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, सब कुछ करते हैं, और एक खुद के अंदर एक अजीब सी अलौकिक सी शक्ति भी महसूस होती है, जो उनकी ईश्वर की देन होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्यारा है ये महीना। आज कुछ इसी को याद करेंगे, और साथ ही साथ बहुत सारी बातें भी बताएंगे आपको सावन को लेकर के, कि क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है पौराणिक मान्यताएं, और कैसे की जाती है सावन की पूजा, क्या है विधि विधान, सब कुछ बताएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है लिसनर्स कि आज थर्सडे है, और थर्सडे हमारा हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को डेडिकेट होता है, तो आज के दिन भी कुछ उन्हीं की बातें होंगी, और श्रद्धा और भक्ति की बातें होंगी, और भगवान शिव की बात तो होनी बनती है, क्योंकि शिव और शक्ति का पवित्र मास जो है वो शुरू हो गया है, यानी कि सावन। तो आइए चलते हैं प्यारी सी पोएट्री की तरफ। शिव ही प्रेम है, शिव ही प्रेम है, शिव ही ध्यान है, शक्ति उनके प्राणों का सम्मान है। शिव के बिना शक्ति अधूरी सी लगे, शिव के बिना शक्ति अधूरी सी लगे, शक्ति से ही शिव का नया रूप जगे। शिव के बिना शक्ति अधूरी सी लगे, शक्ति से ही शिव का नया रूप जगे। माता पार्वती हैं ममता की धारा, शिव करते हैं सृष्टि का उद्धार। माता पार्वती हैं ममता की धारा, शिव करते हैं सृष्टि का उद्धार। एक रूप भोले एक रूप विशाल, दोनों मिलकर रचते हैं नया काल। शिव है विश्वास, शक्ति है आस, दोनों का मिलन है सबसे खास। अर्ध नारेश्वर रूप में दोनों एक हैं, सर्चन और कल्याण के रास्ते अनेक हैं। शिव ही भक्ति हैं, जिसमें शक्ति का वास है। हर एक के हृदय में जगाए विश्वास, वही तो शिव और शक्ति का साथ है। शक्ति से ही शिव को मिलती है शान, दोनों के चरणों में है सबका ध्यान। वाह, आप सभी को ये मास बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं हैं आप सभी को। तो आइए चलिए चलते हैं अब हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि होता है रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ क्या कहता है? आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है, अपने मन में विश्वास जगाओ और सारा जहां अपने कदमों में पाओ। बिल्कुल यही है आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, कि हमेशा कहते हैं ना कि शिव विश्वास है और शक्ति उनके मन की आस है। अगर ऐसा है तो हमेशा अपने मन में एक विश्वास जगाइए, एक आस जगाइए। हम क्या करते हैं कि हम अपनी उम्मीद को ही कई बार मार देते हैं।

0: सोचते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है या जो कुछ भी हमारी परिस्थितियां हैं, हम उनसे कभी नहीं निकल पाएंगे, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, या थोड़ी सी भी अगर कुछ ऊंच नीच हमारे साथ हो जाती है, कुछ बुरा हो जाता है, तो हम ये मान करके ही बैठ जाते हैं कि अब ये कभी ठीक नहीं होगा, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपने मन में आस को जगा कर रखेंगे, तब तक आप सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना कि उम्मीद, एक कहावत हमेशा कही जाती है कि डूबते को तिनके का सहारा, ठीक उसी तरीके से हमेशा हमेशा उम्मीद होनी चाहिए। जब आप किसी ऐसी कंडीशन में फंसे होते हैं, किसी एक ऐसी स्थिति में फंसे होते हैं जब चारों तरफ लगता है कि सिर्फ अंधेरा है, अब तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, और मेरी तो कोई उम्मीद नहीं है, जब ये महसूस होने लगी कि कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी अपनी उम्मीद को जगाए रखना चाहिए। क्योंकि जब तक आप मन में आस लेकर चलते हैं, तब तक ही आपके मन में विश्वास होता है। जिस दिन आपकी आस टूटती है, उस दिन आपके मन का विश्वास भी टूट जाता है। इसलिए हमेशा मन में आस रखें, स्थिति कितनी भी बुरी हो, चीजें कितनी भी खराब हो, पर हमारे अंदर जो कभी नहीं मिटनी चाहिए वो हमारी उम्मीद होनी चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी और कोशिश करके इन स्थितियों से निकल जाऊंगी, मैं कर सकती हूँ, मुझ में अभी भी वो ताकत है। ये हमेशा अपने आप को विश्वास दिलाइए, क्योंकि जब तक आप अपने मन की उस ताकत को जगा करके रखेंगे ना, आपको सब सही लगेगा। और जिस दिन आप उसे छोड़ देंगे, उम्मीद का दामन छोड़ देंगे, उस दिन पूरी दुनिया आपको लगेगा कि अरे अब तो कुछ भी नहीं है, अब कैसे होगा। तो हमेशा अपनी उम्मीद और अपना विश्वास, मन का विश्वास, कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक उसी तरीके से अपने मन के विश्वास को हमेशा जगा कर रखिए कि कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो, एक ना एक दिन अच्छा जरूर होगा। अगर बुरा वक्त है तो कोई बात नहीं, हम अपना अच्छा वक्त ला सकते हैं, हम में वो ताकत है, वो काबिलियत है कि मैं फिर से अपना अच्छा वक्त ला सकती हूँ, जितनी भी बुरी सिचुएशन से उन्हें ठीक कर सकती हूँ और सब कुछ हासिल कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए उम्मीद जगाएं और विश्वास की उंगली हमेशा थाम कर रखें। आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आपसे यही कहता है लिसनर्स, तो आइए चलिए सीधे चलते हैं। भाई सावन आया है, बादल छाए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा और सुहाना सा मौसम है, तो इस मौसम को एक प्यारे से सॉन्ग के साथ में सेलिब्रेट करना तो बनता है, सावन का स्वागत करना तो बनता है। तो आज हम भी करेंगे स्वागत आपके अपने सुन सहेली प्रोग्राम में एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ। तो आइए सीधे चलते हैं सॉन्ग की तरफ, और बस आपको कुछ नहीं करना है, सॉन्ग को सुनना है, इंजॉय करना है और इंतजार करना है। इंतजार इस बात का कि अभी जो मैं ब्रेक के उस पार आऊंगी ना आपसे मिलने के लिए, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊंगी इस प्यारे से सुहाने से मौसम के बारे में, जिसे हम कहते हैं सावन। तो आइए चलिए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग स्टेडियो।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़क।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।

बिल्कुल सावन आया, बादल छाए। भाई सावन भी आ गया है और आसमान में बहुत ही प्यारे प्यारे से बादल भी छाए हुए हैं। इसलिए आज हमने सोचा कि सबसे पहले सॉन्ग पहला सॉन्ग आप लोगों को यही सुना देते हैं कि सावन आया और बादल छाए। तो सावन आ गया है, तो आइए जानते हैं कि सावन का ये जो महीना है, जो पवित्र महीना है, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती का होता है, इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है, क्या कहती है पौराणिक कथाएं और क्या महत्व है सावन के इस महीने का। तो मैं आपको बता दूं कि सावन के महीने में पूरे ब्रह्मांड में शिव तत्व की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि इस पूरे महीने में शिव की शक्ति, शिव की भक्ति बहुत ज्यादा होती है। और साथ ही साथ में ऐसा माना जाता है कि ये जो महीना होता है वो हरियाली और खुशहाली लेकर के आता है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आता है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि जेठ में बहुत ज़्यादा तपती हुई बिल्कुल गर्मी पड़ती है, और फिर जब आषाढ़ आता है और आषाढ़ के बाद में फिर सावन आ जाता है, तो सावन का ये महीना हरियाली लेकर के आता है। आप देखते हैं ना पौधे कैसे हरे हरे हो जाते हैं, सर्व तरफ जो पौधे हैं उनमें हरियाली होती है। सावन का महीना ऐसा होता है कि जब पानी बरसता है तो हर ओर जहाँ भी आप देखते हैं वहाँ आपको सब कुछ अच्छा लगता है, कितना प्यारा मौसम रहता है। तो कहीं ना कहीं ये हरियाली और खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। इस पूरे महीने में ऐसा माना जाता है कि अगर पूरे मन से आप शिव जी की पूजा करते हैं तो जो भी आप चाहते हैं वो शिव आपको ज़रूर देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे जो भोलेनाथ हैं वही वो बहुत ही भोले हैं, तो भोलेनाथ की आराधना करें और अपने लिए अपना जो भी आप अपने इच्छाओं को चाहते हैं, अपने मन में चाहते हैं, उसे भोलेनाथ से ज़रूर मांगिए। तो आइए जानते हैं कि आखिर सावन के पीछे की कहानी क्या है। तो पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला भयंकर हलाहल यानी कि विष निकला था, और भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा करने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। लेकिन जो जहर था उसकी जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर पवित्र गंगा जल और शीतल दूध को डाला, तभी से सावन में शिव के जल अभिषेक की परंपरा शुरू हो गई। आपने देखा होगा कि सावन के महीने में बहुत सारे लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं, उसमें भी हम भगवान शिव के ऊपर दूध का ही अभिषेक करते हैं। और सावन के इस महीने में ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र भी माना जाता है। कहते हैं कि अगर भगवान शिव पे आप दूध अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो इससे भगवान शिव वैसे तो एक साधारण, अगर एक लोटा आप केवल उनको पानी भी आप चढ़ा रहे हैं तो उससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शिव को दूध चढ़ाने की मान्यता है। कहते हैं इससे जितने भी कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, यानी कि कोई बहुत लंबे समय से जिसे होता है ना कि ग्रसित है किसी बीमारी से या परेशान है किसी बात को लेकर, तो जब आप चढ़ाते हैं तो मन की शांति तो मिलती ही है, पर इससे शिव आपकी मन की सारे कष्टों को हरते भी हैं। और इसी के साथ में धर्मेंद्र जी आ गए हैं जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, और इसी के साथ में आ गए हैं तबिश खान जी जो कि हमें लखनऊ से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून तबिश जी, कैसे हैं आप? तो आइए आगे चलते हैं। इसकी एक दूसरी कथा भी है जो कि दूसरी मान्यता मानी जाती है, और वो है माता पार्वती की कठिन तपस्या। दूसरी मान्यता ये है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने इसी मास में उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया, इसलिए यह महीना शिव और शक्ति के अटूट मिलन को दर्शाता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि हमेशा कठिन तपस्या करनी चाहिए, उन चीज़ों को अपनाना चाहिए जिनमें आपकी मेहनत हो। कहते हैं ना कामयाबी तभी अच्छी लगती है जब अपनी मेहनत से मिलती है। ठीक उसी तरीके से कि जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत कठिन तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, वो तब आपको मिलती है, तो वो निखार चेहरे पर कुछ अलग ही होता है। ठीक उसी तरीके से हमारी माता पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए बहुत ही कठिन तप किया, और उनके मन में ये बिल्कुल एक दृढ़ संकल्प था कि मुझे मेरे भोलेनाथ को पा ही लेना है, और उन्हें भोलेनाथ को पा लिया। और शिव और शक्ति का यही मिलन इस पूरे मास में, पूरे महीने में
होता है और उनकी आराधना की जाती है। कहते हैं कि अगर इनकी साथ में आराधना की जाए तो ये जो कि विवाहित जोड़े होते हैं उनके लिए बहुत शुभ माना जाता है। और इनकी शादी होने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट बस सब कुछ है और ये कि उनकी शादी होनी है, तो उन्हें भी शिव और पार्वती की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। कुंवारी लड़कियों को ज़रूर से शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ओ ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी महेंद्र जी, मुझसे थोड़ा सा हो गया, सॉरी महेंद्र जी। तो यही मेरा कहना है कि इस दिन, इस महीने में ये मान्यताएं होती हैं। आइए आप जानते हैं कि सावन के सोमवार में पूजा का क्या विधि विधान है। तो मान्यता ये मानी जाती है कि सावन के सोमवार में व्रत रखने से बहुत समय से चले आ रहे जो संकट होते हैं वो दूर हो जाते हैं और सुख और समृद्धि आती है। देखिए, व्रत रखने से सुख समृद्धि आती है, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, क्योंकि सावन के सोमवार की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि सावन का सोमवार जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं, ये जैसे अभी हमने कहा ना कि पूरे ब्रह्मांड में शिव की शक्ति कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए सावन के सोमवार की मान्यता बहुत है। आइए अब चलते हैं आगे। और ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुंवारी कन्याओं को भी ये व्रत जरूर रखना चाहिए और विवाहित महिलाएं भी इसे रख सकती हैं। अब आते हैं कि पूजा का विधि विधान क्या है, कैसे की जाती है सावन के सोमवार की पूजा। वैसे तो आप सभी को बहुत कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहती हूँ। सोमवार को सुबह उठकर सबसे पहले आपको स्नान करना चाहिए और जहाँ तक हो सके, अगर आपके पास मतलब संभव हो तो हमें सफ़ेद या फिर केसरिया कलर के ही कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद आप हाथों में जल ले लीजिए जो भी आप, और भगवान शिव की शिवलिंग पर उसे अर्पित करें, धीरे धीरे अर्पित करें और उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं। मंदिर हो या घर, शिवलिंग पर सबसे पहले जल ही चढ़ाना चाहिए। उसके बाद अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध, दही, घी, शहद या फिर चीनी भी चढ़ा सकते हैं। अंत में दोबारा, जब ये सारी चीज़ें आप चढ़ा लीजिए, उसके बाद अंत में दोबारा से आप शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाएं, जिससे कि पूरी जो शिवलिंग है ना उस पर से ये सारी ही चीज़ें जो है वो, ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद फिर से आपको जल चढ़ाना होता है। दूसरी बात आती है कि महादेव को चंदन बहुत पसंद है, इसलिए चंदन का तिलक लगाना चाहिए। और हाँ, भगवान की शिवलिंग पर हमेशा अक्षत चढ़ाना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है खड़े चावल। अगर आप भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा अक्षत चढ़ाने चाहिए, बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र के साथ सफ़ेद फूल और कोई भी एक मौसमी फल ज़रूर चढ़ाएं। सॉरी महेंद्र जी, मैंने जब अभी पढ़ा था तो मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, सो सॉरी, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आइए चलिए अब चलते हैं आगे, जानते हैं कि क्या कुछ है और चूंकि विधि विधान है तो उसमें ये आता है कि शिव के सामने, हमेशा शिव जी के सामने आप घी का ही दिया जरूर जलाएं। सोमवार, अगर आप सावन का सोमवार व्रत रहते हैं तो व्रत की कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। देखिए, ये बहुत मेन होता है, जैसे जब हम व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं तो बस पूजा कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि जितनी भी कथाएं जुड़ी हुई हैं, पौराणिक कथाएं, हर दिन से, हर किसी खास महीने से, तो उनका कहीं ना कोई महत्व है। जब हम सुनते हैं तो उससे हमें कोई ना कोई एक सीख मिलती है, शक्ति मिलती है कि अच्छा ऐसे है तो मुझे ऐसे करना चाहिए। इसलिए आप ज़रूर व्रत कथा ज़रूर पढ़ें। दूसरी बात आती है कि अगर आप सावन के सोमवार में, मान लीजिए व्रत हैं या व्रत नहीं भी रह रहे हैं, तो जैसे कुछ लोग व्रत नहीं रहते हैं, सभी व्रत, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी सावन का सोमवार व्रत रहें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि सावन के पूरे एक महीने हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, कि सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सावन के सोमवार में आपको फलहार खाना चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप फलहार करें, अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो कोशिश करें कि हम लहसुन प्याज वगैरह ना खाएं। देखिए, ये अपनी श्रद्धा की बात होती है, अगर आप मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। तो
ये थे पूजा के कुछ विधि विधान। ये था कि शिव और शक्ति का मिलन है, क्या पौराणिक कथाएं हैं और सावन के इस महीने का क्या महत्व है। तो आइए अब सीधे चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ। बस यूं गए और यूं आए। आप सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपयू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर

पसंदीदा कार्यक्रम और मैं फिर से हाजिर हूँ, यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो भाई सहेलियाँ हैं और सहेलियों की जब बात होती है ना, तो सहेली की दिल की बात एक सहेली की दूसरी सहेली पर के दिल तक पहुँच ही जाती है। तो कुछ ऐसी ही दिल की बात दिल तक पहुँच गई है और हमारी सहेली यानी कि प्रीति जी आ गई हैं, जो कि हमें बहराइच से सुनती हैं, लिख रही हैं शुभ दोपहर आरजेस। शुभ दोपहर आपको भी प्रीति जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कैसी हैं, सबसे पहले आपका हालचाल और फिर होगी आगे की बात। तो आइए चलते हैं आगे, बात करते हैं। और इसी के साथ अनोखी शर्मा जी भी आ गई हैं। हेलो अनोखी जी, कैसी हैं आप? तो आइए बात करते हैं अब हम कुछ, जैसे कि आप सभी को पता है कि थर्सडे, और थर्सडे हमारा आज का दिन होता है हमारी सीनियर सिटीजन्स को लेकर के। तो कुछ बातें आज उन पर भी होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश का मौसम है और इस टाइम पे सीनियर सिटीजन्स को कहीं ना कहीं सांस की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अस्थमा कह लें या कहीं ना कहीं उनकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो आइए सीधे चलते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर के। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या कुछ लक्षण होते हैं, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि मौसम की वजह से ये नॉर्मल है, बट ऐसा नहीं है। मौसम की वजह से ये नॉर्मल नहीं होता है। ये देखिए, नॉर्मली सांस फूलना, जैसे कहते हैं सांस फूल रही है, तो नॉर्मली सांस फूलना और आपको इन्फेक्शन होने के बाद में सांस फूलना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सबसे पहले तो क्यों होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए सीलन, हवा में नमी, ये सब की वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो फेफड़े होते हैं उनमें संक्रमण होने लगता है, यानी कि कहीं ना कहीं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। और सबसे मेन बात होती है कि हमारी इम्यूनिटी का वीक होना। जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है, देखिए बढ़ती उम्र में इम्यूनिटी वीक होना ये बहुत ही नॉर्मल बात है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया हमें बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं और बताते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हैं। इसके लक्षण होते हैं, सबसे पहले तो सांस तो नॉर्मली सभी की, जैसे आपने बहुत काम किया मान लीजिए, या हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सांस फूलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपकी सांस बहुत ज़्यादा बिना कोई काम किए या सीढ़ियाँ चढ़े फूल रही है, आपको गले में दर्द सा महसूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सांस की प्रॉब्लम की शुरुआत के लक्षण हो सकते हैं। सीने में जकड़न होना, दर्द महसूस होना, लगातार खांसी आना या फिर कफ का जमना, ये कहीं ना कहीं वो लक्षण है जिनसे कि आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए कि हाँ लग रहा है ऐसा कि मुझे सांस की प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। सबसे मेन बात ये है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को इन लक्षणों को पहचानना चाहिए। कई बार हम इन लक्षणों को पहचानते ही नहीं, इग्नोर करते हैं कि अरे चलो कोई बात नहीं, मौसम का असर है और जब मौसम ठीक होगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। मौसम ठीक होने के साथ साथ वो ठीक नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ध्यान देना है, इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। अगर ये सिम्टम्स हैं तो तुरंत से तुरंत आप इलाज करवाएं। दूसरी चीज़ होती है कि सांस लेते समय आपको घरघराहट की आवाज़ का महसूस होना। जैसे कई बार होता है हम सांस लेते हैं तो हमें महसूस होती है आवाज़, तो अगर ऐसा आपको भी महसूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी हो सकती है। ज़रूरी है कि आप ध्यान दें। तो आइए चलते हैं सीधे और बात करते हैं आपसे कि इसके क्या कुछ उपचार हो सकते हैं। तो उपचार का मतलब है कि हम क्या कुछ प्रिकॉशन कर सकते हैं। देखिए कोई भी बीमारी हो, कोई भी सिम्टम्स हो, तो उन पर आपको सबसे ज़्यादा मेन होता है कि प्रिकॉशन करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वही वाली बात है कि ये देखिए बीमारी है आपको या हो रही है, शुरू हो रही है, तो अगर हम कुछ प्रिकॉशन कर लेंगे तो प्रिकॉशन करने से उसके असर कुछ कम हो जाएंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि प्रिकॉशन करें। तो सबसे पहला प्रिकॉशन जो आपको करना है वो ये है कि हमें हाइजीन मेंटेन करना है, यानी कि अपने आसपास साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में बारिश का पानी जमा नहीं होने दें, सीलन ना होने दें, घर को सूखा और हवादार रखें ताकि बारिश के पानी से इन्फेक्शन ना हो। बिल्कुल सही, देखिए कई बार बारिश होती है जब, तो बारिश का पानी हमारे घर के बरामदे में या फिर सीढ़ियों के पास कई जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है,

कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि बारिश के पानी को जमने ना दिया जाए और घर में सीलन तो बिल्कुल भी ना लगने दें। और अपने घर को हवादार रखने का मतलब होता है कि रूम को खुला रखिए ताकि जो बाहरी एयर है वो थोड़ी रूम में आए जाए। इससे क्या होता है कि आपके रूम में सीलन नहीं होती है और एक कभी कहते हैं ना हम सीलन में कि बदबू आने लगी बारिश के कारण से, तो वो नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपनी दवाइयाँ अपनी मेडिसिन हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही लें, एक बार डॉक्टर को दिखा करके ही मेडिसिन लें। क्योंकि कोई भी जैसे सांस की प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके डॉक्टर से पूछ करके ही दवा लें। कई बार क्या होता है ना कि हमें हल्की फुल्की सांस की प्रॉब्लम होती है या वो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं और हम तुरंत कहते हैं अरे चलो केमिस्ट से दवा ला के खा लेते हैं ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दिखाएं, अच्छे से समझें और फिर ही आप मेडिसिन लें। अब दूसरी बात ये आती है कि बहुत ज़्यादा अगर जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसकी वजह से, तो फिर आपको ज़रूरत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, एडमिट होना चाहिए, तो आप हॉस्पिटल जाएं, एडमिट हों और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे तो ही धीरे धीरे आप इससे निकल पाएंगे। क्योंकि देखिए सांस की प्रॉब्लम होती है ना, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में एक तरीके से कहीं ना कहीं अपना एक वो बना लेती है कि फैलाव कर लेती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। हमें लगता है कि बहुत हल्की है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इग्नोर करते हैं या ठीक से उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते तो धीरे धीरे वो फैल जाती है और इससे आपके फेफड़ों को ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए। क्योंकि जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कमज़ोर होती है और इसलिए अगर ऐसी बीमारियां बढ़ने का मौका पा जाएं तो वो उन्हें ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर ठीक से प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और ये उनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, उनका ध्यान रखें और उन्हें ये ना फील होने दें। जैसे कई बार होता है ना कि कोई भी बीमारी हमें जब हो जाती है, हम बीमार होते हैं तो हमें लगने लगता है अरे अब क्या होगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया और बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं आपको उन्हें ये फील नहीं होने देना है कि उनकी जो कि ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा उनको बस मोटिवेट करते रहिए, उनको पॉजिटिव फील कराते रहिए कि कोई बात नहीं, पापा ठीक हो जाएगा, मम्मी ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मौसम का असर है, मौसम में हो जाता है। उनको मोटिवेट करना, खुश रखना, सम्मान देना, प्यार देना, ये आपकी ही ड्यूटी है। तो हमेशा अपनी ड्यूटी निभाएं और अपने काम को सही तरीके से करें और अपने माता पिता का, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें। तो आइए चलिए चलते हैं इसी प्यारे से मैसेज के साथ। भाई चलते हैं, कहाँ चलते हैं, चलते हैं एक और प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। बस यूँ गए यूँ आए, आप सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली स्टेडियम।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: डिलीशियस
4: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
4: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा, कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9970931251 और 9840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।

0: सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो सुन सहेली। तो आइए सीधे चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं सुजीत जी, जिनका की सवाल है, मैम आपके शो में आरजे समता जी आती हैं। अब ओके, बिल्कुल सही कहा आपने सुजीत जी, हमारे शो यानी कि सुन सहेली में मैम ज़रूर आती हैं। वो हमारी बहुत ही प्यारी सी आरजे समता जी ज़रूर आती हैं। और आपने पूछा है कि वो वेनसडे को सुबह को क्यों नहीं आती, तो वो वेनसडे को सुबह बिल्कुल अब नहीं आती हैं। और सुबह में आपको वेनसडे में आरजे उन्नति मिलेंगी अब। सो आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। और साथ में आपने ये भी पूछा है कि वो आज कहाँ हैं, तो मैं बता दूँ कि आज वो मेरे साथ नहीं है क्योंकि मैम छुट्टी पे हैं। तो वो कल आ जाएंगी और आपके सभी सवालों का जवाब आपको जरूर देंगी। और आपने बिल्कुल सही समझा सुजीत जी, सुन सहेली हम दोनों ही सहेलियों का प्रोग्राम है, यानी कि आरजे समता और आरजे अंशिका, हम दोनों ही आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत कुछ आपको बताते हैं। तो आइए अब चलते हैं सीधे, और सुजीत जी बहुत बहुत स्वागत है सुन सहेली में आपका। तो आइए लिसनर्स अब चलते हैं नेक्स्ट वाले हमारी टॉपिक की तरफ, जो कि आज है कि भाई आज थर्सडे, और थर्सडे को अभी तक हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन थर्सडे को हम पौधों के बारे में भी बात करते हैं। सो पौधों को लेकर के आज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि भाई आपने देखा होगा कि हम बहुत मेहनत से जतन से अपने प्यारे से पॉट में अपने गार्डन में कोई भी पौधा लगाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उसमें चींटियां लगना शुरू हो जाती हैं, चींटियां लग जाती हैं, या पौधों की जड़ों में आपने देखा होगा कीड़े लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे पौधों की जड़ों में कीड़े लग जाते हैं, और साथ ही साथ में क्यों चींटियां लगना शुरू हो जाती हैं। ओके थैंक्स की कोई बात नहीं है सुजीत जी, इन्फॉर्मेशन देना तो काम है हमारा। तो आइए आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पौधों में चींटियां लगना और कीड़े लगने इसलिए भी शुरू हो जाते हैं क्योंकि कई बार हम अपने पौधों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देते हैं, खासकर कि बरसात के मौसम में ज़्यादा पानी देने से मिट्टी में नमी बनी रहती है जिससे कि फंगस लग जाती है और कीड़े ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाद भी अपने पौधों में डालते हैं ना, तो उससे भी कीड़े लगने की और चींटी लगने की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात आती है कि जिन पौधों को तेज़ धूप नहीं मिल पाती या ताज़ी हवा नहीं मिलती, उनमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं क्योंकि उन पौधों में नमी होती है। इसलिए आप जो भी पौधे लगा रहे हैं उसे दिन भर में कम से कम एक बार तो ज़रूर ही आप धूप में रखें, क्योंकि धूप लगना पौधों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं कि इन पौधों से हम कैसे चींटियों को भगा सकते हैं और कीड़ों को भगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि चींटियों को कैसे भगाना है। तो चींटियों को भगाने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा नुस्खा है कि आप 10 से 12 लौंग ले लीजिए और लौंग को पानी में उबाल लीजिए, मतलब करीबन एक बॉटल पानी में आप 10 से 12 लौंग को अच्छे से उबाल लीजिए, और तब तक उबालिए जब तक कि पानी का जो कलर है ना वो चेंज ना हो जाए। जब पानी का कलर चेंज हो जाए उसके बाद आपको इसे छान करके एक बॉटल में डाल लेना है और अपने पौधों पे स्प्रे करना है। अब बात आती है कि कहाँ स्प्रे करना है, तो आपको स्प्रे करना है जड़ पर, और जड़ों के साथ साथ आपको स्प्रे करना है पौधों में, पौधों में और जड़ों में हमें स्प्रे करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि आपको कहाँ स्प्रे करना है, पौधों में और पौधों की जड़ों में। दूसरा आता है कि पानी में सिरके को, दूसरा आता है कि सिरका यानी कि विनेगर, सिरका ज़रूर डालना चाहिए पानी में। सिरके को आप पानी ले लीजिए और पानी में सिरके को बराबर मात्रा में मिलाइए, और फिर गमले में और अपने जैसे पौधों की जड़ों में, और थोड़ा थोड़ा उसको स्प्रे करिए, और उसके पत्तों पे स्प्रे करिए। इससे क्या होगा कि चींटियाँ बिल्कुल भी आपके पौधे में नहीं लगेंगी। साथ ही साथ आता है कि सूखी मिट्टी जो होती है ना, यानी कि पौधों में, अब अभी तक तो हमने बात की कि चींटियों के लिए, अब बात करते हैं कीड़े लगने के लिए। तो कीड़े लगने के लिए ये है कि सूखी मिट्टी पर थोड़ी सी लकड़ी की जो राख होती है यानी लकड़ी का बुरादा होता है ना, उसे डालने से पौधों में पोटेशियम मिलता है और पौधों में कीड़े नहीं लगते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि हींग का पानी, एक चुटकी हींग को पानी में घोलकर मिट्टी में डालने से जड़ों में कभी कीड़े नहीं लगते। और तंबाकू जैसे कहते हैं ना कि हींग का पानी बहुत ही अच्छा होता है कीड़ों के लिए, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। इससे बिल्कुल भी आपके पौधों में कीड़े नहीं लगेंगे और आपके पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे, और ये कीड़े और चींटी की जो दोनों की प्रॉब्लम होती है ना, ये बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। तो आइए सीधे चलते हैं, सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग, बस यूं गए यूं आए, और आप इंतज़ार करिए कि आपको लास्ट में क्या मिलने वाला है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, सोचिए इंतज़ार करिए, बस मैं यूं गई और यूं आई। स्टे ट्यून्ड।
1: Let's start the fun!

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
7: 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
8: गोंडा शहर की धड़कन।
9: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

दी। लेकिन भाई इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हमने आपको ये भी बताया कि कैसे आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन हेल्दी रखना सिर्फ मतलब फेस के लिए ही नहीं होता है, सिर्फ ये नहीं होता कि आपको फिजिकली फिट रखना है, आपको खुद को मेंटली भी फिट रखना है। तो खुद को मेंटली फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो मेंटली फिट रखने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुद के साथ करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं, उनको हैप्पी कैसे रख सकते हैं। क्योंकि ये ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती होती है कि हम उन्हें मेंटली फिट कैसे रखें, क्योंकि मेंटली फिट रखना इतना ईजी नहीं होता है। देखिए जब ये हो जाता है ना कि कैसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं मेंटली वो बहुत ज़्यादा बोरियत फील करते हैं, उनको लगता है कि वो अकेले हैं, एक अकेलापन आ जाता है उनके अंदर, ये आ जाता है कि अरे मैं तो कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है सोलो डाइनिंग। सोलो डाइनिंग का मतलब होता है कि आप एक दिन अकेले खुद के साथ खाना खाएं, खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। तो इसके लिए आप उन्हें मोटिवेट करो कि आज मैंने आपकी पसंद का ये बनाया और आज आपको अकेले अपनी खुद की कंपनी इंजॉय करनी है। क्योंकि जब हम अपनी खुद की कंपनी इंजॉय करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, साथ साथ में अच्छा बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं हमारा वो अकेलापन, वो उदासी कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसलिए इस चीज़ के लिए आप उन्हें मोटिवेट करें कि वो टाइम अपने साथ खुद के साथ बिताएं और सोलो डाइनिंग को ज़रूर यूज़ करें। तो ये था आज का हमारा टिप ऑफ द डे कि कैसे आप खुद के साथ सिर्फ एक प्लेट खाने के साथ बैठेंगे ना और बहुत सारी मोटिवेशन आपको मिलेगी और आप खुश रहेंगे। और इसके लिए उनके घर के बच्चों को उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। तो आइए चलिए चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ। बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहे आपका अपना पसंदीदा वाला शो सुन सहेली, सुनते रहे क्योंकि अभी ये जाते जाते चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना ये बाकी है और ये आपको सुनना है। और इसके बाद फिर से आती हूँ आपका अपना एक और फेवरेट वाला कॉलिंग प्रोग्राम यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा लेकर के। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, पानी पी लेती हूँ, प्यास बहुत लगी क्योंकि गर्मियाँ बहुत है। वैसे गर्मियाँ तो नहीं है, मौसम तो सावन का है, लेकिन फिर भी पानी पीते रहें और

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72-34-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: ऐसा कोई प्रेमी,
1: बिल्कुल ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो नीले नीले अंबर में। तो नीले नीले अंबर में इस समय क्या है ना, नीले नीले अंबर में इस समय छाए हुए हैं काले काले बादल, क्योंकि सावन आ गया है। तो एक बार फिर से आप सभी को इस प्यारे से मौसम की बहुत सारी विशेष के साथ आपके अपने फेवरेट वाले प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में बहुत बहुत स्वागत है। दिल से आप सभी का करती हूँ मैं, यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो वही चलिए चलते हैं, सीधे सीधे देखते हैं कि आज हमारी फरमाइश में सबसे पहला सॉन्ग किसका है और सबसे पहली फरमाइश किसकी है। तो आइए चलते हैं, और सबसे पहली फरमाइश जो कि है वो है देवी प्रसाद जी की। और देवी प्रसाद जी को जो सॉन्ग सुनना है वो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, ओ बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। इससे पहले कि मैं सॉन्ग की तरफ चलूं और आप सबकी फरमाइशों को आप तक पहुंचाऊं, उससे पहले देख लेते हैं कि हमारे चैट बॉक्स में कौन कौन से हमारे लिसनर हैं जो कि आ चुके हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं सुरेंद्र यादव जी, और इसी के साथ धर्मेंद्र मोहन जी जो कि हमें आवाज़ विकास से सुनते हैं, और नागेश्वर धाकर जी जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम नमस्कार। गुड आफ्टरनून नागेश्वर जी नमस्कार। तो आइए चलते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। और एक बात और बता दूं कि अगर आप सब भी जो कि लिसनर हमारे हमें सुन रहे हैं वो भी अपने फेवरेट सॉन्ग को सुनना चाहते हैं, अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस फ़ोन उठाना है, डायल करना है 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचा देना है। तो आइए चलिए सीधे चलते हैं हम बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। आप सभी भी मेरे साथ सुने और इन्जॉय करें, क्योंकि जो ये मौसम है ना वो बहुत ही प्यारा है, और सॉन्ग तो उससे भी ज़्यादा प्यारा है। आइए सुनते हैं, इन्जॉय करें।

छोड़ के हंसती हो तुम मेरा और वफाएं मेरी याद करोगी, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली फरमाइश की तरफ, जो कि है सुनील कुशवाहा जी की। और सुनील कुशवाहा जी का सॉन्ग भी बड़ा ही प्यारा है, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। और इसके बाद में हम सुनेंगे सुरेंद्र यादव जी के सॉन्ग को, और सुरेंद्र यादव जी के सॉन्ग के बाद बारी होगी अमित चौधरी जी के सॉन्ग की। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को। आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट वाले प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में, मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। स्टे ट्यून।

बिल्कुल, इस बार मौसम बहका हुआ है और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग रिमझिम गिरे सावन। तो आइए चलिए अब चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है अरमान जी की। और अरमान जी के सॉन्ग के बाद हम सुनेंगे इरशाद जी के सॉन्ग को, इरशाद जी के सॉन्ग के बाद सुनेंगे चांद जी के सॉन्ग को, चांद बाबू जी के सॉन्ग को। तो आइए चलिए सुनते हैं इन प्यारे प्यारे सॉन्ग्स को, और आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट वाले प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। और साथ ही साथ फिर से एक बार बता दूँ कि अगर

आप में से ये जो भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं और ये फरमाइश हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे से फ़ोन उठाना है और डायल करना है 6393316429, कॉल लगाना है, अपनी फरमाइश बतानी है और वो हम तक पहुंचा देनी है। तो आइए चलिए चलते हैं, सुनते हैं अरमान जी के सॉन्ग को स्टेडियम।

0: के परवाने को जलाना हमने ही सिखाया है।
1: बिल्कुल, परवाने को जलना हमने ही सिखाया है। और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग चेहरा छुपा लिया है हिजाब में, जो कि निकाह मूवी का। तो और ये फरमाइश थी चांद बाबू जी की। तो आइए अब आगे चलते हैं, और आगे फरमाइश है निशा जी की, और निशा जी को सॉन्ग जो सुना है वो है बफा ना रास आई तुझे ओ हर जाई। तो आइए चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसके बाद हम सुनेंगे मुमताज़ अंसारी जी के सॉन्ग को, और मुमताज़ अंसारी जी के बाद बारी होगी राकेश वर्मा जी की, और राकेश वर्मा जी के बाद बारी होगी मिश्रा ऑप्टिकल्स। तो आइए चलिए सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग को। आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून्ड।

बादल छाए और बुलबुल बोली सावन आए। बिल्कुल सावन आ गया है और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि है मिश्रा ऑप्टिकल जी का। और इस सॉन्ग के बाद में अब हम सुनेंगे धर्मेंद्र मोहन जी के सॉन्ग को, और इसके बाद बारी होगी राजेश जी की, और फिर बारी होगी महेंद्र जी। तो आइए चलिए सुनते हैं, एंजॉय करते हैं इन प्यारे प्यारे सॉन्ग्स को। आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम।

तेरी बंजारन रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और जो कि जिसकी फरमाइश की है प्रीति जी ने। तो आइए चलिए सुनते हैं प्रीति जी के सॉन्ग को, और प्रीति जी के सॉन्ग के बाद में बारी होगी दुर्गा।

0: करती हूँ कि वो मेरा इंतज़ार जो कि फरमाइश थी हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट वाली रीना जी की। तो इस प्यारी सी फरमाइश के साथ आज के लिए आपका अपना कॉलर ट्यून प्रोग्राम यहीं तक था। तो अपनी होस्ट एंड दोस्त यानी मुझे यानी अंशिका को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलूंगी आपसे आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुन सहेली में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्ली 89.6 FM। तो चलिए चलते चलते चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से हमारे लिसनर हैं जो कि बने हुए थे। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं महेंद्र जी, जिन्होंने लिखा है, अर्जेंटिका मैम मुलाकात कैसी थी, गाना बजाकर मूड फ्रेश कर दिया, थैंक यू। थैंक यू आपको भी। और इसी के साथ हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो हमारे साथ बने हुए थे, नागेश्वर जी, और नागेश्वर जी के साथ में सुरेंद्र जी, अमित चौधरी जी, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। तो बाय बाय, टेक केयर।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज।

टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

0: हां जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी का आनंद भी उठा रहे होंगे। भाई देखिए, ज़िंदगी का आनंद अब तो दुगना हो गया क्योंकि आ चुका है बरसात का मौसम, और बरसात में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है क्योंकि मौसम इतना सुहाना हो जाता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि यार भगवान ऐसा है, जैसे भगवान कहते हैं भगवान की कृपा होती है तभी बारिश होती है, नहीं तो कई कई जगह ऐसा हो गया उत्तर प्रदेश में कि बारिश हो ही नहीं रही है और कई जगह तो कृपा इतनी ज़्यादा हो गई कि बारिश के चक्कर में बाढ़ आ गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बारिश जितनी सुहानी लगती है ना हमें, उतनी सुहानी होती नहीं है। ये हमें बस थोड़ी देर का आनंद देती है, लेकिन जब हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं तब। हालांकि चलिए आज हम अपनी बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लोगों की या ऐसे जीव की जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। जी हाँ, अगर हम देखें तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो पशु होते हैं वो हमारे लिए कोई संपत्ति से कम नहीं होते हैं, क्योंकि भाई संपत्ति हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप देख लीजिए आजकल तो भाई कितना खर्चा होता है। आजकल हमें पेट्रोल में इतना दाम लगता है, खाने पीने में इतना दाम लगता है, दूध अगर आप देखें अपने घर का, सिर्फ एक दूध का खर्चा तो कितना ज़्यादा हो जाता है। और वहीं अगर आपने अपने घर में कोई पशु पालन कर रखा है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, तो आपका कितना खर्चा बच जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो हमारे लिए इतना करते हैं तो हम उनके लिए क्या करते हैं? स्पेशली जब हम बात बारिश की कर रहे हैं, बरसात के मौसम की कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं अरे पशु ही तो है, उन्हें क्या ही हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं भाई, पशुओं को भी बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, जो उन्हें हमसे उम्मीद रहती है, पर शायद हम उन्हें पशु समझ के टाल देते हैं कि वो हमारे फैमिली मेम्बर्स थोड़ी ना है, क्यों उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन आज हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं, वो आए हैं कुछ ऐसी जानकारी को लेकर के जो हम सभी को जाननी चाहिए। जी हाँ, हमारे पशुओं की देखभाल क्या हो सकती है मौसम, इस बारिश के मौसम में, वो हमें पता चलेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे साथ अभी फिलहाल स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर करुणेश दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये LBS के पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम खेत खलिहान, जहाँ पे आप खेतों के बारे में, पशुओं के बारे में जानते हैं, आज बात होने वाली है पशुओं की, और सर हमें बताएंगे कि हम कैसे बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल करना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम खेत खलिहान में।
1: धन्यवाद जी। हम भी जो है इस रेडियो को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हम भी जो अपना नॉलेज है वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते मैं ये अपने नॉलेज को जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार करूं, हमारे देश के किसान खुशहाल हों, हमारे देश के पशु खुशहाल हों, तो ये हम सब का जो एक प्रयास है उसी के क्रम में हम यहाँ हैं। तो आज हम आप लोग कॉल करिए, अपनी अपनी समस्याएँ, हालाँकि जो आज का विषय है जैसे कि रहा है कि हम बरसात के मौसम में होने वाले जो भी प्रमुख रोग हैं उनसे बचाव कैसे करना है, वैज्ञानिक तरीके से उनका जो है पहले से सतर्कता क्या बरतनी है, क्या उपचार करना है, इन्हीं विषयों पर हम बातचीत करेंगे।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि दोस्तों देखा आपने कि सर ने भी बोला है आपसे और मैं भी आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो पशुओं से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर

0: कौन कौन से ऐसे प्रमुख संक्रमण हैं जो हो जाते हैं और गैर संक्रमण रोग हैं जो देखने को हमें मिलते हैं लेकिन हम कहीं उस पर ध्यान नहीं देते।
1: देखिए, संक्रामक रोगों में जैसे हमारा सबसे ज़्यादा बरसात के शुरुआती दिनों में ही FMD फुट एंड माउथ डिजीज करके है, खुरपका और मुँहपका रोग
0: जी।
1: ये विषाणु जनित रोग है और ये भी एक संक्रामक रोग है। ऐसे समझिए कि ये दो हवा से, जैसे इसके हवा के माध्यम की बात करें तो 200 से 250 मीटर तक ये हवा के माध्यम से फैल सकता है, यानी सिर्फ हवा में विषाणु जो है अपना संक्रमण फैला सकता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक जो है गलाघोंटू, इसका भी जो बैक्टीरिया है ये भी खतरनाक है और ये मल मूत्र जो भी या जो खाद्य पदार्थ हैं या चारागाह में पशु जा रहा है तो किसी इन्फेक्टेड एनिमल पहले से वहाँ चराए उस चारा मतलब चारागाह पे गया है
0: जी,
1: तो उसका कोई भी जो है अवशेष अगर रहा, उसकी लार हो गई, उसका सलाइवा, वो उसका मल मूत्र कुछ भी घास पे है तो उससे फैल सकता है। ये संक्रमण रोगों में एक जो है आपका अभी लंपी का जो डिजीज
0: जी जी,
1: ये 2019 से देखने को मिला हम लोगों को, 22 में इसको हम बहुत लोग झेले। तो ये 3-4 प्रमुख रोग हैं कि जो बरसात से पहले संक्रमण अपना फैलाते हैं और किसानों को बहुत ज़्यादा दुख दे जाते हैं। वो आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान और पशुओं का जो नुकसान होता है, उनका वजन घटना, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है
0: जी। तो सर, आपसे अभी जब आपने बताया तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि हमेशा से ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि पशुओं की जो स्किन होती है बहुत सख्त होती है, उन्हें इतनी जल्दी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन अभी जैसा आप भी कह रहे हैं तो ऐसा मौसम में, स्पेशली अगर हम बरसात की बात करें, तो पशुओं को क्यों ये संक्रमण ज़्यादा हो जाता है?
1: देखिए, पशुओं का जो रोगजनक होते हैं वो
0: जी,
1: जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, तो ये इन सब के लिए एक सूटेबल जो इस समय जैसे आर्द्रता है, ये जो इस समय की ह्यूमिडिटी है, हवा में नमी की मात्रा और टेम्परेचर खूब ज़्यादा होता है, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ साथ आर्द्रता बढ़ जाने से जितने भी पैथोजन होते हैं जो किसी भी रोग के, वो चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फंजाई प्रोटोजोवा, जो भी चीज़ें हैं, वो ये मौसम उनके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल होता है अपनी संतति के विकास के लिए। तो जब रोगजनकों की संतति का विकास जिस मौसम में बढ़ेगा उसी मौसम में रोग भी बढ़ेगी। तो इसीलिए ये बरसात का जो मौसम, बल्कि प्री मानसून जो सीजन होता है, जो अभी चल रहा है एक तरीके से हम कह लें, या थोड़ा सा बीत भी गया है, तो सबसे ज़्यादा हमें इसी समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये रोगजनकों के लिए सबसे अनुकूल मौसम होता है, इसीलिए रोग फैलते हैं
0: जी। तो मुझे लगता है कि जितना बारिश का मौसम हमारे लिए कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस और ये तमाम प्रकार की बीमारियां लेकर आता है, वैसे ही हमारे पशुओं के लिए भी ये चीज़ें होती हैं
1: जी जी।
0: हालांकि सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ कॉल करके भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में भी आकर हमसे पूछ सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का निदान करें, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, छोटा सा ब्रेक, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ब्रेक के बाद आने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी, जिसको आपको ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि पशुओं की भी हेल्थ हमारे लिए ज़रूरी होनी चाहिए। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक, एंजॉय करिए बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, उसके बाद आएंगे और आपसे हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम खेत खलिहान में। भाई आ चुकी हूँ मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आरजे आयुषी आपका प्रोग्राम लेकर के, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर के। मैंने आपको बताया कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर करुणेश दुबे जी, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ये हमें काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं पशुओं के बारे में। आपको बता दूँ कि अभी हमारे पास कॉल आया था विजय पाल जी का, जो हमें सुन रहे हैं लखीमपुर से, जिनको जानना था कि जानवरों में बैल की जो बीमारी होती है वो क्या होती है, क्यों होती है, और अगर इसका कोई उपचार है तो वो क्या है। तो सर आप प्लीज बताइए।
1: हाँ, मैं अभी विजय पाल जी का जैसा कि क्वेश्चन है, उसमें जानवरों का जो बैल निकलना ज़्यादातर वो पार्चुरेशन के बाद, जब बछड़ा पैदा होने के बाद ज़्यादातर ये देखा जाता है, या बिल्कुल एडवांस स्टेज में जब बछड़ा होने वाला होता है उस कंडीशन में भी ये बैल की समस्या, ये गर्भाशय का बाहर आना आमतौर पे देखा जाता है। लेकिन ये ऐसा होता है कि जो पशु स्वस्थ नहीं है या उनको कोई भी इन्फ्लेमेटरी कुछ, मतलब उनको बीमारी है उनके जो गर्भाशय नाल है उसमें, एक तो कारण ये हो सकता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से जो उसका क्रमानुकुंचन है या उस मसल्स की जो ताकत है वो कम हो जाती है
0: जी।
1: तो इस वजह से भी वो किसी भी इन्फेक्शन के कारण ऐसा हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि पशु जब आपका छठे या सातवें वेत में होता है, यानी कि बूढ़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में भी ये देखना जाता है। ये कोई एक तरीके से हम इसको बीमारी नहीं करेंगे, इसका इलाज है। अगर हम अच्छे से पशु को जिंक की चीज़ें और ऐसे भी जो मायोलॉजी को मजबूत करें, जो उसके मांसपेशियों को मजबूत करें, ऐसी हम चीज़ें खिला सकते हैं। दूसरी चीज़ ये रहता है कि बछड़ा देने के बाद अगर हम जानते हैं कि पहले से कि हमारे पशु में ये प्रॉब्लम है, तो जो उसके पिछले पैर है, पिछले पैर और अगले पैर, खड़े होने की जो जगह है, तो अगले पैर की मिट्टी पिछले पैर की मिट्टी से नीचे होनी चाहिए, और ये कम से कम 4 इंच, यानी कि जो पीछे का भाग है पशुओं का, जहाँ पे पशुशाला में जहाँ हम पशु को बांधते हैं, तो पिछला भाग की जो मिट्टी है वो अगले पैर से 4 इंची ऊँचा रखें, यानी कि उसका जो पीछे का नितंब है, जानवर का पिछला शरीर है, वो आगे फोर लिम्ब से वो पीछे वाला ज़्यादा ऊंचा हो, तो इससे ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ है कि ऐसे कंडीशन में हमें पशुओं के खान पान पर ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ होता है फ्लसिंग, जानवर 3 महीने, बछड़ा देने के 3 महीने पहले से उसका हम देखभाल करना शुरू कर देते हैं, न्यूट्रिशन के टर्म को बोलते हैं फिशिंग, तो उसमें मिनरल मिक्सचर और ये सारी चीज़ें मिला के खिलाने से, मतलब हमारा टोटल फोकस मसल्स से, वो एक मांसपेशी की समस्या है, मांसपेशियों के कमज़ोर होने से ही सिर्फ होता है
0: जी। तो मुझे लग रहा है कि विजय पाल जी की समस्या है उसका निदान हो चुका है, उनको जानकारी मिल गई है, लेकिन अभी हमारे पास, भाई मैं बता दूँ, जानकारी बहुत सारी है जो आपको देना है। देखिए सर, अभी हम बात कर रहे थे कि एक लिम्पी स्किन डिजीज़ होता है, जिसे हम LST के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्या होता है, आप क्या बताएंगे?
1: हाँ, ये लंपी स्किन डिजीज़ अभी 2022 में देखने को मिला, हालांकि ये 2019 से ही अफ्रीका के जाम्बिया से ये डिजीज़ जो है ये वायरस फैला, ये कैप्री पॉक्स विरिडी फैमिली का एक वायरस है। तो इसमें जो है पशुओं में क्या होता है कि अगर इस वायरस से पशु को अटैक हुआ, सभी जानवरों में नहीं होता है, लेकिन जो गाय और भैंस हैं, जो हमारे यहाँ के सर्वाधिक डेयरी एनिमल में गिने जाते हैं, तो इसी पशुओं को गाय और भैंसों में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जब जानवर इसके चपेट में आ जाता है तो जानवर को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाएगा, और ये बुखार 2 हफ्ते तक लगातार बना रहता है। उसके आँख से पानी जानवर के गिरेगा, नाक से पानी गिरता है, बहुत ज़्यादा लार जो है बहती है जानवरों का उस कंडीशन में, पशु अच्छे से खा पी नहीं पाता है, और जैसा इसके नाम में ही, इस रोग के नाम में ही है लंपी स्किन वायरस डिजीज, तो ये स्किन का ज़्यादातर रोग है, पूरे स्किन पे जो है गोल गोल, मतलब ऐसे दर्द भरे उभार वाले, ऐसे आपको उभार देखने को मिलेगा, गांठें देखने को मिलेगी। इन गांठों का आकार आप देखेंगे तो ये 0.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर से लेके, इस गांठ का जो व्यास है आधा सेंटीमीटर से लेके और 5 सेंटीमीटर के बीच हो सकता है, और ये ज़्यादातर गर्दन पे देखने को मिलेगी, और उसके बाद सिर पे देखने को मिलेगी, जांघों पर देखने को मिलेगी, हालांकि इंटायरली पूरे शरीर पे जो है ये गांठें देखने को मिलती हैं। और ये गांठें अगर हम इसका अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं तो इसमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, इनमें पस बन जाता है और कीड़े तक पड़ जाते हैं। तो हमें अगर हमारे जानवर को लंपी स्किन डिजीज हो गया, जितने हमने लक्षण बताए, अगर ऐसे लक्षण आप अपने पशुओं में देख रहे हैं, तो हमें उनको मच्छर से, मक्खी से, किलनी अगर है तो उसका उपचार करें। मतलब ये सारे, ये जो है एक तरीके से वेक्टर का काम करते हैं। यही जो मच्छर हो गए, मक्खी हो गई, किलनी हो गई, जो हो गए, तो यही एक दूसरे से, एक पशु से दूसरे पशु में इस वायरस को फैलाने का जो है माध्यम बन जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका पशु इससे संक्रमित है, तो स्वस्थ पशुओं से सबसे पहले उसको अलग कर दें, नहीं तो और पशुओं में फैल जाएगा। और हम ये ध्यान रखें कि वो हवादार हो, जहाँ पे पशु बैठे, हम कोई भी ऐसी चीज़ जो नमी को सोख लेने वाली हो, जैसे बालू हो या कोई बिछावन हो, पुआल का बिछावन, कुछ भी ऐसा हम डाल दें, या
0: कई लोग जो थे वो जूट का बोरा डाल दें,
1: हाँ जूट का बोरा डाल दें, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वो जूट का बोरा नम हो तो उसे बदल दें या धूप में सुखा दें। यानी जो जो पशु के शरीर में वो पॉक्स की वो गांठें हैं, उस गांठों का जो पस है, जो मवाद है, वो जब उसमें अगर जा रहा है तो फिर दोबारा से पशु उस पर बैठे ना। अगर बालू आप डाले हैं तो उस बालू की एक सतह को, मतलब 2 इंच की सतह को आप हटा दें, या उसे ऐसा कर दें कि वो सूख भर जाए, क्योंकि हवा अपने आप में एक बहुत बड़ी कृमिनाशक होती है, वो स्टरलाइजेशन का हवा ही काम करती है, सूख जाएगा तो समस्या नहीं होगी। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पशु को ऐसा हुआ है पिछले बार, तो उसको इस मानसून सीजन से, मतलब बरसात शुरू होने से पहले, इसका जो है टीका लगवा लें। और ये मतलब टीका इसका एक बेहतर इलाज हो गया, और इसमें जो है कई टीके आ गए हैं, तो आपको LSD वायरस के नाम से ही इसका जो है वैक्सीन आती है, और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के नाम से है, तो उसी को हम जो है लगवाते हैं। दूसरी चीज़ है, इसमें पशुओं का वज़न कम होता चला जाता है, दुग्ध उत्पादन पशुओं का 20-30% कम हो जाएगा। तो आपको जैसे ही इसका लक्षण दिख रहा है, आप लंपी स्किन डिजीज का, अब इसमें गोट पॉक्स का भी वायरस लगता है, जो बकरियों में चेचक हो जाता था, जो उसका वैक्सीन अपने यहाँ काम करता था होमोलागस वैक्सीन के नाम से, तो वही वैक्सीन इसमें भी काम करती है। तो पशुओं को टीका जरूर लगवा लें। कोई भी पशु 4 महीने से ऊपर का है तो हम ये टीका लगवा सकते हैं। हमें ऐसे पशुओं को ये टीका नहीं लगवाना है कि जो जो गाय या भैंस बछड़ा देने वाली हो, अगर उसके जो है 8 माह के बाद की स्थिति है, तो हम ये टीका उसको नहीं लगवाएंगे। बस उसे हम देख रेख, प्रिवेंशन से ही, बचाव से ही उसकी जो है देख रेख हम इसे करते रहेंगे। तो ये लंपी स्किन डिजीज का लक्षण है, बचाव है, और जो आर्थिक क्षति है, आप इस आर्थिक क्षति इसकी आप समझिए कि पूरे भारत में एक साथ फैला, और राजस्थान दुग्ध उत्पादन में 1 पे होता था, और वो पीछे छूट गया, वो दूसरे नंबर पे चला गया। तो आपको यही ध्यान देना है।
2: अफसर जानना चाहेंगे कि सर, जैसे लंपी रोग की बात हो रही, बरसात का सीजन चल रहा है, तो इस बरसात के सीजन में लंपी रोग से सर उसके लक्षण और शुरुआती वो कैसे हमारे किसान भाई बहन जो है पहचान करें सर?
1: देखिए, ये चूंकि वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है, तो जैसे ही अगर इस विषाणु का अटैक होता है, या उस इस विषाणु के संपर्क में जानवर आता है और उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो पशु जो है तुरंत उसको फीवर तुरंत आ जाएगा। मतलब इसका टेम्परेचर जो है वो 103 से लेकर के 105 डिग्री फारेनहाइट तक चला जाता है, और बुखार छोड़ता ही नहीं है वो। आप समझिए कि 2 सप्ताह तक बुखार लगातार बना रहता है।
0: सर, आपको सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन अभी हमारे पास एक कॉलर की कॉल है, मैं चाहती हूँ कि आप उनसे बात करें। तो क्या, हेलो,
3: हाँ
0: जी, अपना नाम बताइए।
3: कुशल पाल तिवारी, रुपई जी, गोंडा
0: जी। कुशल जी बताइए, क्या समस्या आपकी?
3: समस्या है कि दुबे जी से पशुओं के संबंध में थोड़ी सी जानकारी लेनी है।
1: हाँ जी, बोलिएगा तिवारी जी।
3: नमस्कार सर
1: जी। नमस्ते नमस्ते
3: श्रीमान। जैसे अभी आपने बताया ये खुरपका मुहपका के बारे में बताया,
1: हाँ हाँ,
3: तो इसका जो टीका हो,
1: हाँ, हाँ.
3: अगर अगर अगर कोई पशु गाभिन है उसको भी लगाया जा सकता है कि उसको नहीं?
1: नहीं, उसको हम लगा सकते हैं, लेकिन हम खुरपका मुहपका का टीका 7 महीने से पहले तो लगवा सकते हैं, उसके बाद नहीं लगवाएंगे। अंतिम दो महीने उस समय नहीं लगाना है।
3: अगर जी, और ये दूसरा प्रश्न ये है,
1: हाँ,
3: कि अक्सर जब पशु को गर्भ धारण करवाया जाता है, चाहे कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से,
1: हाँ,
3: तो हम किसानों के बीच में एक धारणा है कि इनको ये जो सरसों की खली होती है उसको ना दिया जाए 10-15 दिन तक। श्रीमान आपसे जानना चाहता हूँ कि खरी की तासीर कैसी है, गर्म होती है कि ठंड होती है, या सही चीज है या हम लोगों की भ्रामक धारणा है, ये क्या है? सरसों के खली के बारे में कुछ स्पष्ट कीजिए।
1: देखिए सरसों की खल जो है, सरसों की खल प्रोटीन में बहुत अच्छी, आप मान के चलिए कि 30-35% प्रोटीन युक्त होती है। तो सरसों की खल, जैसे हम ये मानते हैं कि हमने मान लीजिए कि अपने पशु को गर्भाधान करवाया, वो प्राकृतिक या कृत्रिम जैसे भी, तो हम किसानों के माइंड में ये होता है कि इसकी तासीर गर्म है और उससे एबॉर्शन हो जाएगा, गर्भस्राव हो जाता है, मिसकैरियज बोलते हैं, कि मतलब वो ठहरता नहीं है पशु का गर्भ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें समस्या ये होती है कि किसान जो है, जैसे ये थोड़ा सा लैक्जिटिव मतलब रेचनकारी होती है, जो खल है ये रेचनकारी होती है, पशुओं का गोबर थोड़ा पतला होने लगता है, बस इतना ही है। तो हम इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देंगे, अपने जो मिक्स राशन हम यूज कर रहे हैं उस राशन का हम इसे जो है आप 32% तक, यानी हम एक तिहाई खरी जो है उसमें डाल सकते हैं और उस एक तिहाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। और ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस समय जानवर को प्रोटीन, क्योंकि उस समय नया भ्रूण बनता है और नए मतलब नए भ्रूण के विकास के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है, और सबसे सस्ते में ये खली आपको प्रोटीन का एक और बहुत अच्छा विकल्प है। तो ये खली देना किसानों को बंद नहीं करना चाहिए, और इस भ्रम में नहीं रहना है कि इसके वजह से हमारी इनफर्टिलिटी या जो है गर्भ का मतलब स्राव हो जाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रोटीन अच्छा विकल्प है।
3: जैसे सर ये तो बरसात का सीजन है, जैसे गर्मी में मई जून में भी इसकी तासीर गर्म नहीं होगी?
1: नहीं, गर्म ये इसकी तासीर गर्म नहीं है, ये जो है सरसों की खल गर्म नहीं है, ये केवल हम ऐसा मानते हैं, बाकी ये गर्म नहीं है, इसकी तासीर ठंडी है। बल्कि ये डाइजेशन के लिए, जैसे अगर पशुओं को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उन सब चीज़ों के लिए भी अच्छा है। अगर क्रिम भी है थोड़ा मोड़ा, ये क्रिम नाशक मतलब बहुत नहीं लेकिन एक मृदु क्रिम नाशक के रूप में भी काम करता है। खल जो होता है वो अगर पशुओं के पेट में कीड़े हैं, तो ऐसा नहीं कि कीड़े बड़े हो गए हैं तुम्हारे, लेकिन अगर जिन पशुओं को खल लगातार दी जा रही है उनमें कीड़े भी नहीं आपको देखने को मिलेंगे।
3: चलिए श्रीमान जी, बहुत बढ़िया जानकारी आपके द्वारा मिली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तथा भाई इरफान को और आयुषु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: थैंक यू सो मच कुशल पाल जी, थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, तो अभी आपने देखा कि कुशल पाल जी की समस्या का निदान हुआ। आप भी अपनी समस्या बता सकते हैं हमें कॉल करके, क्योंकि भैया पशुओं की भी जो स्वास्थ्य है उसकी जिम्मेदारी हमारी ही है। जी सर, आप क्या बता रहे थे, आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए।
2: जी हम लोग लंपी रोग की जो है लक्षण और उसके जो शुरुआती हैं वो कैसे पहचान करें, इस विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे थे सर।
1: हाँ, तो उसके लक्षण में यही है कि सबसे पहले पशु को बुखार हो जाता है, उसका तापमान, जैसे बुखार का भी दो कंडीशन होता है कि एक तो तापमान गिर जाना होता है और एक तापमान जो है बढ़ जाना, तो इसमें तापमान बढ़ जाता है, ये जो फीवर है इसमें तापमान बढ़ जाएगा और तापमान 105 डिग्री सेल्सियस, ऐसे नॉर्मली पशुओं का जो तापमान 101.5 के आसपास रहता है, 101.5, तो मतलब 101 मैक्सिमम 102 हो जाता है, लेकिन अगर ये वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसका तापमान जो है, हम रेक्टल टेम्परेचर जब लेते हैं तो 105-106 तक देखा जाता है। दूसरे, इसका बुखार लगातार बना रहता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि मिल्क फीवर में होता है, बुखार आया फिर छोड़ दिया, फिर आया फिर छोड़ दिया, इसका बुखार टेम्परेचर कंटिन्यूअस बना रहता है, और उसी बुखार का ही कारण होता है कि जो स्किन में इसके उभार आ जाते हैं, जो गांठें पड़ जाती हैं कंटिन्यूअस बुखार की वजह से, जैसे हम किसी सतह को गर्म करते हैं तो बबल्स यानी कि बुलबुले जैसे उठे, तो लगातार कंटिन्यूअस 2 सप्ताह बुखार की वजह से ही ये पॉक्स जैसे या गांठें जो है शरीर में 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर के व्यास की ये गांठें पूरे शरीर में देखने को मिल जाती हैं, और यही गांठें अगर हम अच्छे से उसका देखभाल नहीं करते हैं तो उसमें पस बन जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं पशुओं को बहुत। ये एक समस्या भी होती है कि ये स्केयर, ये निशान जो भी पशुओं के स्किन पे पड़ जाता है वो आजीवन फिर जाता नहीं है, पशु देखने में आपका जगह जगह से लगेगा कि कट पिट गया है, तो ये इसके लक्षण हैं। आँख से पानी गिरना, नाक से पानी, सलाइव लार का गिरना, तो ये सब चीज़ें भी किसान देख के पहचान सकता है।
2: जी सर जानना चाहेंगे कि मतलब जैसे इससे जो बचाव के जो प्रभावी जो उपाय हैं वो हमारे किसान भाई बहन कैसे करें सर, क्योंकि शुरुआती में अगर हम शुरुआती में कुछ जैसे सावधानियां हैं वो अगर बरतें तो इस रोग से क्या बच सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, देखिए ये वायरस सबसे चीज़ कोई भी बीमारी है हमें उसके संक्रमण पे ध्यान देना चाहिए कि वो उसका प्रसार कैसे हो रहा है, एक्सटेंड कैसे हो रही है। तो अगर हम एक मान लीजिए कि इसको बीमारी किसी जानवर को बीमारी हो गई तो हम ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे मक्खी मच्छर उस पशु को मान लीजिए किलनी है तो किलनी की दवा जो है इन्फेस्टेशन करके कैसे भी जो है हम उसे बूटाक्स का या जो आइबरमेक्टिन जो भी दवाएँ हैं लगा करके और हम किलनी से जूं से टिक जो भी हैं इनसे फ्री रखेंगे। वहाँ पे कोशिश करेंगे कि हवादार स्थान पे पशु को बांधें, मच्छर मक्खी इन सब चीज़ों से दूर रखेंगे ताकि ये बीमारी एक दूसरे से फैले नहीं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि वायरस तो बहुत ही खतरनाक है, मतलब ये 30% तक दूध का उत्पादन कम हो जाता है, पशुओं का वजन घट जाता है, लेकिन इसमें मॉर्टिलिटी रेट बहुत कम है, 1-5% ही मृत्यु दर होती है, पशुओं की मृत्यु दर बहुत कम है। इसलिए हम धैर्य नहीं खोना है, लगातार उसके साथ उसका बचाव करते रहना है। पशु जो है 1-1.5 माह लगता है लेकिन पशु स्वस्थ हो जाता है
2: जी। आप सब जानना चाहेंगे जैसे मान लीजिए इस समय लंपी रोग की बातचीत चल ही रही है, अब ये खुरपका मुंहपका रोग क्या है और इसका जो है क्या प्रभाव पड़ता है पशुपालक जो भाई बहन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: लंपी का यही है कि जैसे हमने कहा कि दुग्ध उत्पादन 30% कम हो जाएगा, 10 लीटर दूध है तो 7 लीटर पे आ गया तो आर्थिक नुकसान किसानों को हुआ। दूसरी चीज़ है पशु को पूरे पशुओं के पूरे शरीर में गांठ हो जाती है, तो गांठ से अब वो क्षता पशुओं की एक तो ख़राब हो जाती है, जीवन भर के लिए निशान हो जाती है पशुओं के, दूसरी चीज़ वो और क्षता के तुलना में वो कमज़ोर हो जाती है, तो भविष्य में वहाँ पर फिर चांसेज होते हैं किसी दूसरे टाइप के इन्फेक्शन की। तो ये नुकसान पशुओं का और किसानों का, दो, एक का आर्थिक नुकसान है उसका शारीरिक नुकसान है, तो मतलब कि जो नुकसान है यही। और हाँ, इनफर्टिलिटी भी, अगर ये इन्फेक्शन मायोकार्डियटिस बोलते हैं, ये इन्फेक्शन आंतरिक रूप से हो जाता है, उस कंडीशन में बांझपन की भी समस्या पशुओं में हो जाती है।
0: जी सर, थैंक यू सो मच सर, आप इतनी जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए हमें, क्योंकि भाई आप सभी की जानकारियां जो है आप जो पहुंचा रहे हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, और मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगी कि कॉल करिए और अपनी जो प्रॉब्लम है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कर लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे करेंगे इस विषय में और भी सारी जानकारी पर बात।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज गोंडा।
2: अरे सुना
3: क्या
2: यही की?
4: हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट और दोस्त आयुषी, लेके आपका अपना प्रोग्राम खेत खलिहान, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं पशुओं के स्वास्थ्य की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर करुणेश दुबे जी, जिनसे आप काफ़ी सारे सवाल कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास इंद्रपाल जी का कॉल आया था, जो कि सीतापुर से हमें सुनते हैं। उनकी भी समस्या का निदान हो चुका है। मैं आपको सर बता दूं कि हमारे चैट बॉक्स में भी एक हरीश चंद्र सविता जी हैं, जिन्होंने मैसेज किया है हमें कि गाय या भैंस को सर जी कभी कोट भागी रोग होता है, तो उसके बारे में क्या आप उसका उपाय कुछ बता दें, तो वो जानना चाहते हैं।
5: हाँ, एक किसान का जो सवाल था कि पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग पर
4: जी
5: बात होनी चाहिए, तो ये जो है ये भी विषाणु जनित रोग है, खुरपका मुंहपका रोग। और जैसा कि नाम में ही है कि पशुओं का खुर पक जाता है, उसके जो हुप्स हैं पैर के सबसे निचले जो सबसे सख्त होता है
4: जी,
5: उसी के अंदर जो मसल है वो पक जाती है इसी वायरस के इन्फेक्शन से। और मुंहपका, जैसे खुरपका और मुंहपका, फुट एंड माउथ, पैर और मुंह की बीमारी
4: जी।
5: तो अब समस्या देखिए कि चलने में भी, अब चूंकि उसका खुर पक गया है, और दूसरी चीज़ है मुंह, जो मुंह के अंदर की जो मांसपेशियाँ हैं, जीव है, वहाँ के जो आसपास के जो भी माउथ कैविटी है, मुख के मुख गुहा बोलते हैं
4: जी,
5: पूरे के अंदर पूरे के पूरे छाले हो जाते हैं। तो पशु भूखा है, जैसे उसकी एपेटाइट है, वो चाहता है कि हम खाएं, लेकिन पशुओं में इतने मुंह में उसमें छाले हो जाते हैं, जीव में और पूरे के पूरे उसके जो आहार नाल के ऊपरी सिरे हैं माउथ कैविटी के
4: जी,
5: तो उसमें वो पशु भूखा होने के बावजूद चारा को नहीं खा पाता है। तो इस कंडीशन में पशु जब खाएगा नहीं तो उसका उत्पादन कम हो जाएगा, उसका प्रजनन की जो क्षमता है धीरे धीरे वो कम हो जाती है, वो कहीं घूम टहल नहीं पाएगा, इससे एक ही इन्वायरमेंट में बने रहने से वो धीरे धीरे बीमारी की ओर ही जाएगा। तो ये मतलब उसके नुकसान हैं। लक्षण आपको ऐसे पहचानने हैं कि फूट एंड माउथ डिजीज, इस खुरपका मुँहपका में पशुओं को बुखार नहीं आता है, आएगा भी तो बहुत हल्का फुल्का आएगा। एक अच्छी चीज़ है कि ये भी जो है इसका मृत्यु दर 1-5% ही होती है। जब ये बीमारी होती है तो ये बीमारी एक साथ हो जाती है, जैसे अगर हमारे पशुशाला में 4 पशु हैं तो आज एक को हुआ, 2 को हुआ, अगले दिन फिर वो सबको फैल जाती है, क्योंकि ये बीमारी जो है इसका जो संक्रमण दर है बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसे समझिए सिर्फ हवा के माध्यम से ये 200-250 मीटर में फैल जाता है। तो ऐसे पशुओं का मल मूत्र या उसका बिछावन या जो हम चारा खिला रहे हैं, वो चारे के बाद जो अवशेष बचता है, ये वायरस वायरस जो है किसी भी पदार्थ को माध्यम बना करके और संक्रमण फैला सकता है। इसका एक तरीका यह भी होता है कि अगर ये पशु एक साथ फैल जाए पूरे में, तो हमारा टारगेट है अगर एक पशु को हुआ है तो आप उसका निदान कर रहे हैं, पता चला 4 दिन बाद वो कंट्रोल में आया, दूसरे पशु को हो गया
4: जी।
5: तो इसमें एक चीज़ हम बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड, कि एक इसका काल होता है कि अगर एक पशुशाला में एक को हुआ तो हम छोड़ दें कि सबको हो जाए, हम एक होता है कि हम क्वारंटाइन करते हैं, लेकिन यहाँ क्वारंटाइन नहीं करना है, हमारा ये उद्देश्य हो कि एक साथ सारे पशुओं को हो जाए, क्योंकि वो अपने इनक्यूबेशन पीरियड को वो वायरस पूरा कर लेगा और हम कंट्रोल उसको कर लेते हैं। तो ये लक्षण ये है कि खुर में छाले हो जाते हैं, मुँह में छाले हो जाते हैं, पशु खाएगा नहीं तो समस्या होगी। अब इसमें भी क्या होता है कि इसमें हमें वैक्सीन लगवानी होती है, और ये जो महीना चल रहा है हम 2 बार इसकी वैक्सीन लगवाते हैं, एक उधर मार्च अप्रैल में और एक जो है हम इस समय लगवा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि वैक्सीन भी सरकारी अस्पताल अगर पशुओं को ले जाएंगे तो वो फ्री ऑफ कास्ट लगा देते हैं, एक पैसा नहीं लेगा डॉक्टर सरकारी अस्पताल में। दूसरी चीज़ है 4 माह का आपका कोई भी बछड़ा है तो उसे हम इसका जो है वैक्सीन लगवाते हैं, FMD का, फुटबैक के नाम से एक वैक्सीन आती है, और फुटबैक रक्षा ओबैक के नाम से है, एल एडजुवेंट ट्राईवेलेंट वैक्सीन, मतलब वो डॉक्टर अपने हिसाब से लगाएगा कि आपके 3 ml से 4 ml वो त्वचा के नीचे, मतलब यह सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है ये लगाएगा। और दूसरी चीज़ है कि वैक्सीन लगवाने के तुरंत जो है 3 सप्ताह बाद फिर बूस्टर डोज लगवाना ज़रूरी होता है, ताकि जो उसके कोई भी उसमें अगर वायरस बचा हुआ है तो वो मृतप्राय हो जाए। और एक बार चार, सबसे पहली वैक्सीन आप लगवा रहे हैं तो 4 माह का बछड़ा, 4 माह से छोटा अगर है तो उसको हमें नहीं लगवाना है। किसी भी पशु को अगर पहले से बुखार है, कमजोरी है, तो ऐसे भी पशुओं को नहीं लगाना है, क्योंकि ये लाइव इनोकुलेटेड होती है। मृतप्राय बैनी की वैक्सीन जो होती है ये और संक्रमण फैला सकती है, तो कमज़ोर पशुओं को नहीं लगाना है। पूरे तरीके से पशु स्वस्थ हो तो लगाएं, 4 माह से नीचे को नहीं लगवाना है। जैसे ही हम वैक्सीन लगवाएं उसके तुरंत 1 माह के अंदर अंदर बूस्टर डोज भी लगवानी है, और फिर लगातार प्रति 6 माह पर एक डोज हमें लगवानी है, अगर आपके यहाँ ये खुरपका और मुँहपका का रोग ज़्यादा होता है तो।
4: जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सर कि जैसे कई लोग कहते हैं कि जो ये रोग होते हैं, और काफ़ी लोगों में ये भ्रांति भी है कि पशुओं को ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनको क्या ही स्किन डिजीज़ होती है, ठीक हो जाता है, तो क्या ऐसी धारणा आपने इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि हाँ, इसको सही कैसे करना है या फिर क्या है?
5: पशुओं का क्या होता है ना कि हम ये मानते हैं कि पशु को अगर कीड़ा पड़ गया तो वो चाट के ठीक कर सकता है, लेकिन वो चाट के ठीक कर सकता है लेकिन वो हर जगह नहीं, उसका वो उसकी जीभ यानी उसका मुंह खुर तक पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन घाव बढ़ता जाता है, वो उसका तरीका नहीं है। हम पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा भी बोलते हैं, लाल दवा को घोल के पशुओं के खुर पर डालें, या जो फिनाइल होती है अगर कीड़े पड़ गए हैं तो फिनाइल या कुनैन डालें, या एक अगर अंदर कीड़े ज़्यादा हैं तो हाइड्रोजन पराक्साइड का एक लिक्विड आता है, हम उसको जब डालते हैं तो उससे भी कीड़े बाहर आएंगे, और हम उसके बाद उसमें कुनैन या बत्ती चला देते हैं कि अंदर फिर से कीड़े ना पड़े। तो ये चीज़ें, एक जो है फुटपाथ का यूज करना है, अगर हमारे पास ज़्यादा पशु हैं तो पशुशाला के पहले, जैसे कोविड के टाइम पे हम लोग हैंडवाश और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जूते को धुल के फिर आगे जाने दिया जाता था, तो वैसे ही फुटपाथ 1 फुट का गहरा गड्ढा बना करके, और वो कम से कम 8 फिट लंबा, 1 फिट मतलब 8x1 फिट का एक गड्ढा, और उसमें पानी भर के उसमें लाल दवा डाल के पशुओं को उसी से जब हम निकालते हैं तो जो भी वायरस है वो लाल दवा से, जो पोटेशियम परमैंगनेट है, उसी से मर जाता है। तो ये हमें उपचार में या उसके बचाव में ये चीज़ें अपनानी चाहिए।
4: जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी आप हमें दी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग जो हैं पशुओं की देखभाल के लिए, मैंने ऐसा लोगों को देखा भी है करते हुए, कि पशुओं की देखभाल ज़्यादा नहीं होती। अब हमें दोस्तों पता चल गया है कि पशुओं की देखभाल करनी चाहिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए हमारे साथ, इतनी ज़रूरी जानकारी आपने साझा की। और भी सारी जानकारियाँ हैं दोस्तों जो आपको बतानी हैं, लेकिन क्या करें, समय हमें थोड़ा सा इजाज़त दे रहा है, हमें फ़िलहाल चलने का वक्त हो चुका है, जा रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि आपसे हम ये वादा करके जा रहे हैं कि नेक्स्ट थर्सडे यानी कि अगले बृहस्पतिवार आएंगे और आपके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर आएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन सभी जानकारी कौन सी आने वाली है ये मैं आपको पहले ही बता देती हूं। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करिए, जो कि इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको क्या सुनने को मिलेगा थर्सडे को यानी कि बृहस्पतिवार को खेत खलिहान में। तो आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं और उसे रेडी भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े आज।
5: रेडियो ज्ञान स्थली का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत धन्यवाद कि आपने कम समय पे हमारे किसान भाई बहनों को और जितने लोगों ने सुना कार्यक्रम हमारा खेत खलिहान, उनको आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए सर ज्ञान स्थली रेडियो परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
5: जी धन्यवाद जी।
4: तो लिसनर लेते हैं आपसे विदा, छोड़ जाते हैं आपको एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ। एंजॉय करिए और बने रहिए हमारे साथ अपने फेवरेट FM रेडियो ज्ञानस्ती 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: School for a better tomorrow. Admissions open from playgroup to class 12. Geeta International School, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
7: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
7: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
8: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
9: डिलीशियस
0: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
9: और क्या क्या है खास?
0: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
9: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
10: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
11: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
11: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
11: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

नमस्कार, प्रणाम और सभन के राम राम। और आप सब सुनत हैं आपन पसंदीदा कार्यक्रम गोंडा मैसेज मसाला आरजे बिना वाला। और आज बताई कि आज ही सांझ इतना सुहाना काहे है, और सुहाना होए के संग संग आज कहूँ कहूँ हरियाली भी दिखाई देत है। फिलहाल आप सबका बताई कि आज से शुरुआत हुई है आपके और हमरे पसंदीदा मौसम यानी कि सावन के, यानी जिका कहा था ना ऑफिशियल शुरुआत। हाँ, तो अब शुरू हो चुका है सावन के महीना, और ये महीना जोने माँ पवन शोर जरूर करत है। तो आप सबन के स्वागत है ई शाम माँ सावन के संगे। कहे कि सावन के हरियर महीना, रिमझिम बरसात, माटी के सौंधी खुशबू, मन माँ उठे ई मीठ मीठ एहसास। रउआ सुनत मानी अपन आरजे वीना के संगे आज के खास बात। आज के ये शाम पूरा समर्पित रही सावन के महीना पे, ऐसन महीना जेकर हर बूंद संगीत बन जाला, हर हवा प्रेम के संदेश लेके आवेला, और हर दिन झूम के उठेला। त चाय के प्याला तैयार रखी, परिवार के संग बैठी, आ चली सावन के रंग में भीज जाई। हमें लागत है कि आज के सांझ जोन है वो सावन के महीना के शुरुआत वाली तो है ही है, लेकिन आज हम आपके मन के एहसास का भी जगावे के प्रयास करब जोन बीते सावन कहूँ अपन घर है ढूंढे माँ हराए गए है, जोन कहूँ बिसर गए है अपन रास्ता, जोने का बहुत मन कहा था अपन सावन महीना माँ फिर से भीजे के आस्था भीजे के बहुते मन होत है, लेकिन उबूंद हमें सबका लागत है कि अरे परेशान कह दी। तो चला आज सबसे पहले शुरुआत हो जाए ई सुहाना गीत के संगे कि सावन के महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर।

अतः चला झूमे के समय आ चुका है और बिना झूमे आज के शाम आज अधूरी रह जाई। तो सबसे पहले शुरुआत के दिन जाए ई गाना के जोने माँ बसत है हमार और रोवा लोगन के परान।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: डिलीशियस
2: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें।

बाद स्टाफ डायरिया कैंपेन में पीएसआई इंडिया व कैम्ब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ओआरएस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपयू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की

सो वापस से सबका सावन के महीना के शुभकामना दिए हुए आए गए ही आपका आपन आरजे बिना आप सबसे बतियावे। हाँ हाँ, तो राधा वर्मा सालपुर से स्वागत है रो आपके। हरिश्चंद जी आपके भी स्वागत है सबके। धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आज दोनों बात है वो शुरू है जी। जैसन कि हम कल आप सबका बताए ना कि आज आप सावन से जुड़ी आपन कोनो याद जोन की आप चाहत हो कि ई दिन ई समय और ई घटना हमरे साथ दोबारा घटे। अगर सावन के महीना लगे तो इस बार जरा हमरे लिए बरसे। वैसे बताई आप सबका तनी खास बात कि देखा हिंदी महीना के हिसाब से सावन के महीना पचवा महीना माना जाता है, जोन की मूल रूप से कहा थे कि भगवान शिव के आराधना के महीना है। वर्षा ऋतु और व्रत त्योहार ई महीना का खास बनाए दिए थे। ई महीना में अगर खास चीज बताई तो बारिश के होप तो खास है ही है, लेकिन जलवायु परिवर्तन भी एक खास चीज है। ई वर्ष आज के तारीख से ई महीना शुरू होता है। कहते हैं कि पौराणिक कथा अनुसार सावन के महीना में समुद्र मंथन भवा रहा और जैसे निकला रहा एगो विष जिसका कहते हैं हलाहल। हलाहल नाम के विष का भगवान शिव सृष्टि के रक्षा करे के लिए अपने कंठ में धारण कर ले ना, जोने कारण उनके नाम नीलकंठ पड़ा। अब बात की जाए जलाभिषेक के। सब कहते हैं कि सावन के महीना में भगवान शिव के जलाभिषेक करे का चाहिए। विष के जो तीव्रता है वो शांत हो जाती और देवी देवता भी निरंतर ई महीना में भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये बात तो बड़ी खास है जिका जाने के बाद में हमारे सबके लिए मतलब सावन के महीना से जुड़ी जो कहा था ना कि उत्सुकता है वो और बढ़ गए हुई। और अगर भोलेनाथ के संदेश के बात करें तो सावन के महीना शिव के प्रिय महीना है और सब कहते हैं कि सच्चे मन से ई महीना में जो पूजा संयम और सेवा करते हैं उकरे जीवन में सकारात्मकता आए जाते हैं। अब इससे जुड़ी और बहुत सारी बात जोन की आप सबका बताए, तब तक के लिए सुनत रहें आपन वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान स्थली 89.6 FM इहा गोंडा शहर का धड़कन।

तो चाहे सावरी सुरतिया होए और चाहे मोहनी मुरतिया होए, अगर आपका किसी भी प्रकार के बर चाही तो सावन के महीना में शिव के जल जरूर परछी। ऐसन कहा था कि अगर शिव के जल परछे सावन भर तो मन इच्छित वर तो जरूर मिल जाता है, और वरे नहीं वधू भी मिल सकत है। तो बिल्कुल आपन आपन जो नियोजना है वो जरूर हमका बताई है कि सावन माँ के का करे वाला है। फिलहाल अगर हमार बात करी तो हम तो आप सबका बहुत कुछ बताए वाली हैं। आज के खास दिन पर सबसे पहले तो कांवड़ यात्रा के जो इतिहास है ओका हम आप सबके साथ उजागर करा चाहे थे कि कांवड़ यात्रा का है। बहुत सारे लोग हैं जोने का मतलब एक बारे में पता ही नहीं कि ये कांवड़ यात्रा है का और ये काहे कीन जात है। तो सावन के महीना शुरू होता है एक नाई दुई नाई लाखन के तादाद में जो भक्त लोग हैं वो भगवा वस्त्र धारण करके नंगे पैर चलत हैं और हर हर महादेव के जयकारा लगावत नजर आवत हैं। सावन के दिन कांवड़िए कंधन पर सुंदर सजी कांवड़ लेके लंबी दूरी यात्रा जो उनका है ना उनका तय करत हैं और गंगा नदी से पवित्र जल लेके या कोनो अन्य पवित्र नदी से जल भर के भगवान शिव के जलाभिषेक करत हैं। कांवड़ यात्रा का भगवान शिव के प्रति भक्ति श्रद्धा और सेवा के प्रतीक माना जाता है। लेकिन आपका पता है कि ये कांवड़ यात्रा निकाली का है जात है और एका पहली बार के की है रहा आज चला आज बिना आपका ये सब बताई है। आपके मन में जून जून सवाल है वो सब आज उत्तर बन के आपके सामने आए जाए। सबलू सामत जी शुभ संध्या, योगेश शुक्ला शुभ संध्या, पागल नीना नीना ज़्यादा ठीक है शुभ संध्या। हमेशा अपने नाम के साथ है कोनो ऐसन विशेषण लगावें जिमा सुने के बाद एगो उम्मीद एगो आशा की किरण दिखे, एगो सकारात्मकता के सोच जागे। कबो ऐसन कोनो भी विशेषण अपने नाम के साथ ना लगे हैं जिसका सुने के बाद आपका खुद भी थोड़ा सा मतलब बेकार लगे। तो चलिए अपने बात का कंटिन्यू करी थे बरकरार करते हुए आप सबका बताई थे कि का है इतिहास। जी हाँ, अगर बात करी पौराणिक कथा के अनुसार सावन के महीना में जो उन कांवड़ लाए के पीछे जो उन कहानी है वो है विष का शीतल करे के एगो कथा जो उनकी हम पहले भी बताए हैं कि जब देवता और असुरन के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध मतलब समुद्र मंथन के लिए, तब उस समय जब समुद्र मंथन से सबसे पहली चीज निकली वो रही विष, और विष का धारण करे वाला कोई नहीं तैयार होता, ना तो असुर और ना ही देवता। तब उस समय भगवान शिव पूरे सृष्टि का बचावे के लिए वो जो विष है वो अपने कंठ में धारण कर ले। विष के कारण भगवान शरीर के जो तापमान है वो बढ़ेला, विष के प्रभाव इतना तेज रहा है कि उनके कंठ जोन रहा वो नीला पड़ गया। यही पाए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है जो उनके बात हम पहले भी आप सबको बता चुके हैं। भगवान शिव के शरीर के जलन और ताप का कम करे के लिए देवी देवता जल अर्पित करे लागे। जल अर्पित करे के कारण भगवान शिव के शरीर ठंडा भवा और विष के जो प्रभाव है उसे राहत मिली। यह मान्यता से सब सावन के महीना में जल लाए के भगवान शिव के अभिषेक करते हैं। अब कांवड़ यात्रा से जुड़ा जो प्रश्न है बड़ा चर्चित है कि कांवड़ यात्रा सावन के महीना में काहे शुरू है, आखिर सबसे पहले के यात्रा के प्रारंभ की है। हालांकि ये प्रश्न के कोनो ऐसा उत्तर नहीं है जो उनकी कहूँ इतिहास में लिखा मिल जाए, पर जो मान्यता है उकर बात बताई कि हिंदू धर्म के अलग अलग ग्रंथन की अगर बात करी तो कांवड़ यात्रा के प्रारंभ और उकर मान्यता के बात तो लिखी है। हालांकि जो कथा ही वो कहा थी कि भगवान परशुराम जोन रहे वो पहली बार कांवड़िया बन के भगवान शिव का जल अर्पित किन्ना। भगवान परशुराम सबसे पहले गढ़ मुक्तेश्वर से कांवड़ में जल लेके उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित पूरा महादेव स्थित शिवलिंग के जल अभिषेक किन रहा। भगवान परशुराम का भगवान शिव के परम भक्त माना जात है। आज भी सावन के महीना में भगवान शिव के जलाभिषेक करे के लिए लाखों संख्या में शिव भक्त पूरा महादेव पहुंचत है। अगला शिव के अभिषेक के अगर बात करी तो भगवान राम के जिक्र होता है।
कहा थे कि त्रेता युग में भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के संगे बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लाई के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम में भगवान शिव के जल चढ़ाई के शिव अभिषेक की ना। अब बात करी थे तीसरे के यानी कि लंकापति रावण के। पौराणिक कथा में लिखा है कि समुद्र मंथन के समय जो सृष्टि का बचाए वाले भगवान शिव के विष जो सेवन कहीं उनके जो तापमान बढ़ा रहा उनका रावण जो रहा भगवान शिव के परम भक्त बन के उनका दूर करे के प्रयास करे सोचे। सो शिव भक्त रावण कावड़ में गंगा जल भर के भगवान शिव का जल के अभिषेक किए जिससे उनका विष से राहत मिली। अगला और अंतिम जो कथा से हमें पता चला है वो है श्रवण कुमार। एक अन्य मान्यता है कहते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार श्रवण कुमार जो है एक बार अपने कंधे पर माता पिता का कावड़ में बिठाई के तीर्थ यात्रा करावे के लिए निकला रहे और वापसी में गंगा जल लेके उनका तर्पण कीना। तो ये है कावड़ से जुड़ी पौराणिक कथा। अब आप सब बताएं कि आप सबके मन में जो सवाल रहे उकर आपका जवाब मिला कि नहीं। अब देखा इतिहास से जुड़े वह ऐसा इतिहास जो उनकी एक दुई नाई लाखन साल पुराना इतिहास है उका जाने के ना तो हमरे बस के बात है ना आपे के, लेकिन जो कथा में लिखा है वो जान के हमें सबका तृप्ति जरूर हो सकती है। और एक खास बात और है, सावन के महीना में सब कहते हैं कि जो शिव भक्त हैं वह शिव मंदिर में दूध जल दही बेलपत्र धतूरा ये सब चीज अर्पित करते हैं और अपन जो इच्छा है वो नंदी के कान में मांगत है। नंदी महाराज के कान में जोन भी आप जोन कहा था मनोकामना या विश मांगे वो सावन के महीना में मांगे ओका मांगे से कहा थे अगले सावन तक वो मनोकामना पूर्ण हो जाती। अब आप सभी सब ट्राई करा चाहें तो कह सकत है, लेकिन तब तक के लिए हम आप सबका ये गाना जरूर सुनाई दी काहे कि सबका मन पसंद के बर तो जरूर है चाहिए।

अब सावन केहू के याद करे या ना करे, लेकिन आरजे वीना अपने लिसनर का जरूर याद करती। और यही बात का आगे बढ़ावे के लिए आप सबका बताई कि आप सब अपने फरमाइश के अपने फरमाइश के भोजपुरी गाना सुन सकत हो और संगे संग सावन के लिए कुछ लिख भी सकत हो। तो सबसे पहले जो सावन के फरमाइश है वो है जी हाँ वो है सबलू सावंत के। तो चला सुना जाए हमारे सबके लिसनर के फरमाइश जो उनकी है। बड़ा प्यारा सा गीत भोला के धाम चला, बड़ा प्यारा गीत, चलिए सुनी सावन का समर्पित ई गाना सबलू सावंत के फरमाइश पर। रूबी विश्वकर्मा शुभ संध्या।

अब अगला गाना जोन है वो है पूजा के फरमाइश के, सुना चाहतीन कोनो देवता के गढ़ सवार हो। फिर एक बार सुना गए गाना के, फिर देवी पे।

अभी आप सब सुना तो रेखा राधा फरमाइश के गाना, शुभ संध्या राजेश कुमार, आशीष जी शुभ संध्या, सभी का सावन के बहुत बहुत मौके।

अगला गाना के ओ रुख करिए। और अगला गाना है हमारे लिसनर श्रीदेवी प्रसाद के, जो श्रीदेवी प्रसाद के गाना रहा वो स्टूडियो में अवेलेबल नहीं रहा, तो श्रीदेवी जी के लिए गाना हम बजावा चाहिए थे। सुने तोर पौ आबा ए माई, सुन के बताएं कैसे नहीं गाना।

तो चलिए अगला गाना की ओर रुख किया जाए। गाना के फरमाइश है इम्तियाज के और आवाज है नील कमल के और बोल है कमरिया।

चलिए अगला गाना के रुख किया जाए। और अगला गाना है हम सबके लिसनर राजेश जी के फरमाइश के, ए गणेश के मम्मी कैलाश नाथ जी के, जो उनकी मोतिहारी बिहार से सुनत है।

अभी आप सुनत हैं अमित के फरमाइश के गाना जा हमरो उमर तोहरा के लाग जाए। और अब बारी है अगला गाना सुने के राजेश के फरमाइश के, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओ।

0: फरमाइश है नई झुलनी सुनीता जी के।
1: बस एक बात हमार मान लेती, ये चिरकुट पहनल छोड़ के मस्त लुग्गा पहन के घूंघट निकाल के हमरे सामने आ जाए तो साला हमार करेजा जुड़ा जाए।
0: ए जी

इम्तियाज लिंक तो आप ना ही दिया रहे, लेकिन आप कमरिया लिखे रहे और नील कमल, तो वो नाम से जो गाना मिला वो काम प्ले कर दिन। अगली बार से गाना के बोल तनी ज़्यादा लिखिए तो गाना आसानी से मिल जाएगी।

बहुते प्यारा गीत सुने के बाद अंतिम गीत के जोन फरमाइश है हमरे रउआ लोगन के लिए बजाए के हमें दिए इजाज़त आप सबके पसंद के गाना सुनाए के बाद हमें जोन तसल्ली मिला थी वो का कही चलत चलत आखिरी फरमाइश जोन है प्रीति के सुन लिए हैं और गाना है बलमुआ हो और ही के साथ है आर जुबीना का दें इजाज़त हंसत रहें मुस्कुरावत रहें और बजावत रहें आपन वाला पसंदीदा शो गोंडा मैसेज मसाला आर जुबीना वाला कल बात हुई है आप सबन के संगे नई फिल्म के और नए वेब सीरीज के तो बिल्कुल कहूँ ना जी हैं ठीक 6 बजे आर जुबीना के संग चाय पे जरूर मिले हैं और आप कुछ खास सुनत हो तो डेफिनेटली ज्ञान सिटी 9.6 FM सुनत हो ये है गोंडा शहर के धड़कन।

0: जाके करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।
1: दो प्यार करने वाले हैं तारे
2: उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ
1: वो अपना चौन,
3: वो अपना चौन।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल, क्या है आज की शाम में बहुत खूबसूरत बात जरूर बताइएगा। मेरी आज की शाम में खूबसूरत बात यही है कि आज मैंने नरक को पूरा एंजॉय किया, मींस इस गाने को पूरा एंजॉय किया है। यह है शहनाज गिल का गाना, जय रंधावा का गाना, बी प्राक का गाना। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है, भले ही पंजाबी गाना है, भले ही कुछ वर्डिंग्स नहीं समझ में आएंगी, भले ही उसका मतलब नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसकी गहराइयां जरूर समझ में आएंगी। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है। सो ऐसे अपनी फरमाइशी की पिटारी को खोल लीजिए अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरह, और उसको लाके एक बहुत ही खूबसूरत सा जज्बात, एक बहुत ही खूबसूरत सी फरमाइश लाके हमारे आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए डेफिनेटली जितने चांद आप लगाना चाहते। आई रियली लव दिस सॉन्ग। सो ऐसे ही अपने जज्बातों का पिटारा खोल लीजिए और चैट बॉक्स में लगा दीजिए डेफिनेटली हजारों लाखों करोड़ों चांद जितने आप लगाना चाहते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, आशा मिश्रा जी लखनऊ से, महेंद्र दीपिन राजस्थान से, राजेश कुमार बेदर्दी गोंडा से, प्रीति शुक्ला जी बहराई से, धर्मेश त्रिपाठी आपका भी स्वागत है, केके गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से दिल से वेलकम इन योर शो, बबीता गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, कमल नयन वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, सुरेश कुमार जी चौक से, निभजी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, कार्तिक कश्यप वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, प्रवीण मिश्रा सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, उदालक शर्मा मनकापुर से, गुनगुन तबिश खान लखनऊ से, प्रवीण मिश्रा, रितेश साहू, ओहो बहुत सारे लिसनर्स हमारे आ चुके हैं। सो आप सभी का दिल से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश, क्यों तैयार हैं आप सभी, एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। लेकिन उसके पहले हमारे एक लिसनर का कहना है कि इश्क में हम हारने को तैयार बैठे हैं, इश्क में हम हारने को तैयार बैठे हैं, बस एक बार वो मुस्कुरा कर कह दे हम तुम्हारे हैं, आए हाय, बस वो कह देगी और आप चले जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए इकाक का दरिया है और डूब के जाना है। सो इश्क इतना आसान नहीं है, प्यार मोहब्बत तो सब कर लेते हैं अनिल वर्मा जी। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का, जिंदगी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस जाते हैं, डिपेंड्स ऑन अपने आप पे ना कि हम उस डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। सो एंजॉय करते हैं मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश और उनको सुनना है गाना खाई थी कसम एक रात सनम। सो लता जी की आवाज में एंजॉय करते हैं सुपर डुपर हिट नगमा, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को, जज्बातों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी और रियलिटी चेक करवाने वाली जज्बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

लता जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये सुरीला नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल वर्मा जी की सैदापुर से। उनको सुनना है राम शास्त्र का गाना विनोद राठौड़ और अलका याग्निक जी की आवाज में। सो एंजॉय करते हैं 90s का सदाबहार नगमा अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मिश्रा जी गोंडा से आपका स्वागत है। के गुप्ता का कहना है तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। सिंपल जी कैसी हैं आप लोगों के दुआओं का असर है कि खुश हो। थोड़े से सुकून की तलाश है जो आप लोगों के पास आके

0: दिन अधूरे रात अधूरे तो अक्सर किसी ना किसी की जिंदगी में होते ही रहते हैं। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है, अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव ना लगा रहे तो जिंदगी फिर जिंदगी कैसी। सो हमने एंजॉय किया विनोद राठौड़ अलका याग्निक जी की आवाज में सदाबहार नगमा। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रीति शुक्ला जी बहराइच से और निबर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, उनको सुनना है गाना मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। फिर से लता जी की आवाज में एंजॉय करते हैं एक ओल्ड इज गोल्ड नगमा, लेकिन इस बार हमारी प्यारी सी आशु जी की फरमाइश पर।
1: मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी
0: मिलती है, लेकिन खो क्यों?

लता जी की आवाज में आंखें का ये गाना हमने एंजॉय किया है। आशा मिश्रा जी की फरमाइश पर अगली फरमाइश है हमारे पास में महेंद्र की राजस्थान से। उनको सुनना है सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में गाना तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा और वरना कवारा मर जाऊंगा। आए हाय, सो एंजॉय करते हैं थोड़ा सा एनर्जी को बढ़ाने वाला गाना, मूड को चेंज करने वाला, वाइब को चेंज करने वाला, लेकिन दिलों में प्यार भर देने वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ महेंद्र की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। मेरे जो लिसनर्स चैट बॉक्स में नहीं आ सकते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप फटाफट से कॉल करके भी अपनी फरमाइशें नोट डाउन करवा सकते हैं। कॉल करना है आपको 6393316429 पर, मतलब 6393316429 पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने एंजॉय किया है ये नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों राजेश कुमार बेदर्दी की गोंडा से, और हमारे राजेश कुमार बेदर्दी को सुनना है गाना अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना। सो एंजॉय करते हैं रिमिक्स वर्जन वाला गाना, उसके साथ में इसमें एडेड है झनकार बीट्स। सो सुपर डुपर डुपर हिट नगमा, सुपर डुपर हिट बीट्स के साथ में एंजॉय करते हैं हमारे सुपर डुपर हिट राजेश कुमार बेदर्दी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आज की प्लेलिस्ट एकदम चक्का चक लग रही है ना दोस्तों। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा, वेलकम इन योर शो। नमस्ते।

सच को बाहों में भर लिया, हमने ये फैसला कर लिया, हमने एंजॉय किया है ये नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रीति शुक्ला जी की बहराइच से। प्रीति शुक्ला जी को बहराइच से सुनना है गाना, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीब। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। थोड़ा सैड है ऐसा लगता है शब्दों से, फिलहाल आवाज है लता जी की। सो एंजॉय करते हैं जंजीर का ये नगमा, ओल्ड इज गोल्ड नगमा, प्रीति जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून एवरीवन। अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। दुनिया से डरना ही क्यों है, दुनिया से प्यार करना सीखो ना।

क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले। हमने इंजॉय किया है ये नगमा प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश पर, जो कि है बहराइच से, वैसे छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन सॉरी, कहते हैं ना कि अपना अपना विचार रखना चाहिए। जिंदगी में हर एक पहलू भगवान दिखाता है, ये ऊपर वाला है ना, हर एक पहलू हर एक इंसान को दिखाता है। किसी को शुरुआत में दिखाता है, किसी को बीच मझधार में दिखाता है, किसी को जिंदगी के अंत में दिखाता है। ये जो मंजिल है ना जिंदगी की, ये जो उम्र है ना, इस उम्र में जब तक हम जीवित हैं, ये आने और जाने के बीच का बीच में कहीं भी कभी भी भगवान आपको एहसास कुछ ना कुछ दिला देगा, है ना। So, ये सबके साथ होता है और यही शायद प्रकृति का नियम है। So, enjoy करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की। धर्मेश त्रिपाठी को सुनना है गाना, जा हमरो उमर तोहरा के लाग जाए। वैसे हमरो उमर तोहरा के लाग जाए, ये पवन सिंह का गाना, अभी तो मैं नहीं बजा सकती हूँ हमारी फरमाइशी की महफिल में, बिल्कुल भी नहीं। तो आप अपने गाने को चेंज करिए, भोजपुरी के अलावा आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, आप कोई भी एक्स वाई जेड गाना फरमाइश कर सकते हैं, हम प्ले कर देंगे। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। केकी गुप्ता जी को दिल से तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से सुनना है गाना, अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में, आंदोलन मूवी का, आएगी हर पल तुझे मेरी याद, मिलने को दिल भी करेगा पर यार। ऐसे कहते हैं केके गुप्ता जी कि जब तक वो चीज हमारे पास में होती है जो हमें चाहिए होती है, वो हमें मिल जाती है, तब तक हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं रहती, लेकिन जब वो मिलकर एक बार बिछड़ती है तब तो अलग लेवल की वैल्यू होती है।

रहेगी हर पल तुझे मेरी याद। ये गाना 90s के दशक का एक ऐसा सदाबहार रोमांटिक सॉन्ग है जो बिछड़ने के गम और सच्चे प्यार के अटूट एहसास को बेहद खूबसूरती से पिरोता है। कुमार सानू और अलका याग्निक की सुरीली जुगलबंदी ने इसमें दर्द और मिठास का ऐसा जादू घोला है कि ये सीधे दिल में उतर जाता है। क्यों के गुप्ता जी, गोविंदा और ममता कुलकर्णी पर फिल्माया ये गीत जतिन ललित के मधुर संगीत और गहरे बोलों की वजह से आज भी हर प्रेमी के दिल को छू लेता है। और वैसे भी मेरी तरह और जिसने इस गाने की फरमाइश की है के गुप्ता जी की तरह प्रेमी, तो आप चिराग लेके ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेंगे। क्यों सही कहा ना मैंने। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश है बबीता जी की गोंडा से। और दोस्तों आपको पता है क्या, अगली फरमाइश एक बहुत ही खूबसूरत से गाने की। मैं बोलूंगी नहीं, पहले सुन लेते हैं, फिर ढेर सारी बातें करेंगे इस गाने के बारे में। किस किस को पसंद है और किस किस को पता चल गया है जरूर बताना। सो ये फरमाइश है बबीता की गोंडा से, और बबीता को गोंडा से सुनना है कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। गेस करिए कौन सा स्टेज है।

बार मोहब्बत की है कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं, और इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। दोस्तों हमने एंजॉय किया है ये नगमा बबीता जी की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। दोस्तों आपको नहीं लगता कि ये गाना पहली मोहब्बत के उस खूबसूरत और अनूठे एहसास को, उस अनूठे फीलिंग को बयां करता है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों की मिठास, इसे हर प्रेमी, मेरी तरह आपकी तरह हर प्रेमी के दिल के बेहद करीब ले जाता है। क्यों सही कहा ना। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, उनको सुनना है गाना। दुनिया की था, तो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अजय देवगन वाला, सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। मैं तो ये गाना पहली बार एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग कित नंबर पे एंजॉय कर रहे हो, मींस आप भी क्या पहली बार एंजॉय कर रहे हो, या फिर दूसरी बार, तीसरी बार, या फिर आपकी भी प्लेलिस्ट में धर्मेंद्र मोहन की तरह ये हमेशा हमेशा के लिए सेव्ड है। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। दुनिया दी था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था, था

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही अतरंगी सा लेकिन सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा और शायद आज से मेरी प्लेलिस्ट में भी एडेड होने वाला गाना सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पे जो कि है आवाज विकास गोंडा से हाउ स्वीट आर यू हाँ हाउ स्वीट यू आ सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश लेकिन उसके पहले तबिश खान का कहना है कि मैम जी गिनती ही नहीं है काउंटलेस है कि कितनी बार ये गाना मैंने सुना है सो आप सभी का भी ये पसंदीदा नगमा है तो आज से डेफिनेटली आपकी आज सिंपल की प्लेलिस्ट में ऐड हो ही चुका है सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश एंजॉय करेंगे लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि हमारे अगले फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से वो भी आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में सो कहीं मत जाइएगा यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन पर अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ और जिन लोगों ने अभी तक पेट पूजा नहीं किया है किसका है ये तुमको इंतजार हाई अभी तक पेट पूजा नहीं किया भाई 9 बजने वाला है ठीक है सो पेट पूजा करके फिर 9 बजे के बाद महफिल में भी तो आना है अपने फरमाइशी के सो जाओ फटाफट से पेट पूजा करके आओ और फिर से फरमाइशी की महफिल में लगाएंगे चार चांद कौन से वाले खुशियों वाले जज्बात वाले अपनों वाले परायों वाले गम वाले और सुकून वाले सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा कार्तिक कश्यप को सुनना है गाना ये चमक ये दमक फुल मनमा महक सब कुछ सरकार तुम्हें से है सो एंजॉय करते हैं ये डिवोशनल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर स्टे ट्यून्ड

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
3: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
5: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
6: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
7: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की, उन पर लागू नहीं होगा।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
8: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा, जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धनशोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
9: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
10: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
11: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ISS ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। ISS अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए।

रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ।

वेलकम बैक इन योर शो फरमाइशी वीडियो आर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो 11.89.6 एफएम गोंडा शहर की। जी हां दोस्तों, एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश क्योंकि फरमाइशी की महफिल में हम सब लोग एकत्रित हो चुके हैं। सो अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों प्रवीण मिश्रा की। प्रवीण मिश्रा को सुनना है गाना सफर। सो एंजॉय करते हैं, आसान लग रहा है सफर देखने में पर, और ये फरमाइश आई हुई है हमारे पास में प्रवीण मिश्रा की। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। नागेश्वर धाकर एंड नवीन राजपूत जी एमपी से आपका भी

कुंवारियों बस जान लो कि दाव लगाने में ही मजा है। हमने एंजॉय किया है सफर सिर्फ और सिर्फ प्रवीण मिश्रा की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। और दोस्तों कुर्सी की पेटी को खोल लीजिए और चैट बॉक्स के डांस फ्लोर पे आ जाइए, क्योंकि आपका दिल, आपका दिमाग, आपका ये तन, ये तन मन सब कुछ ऐसे थिरकेगा और सब कुछ बस यही कहेगा थैंक यू सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से। जी हाँ दोस्तों, इंजॉय करते हैं होगी प्यार की जीत का ये नगमा उदित नारायण की आवाज में, सुपर डुपर हिट आवाज में, सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव की फरमाइश पर। लाखों आशिक मर जाते हैं तेरी मुस्कान पर।

एंजॉय किया ये सुपर डुपर हिट नगमा एनर्जी से भरपूर गाना सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पे जो की है गारा चौकी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ है दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है कमल नयन की। कमल नयन को सुनना है गाना हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम आय हाय कैसे जाने। तो अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में इंजॉय करते हैं लहू के दो रंग का ये गाना झनकार बीट्स के साथ। स्टे ट्यून्ड।

सीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने हमने एंजॉय किया ये नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है गुनगुन दीदी की। गुनगुन दीदी को सुनना है गाना राधा कैसे न जले, सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आशा जी, उदित नारायण, वैशाली सामंत और ए आर रहमान का नगमा सिर्फ और सिर्फ गुनगुन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड, आई लव दिस सॉन्ग। बताओ ना राधा कैसे न जले।

बताओ ना राधा कैसे न जले, हम एंजॉय किया ये नगमा गुनगुन की फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की, उनको सुनना है गाना तेरा नाम लिया तुझे याद किया। सो एंजॉय करते हैं राम लखन का ये नगमा धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर।

तुझे याद, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया और तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, हमें एंजॉय किया मनहार की और अनुराधा जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निब्बर जी की, रानी बाजार सोनार गली गोंडा से। उनको सुनना है गाना इलाहाबाद में मैं पैदा हुई जबलपुर में पली। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही अतरंगी सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा लता जी की आवाज में हमारे निब्बर जी की फरमाइश पर, जो की है रानी बाजार सोनार गली गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

नाम हाय राम कली। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और दोस्तों अगली फरमाइश है हमारी आज की आखिरी फरमाइश। जी हाँ, अगली और आखिरी फरमाइश है हमारे पास में निशा की पटेल नगर गोंडा से। उनको सुनना है गाना जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती। नवीन जी मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा और उसके साथ में नागेश्वर धाकड़। माफी चाहूंगी आपकी फरमाइशी गीत को प्ले करने का समय नहीं बचा है। सो दोस्तों एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश और लेती हूँ अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन आपके अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समून स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना।

ऊपर बालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजू सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजू सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए हमेशा हमेशा के लिए, और आपकी आरजू सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए बेइंतहा बेतहाशा प्यार आप सभी की तरफ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, अपनी खट्टी मीठी कड़वी लेकिन दिल की साफ आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। बाय बाय, अलविदा दोस्तों, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी कल, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, सो मच, थैंक यू गाइस, सो मच केयर, सो मच लव।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9 45 583 53 46।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणस्थली 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। आज का दिन सभी जानते हैं कि आज सावन का पहला दिन है, तो आपको सावन के इस पवित्र और मंगलमयी मास की शुभकामनाएं। लो सावन बहका है, लो सावन बहका है, बूंदों पर खुमार है, मनवा भी बहका है। बागों में मेले हैं, बागों में मेले हैं, फूलों के ठेले हैं, झूलों के मौसम में साथी अलबेले हैं। कलियों पर उभार भवरा भी चहका है, लो सावन महका है। ऋतुएं जो झांक रही मौसम को आंक रही, धरती की चूनर पर गोटे को टाक रही, उपवन पर हो सवार अंबुआ भी लहका है, लो सावन बहका है। कोयलिया टेर रही, आय है क्या प्रकृति होती है, कोयलिया टेर रही, बदली को हेर रही, विरहन की आंखों को आशाएं घेर रही, यौवन पर निखार तन मन भी दहका है, लो सावन बहका है। जी हाँ, तो सावन है साहब, आज श्रावण मास की प्रथम तिथि है, और आप सभी को भाई इस सावन की मुबारकबाद, और हम ये भी जरूर चाहेंगे कि आप सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूरी हो। तो सावन की जब बात चली है, तो आइए आज आपको एक गज़ल सुनाते हैं गुलाम अली साहब की, सावन पर, बहुत ही प्यारी गज़ल। हो सकता है आप में बहुत सारे श्रोताओं ने ये गज़ल सुनी हो, और संभावना इसकी ज़्यादा है कि हो सकता है ना सुनी हो। तो जी, सावन को डेडिकेट करते हुए पहले तो आइए आपको एक गज़ल सुनाते हैं, और इसके बाद बात करेंगे उन शख्सियत की जिनको आज हम आपकी महफिल में ले कर आए हैं। हमारी महफिल का हिस्सा बनिए, और चलिए चलते हैं सावन की दुनिया में। हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास से जुड़ चुके हैं। मनुसर जी, आपका गज़लों की दुनिया में स्वागत है, प्रेम से बहुत बहुत तो धन्यवाद आपको धर्मेंद्र मोहन जी। और आइए अब आपको ले चलते हैं सीधे गुलाम अली के पास, देखिए क्या गज़ल है सावन के लिए, गज़ल क्या कहती है, इसको अनुभव करते हैं, इसका एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं इसको। दिल से सुनिएगा गुलाम अली साहब की बहुत ही प्यारी सी गज़ल, बरसन लागी सावन बूंदिया। देखिए कैसी लगती है आपको गज़ल, अगर अच्छी लगे तो चैट बॉक्स में आकर बताइएगा कि ये गज़ल सावन पर आपको कैसी लगी। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 एफएम, ये है गुणा शहर की धड़कन। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या बात है। और इस गजल को सुदर्शन फाकिज ने लिखा और जगजीत सिंह साहब ने गाया। जी हाँ, और घरौंदे बनाना, बना के मिटाना, बचपन को हम याद करते हैं। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है कि यही मौसम था जब नंगे बदन छत पर टहलते थे, यही मौसम है अब सीने में सर्दी बैठ जाती है। तो आप, समय की बात होती है, वक्त की बात होती है। जी हमारे साथ भाई धर्मेंद्र मोहन के साथ भाई अनोखी शर्मा जी हैं। जी हाँ, स्वागत करते हैं आपका। नवीन राजपूत जी हमको दिखाई दे रहे हैं। ताबिश खान जी हैं लखनऊ से। गुड इवनिंग मनुसर जी, आपको भी शुभ संध्या, आदाब, कैसे हैं आप? और जी हाँ अनोखी जी, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। और गज़ल आपको पसंद आई, इसके लिए आपका धन्यवाद भाई। और स्वागत हमारा आपने कर दिया है भाई धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। अजीत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। और गुरुजी प्रणाम जी, आपको भी प्रणाम। सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं चरण स्पर्श। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगी, कल आपका गीत बहुत अच्छा लगा जी। और ये गजल, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, दिल छू जाती है। वास्तव में जो जिंदगी है ना, उसका जो बचपन का पल हमने जिया होता है। खैर आजकल के बच्चे तो बचपन जी ही नहीं पाते, क्योंकि 2.5-3 साल पर ही विद्यालय में उनका एडमिशन हो जाता है। KG 2 में पढ़ता हूँ और 2 KG का बसता है, ये ज़िंदगी है आजकल के बच्चों की। पहले लोग 5 साल से पहले बच्चों को नहीं पढ़ाते थे ताकि वो अपना बचपन जी सकें, लेकिन आजकल वो देखिए तो बचपन थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। किसी शायर ने लिखा था कि अब वो बरसात में कागज़ की नावें नहीं मिलती, लगता है उनको बनाने वाले बच्चे बड़े हो गए। जी धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ, क्या बात है भाई। और इसके पश्चात भाई विशाल बेदर्दी जी, जी राम राम, आपको भी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और अब जब बात सावन की हुई तो हमने आपको गुलाम अली साहब की एक गज़ल सुनाई जो सावन पर आधारित, और दूसरी गज़ल आपने सुनी जो आपको खींच कर ले गई होगी आपके बचपन के दिनों की ओर। आज जिस शायरा को हम आपके बीच लेकर आए हैं, उन सभी से आप परिचित हैं। नाम है नासिरा जुबैरी। उन्होंने लिखा कि अपने आंगन पाली मिट्टी, हमने खुशबू वाली मिट्टी, सौंधापन। बारिश कभी होती है तो देखिए तो मिट्टी में सौंधापन, और वो खुशबू दुनिया का सारा पैसा लगा कर करके अगर हम उस खुशबू को पाना चाहें तो शायद मुझे लगता है कि वो सौंधी महक शायद ही किसी अप्राकृतिक चीज में हो जो आर्टिफिशियल हो। अपने आंगन पाली मिट्टी, हमने खुशबू वाली मिट्टी, बारिश की पहली बूंदों ने सौंधी सी कर डाली मिट्टी, याद खुदा की आई उसको जिसने बुत में ढाली मिट्टी। लोग कहते हैं कि वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, लोग मिट्टी को ही तो मिट्टी में दफनाने गए, तो ये माटी की देह मिली राख का बिछौना, जिंदगी मिली है जैसे कांच का खिलौना, ऐसी जिंदगी है साहब। तो कहते हैं कि याद खुदा की आई उसको जिसने बुत में ढाली मिट्टी, आपस की चाहत में गुम है, आपस की चाहत में गुम है, बीज कियारी माली मिट्टी, भर जाती हैं सांसें आखिर, सांस समाप्त हो जाती है। हम सभी का दें,
हम सभी का शरीर ऐसा ही है, भर जाती है सांसें लेकिन रह जाती है खाली मिट्टी। इसमें बोकर दीप लहू के हमने और उजाली मिट्टी, मांग रही थी कर्ज जमी का फिर एक बार सवाली मिट्टी, अपनी जान की कीमत देकर, अपने जान की कीमत देकर हमने आज बचा ली मिट्टी। अब ये मिट्टी ये भारत माँ ही तो है। हम अगर देखें ध्यान से देखें तो कहा गया कि जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली तो सोने की लंका थी, तो कहा यहीं रह जाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सोने की लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं माटी में है फूल खिले। ये मिट्टी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है हम सभी के लिए। अपने वतन की मिट्टी से, अपने वतन की माटी से हमको कितना प्यार होता है। मुझे याद आता है वो दृष्टांत की विवेकानंद जी जब लौटे अमेरिका से, तो जैसे ही शिप उतरी जहाज से उतरे तो वैसे ही वो मट्टी पर लौटने लगे। लोगों ने देखा तो कहा क्या कर रहे हैं आप, कहा रे अपनी मिट्टी से इतनी दूर रहा, आज मन करता है कि जरा मिट्टी को अपने अपने देश की माटी को अपने गले से लगा लूं, इसमें लौट जाऊं। और हम सभी ने अपना जीवन घरौंदे बनाकर मिट्टी में खेल कर शायद बिताया हो, अपने से बहुत लोगों ने बिताया होगा अगर आप थोड़े बहुत ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं तो। और अपनी मिट्टी को जरा पीठ जो दिखलाई है, कैसे दर बदर भटकने की सजा पाई है। माटी का ही तो सब खेल है साहब, सब मिट्टी है। हमें अपने देश की माटी से प्यार है तो हम लहू देकर भी अपने देश की माटी को बचाते हैं। जी हम ऐसा धर्मेश त्रिपाठी जी हैं जी, आपका भी अभिनंदन करते हैं। कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आइए आज अब ले चलते हैं भाई आपको, नासिरा जुबैरी को आपने सुना, और अब सुनाते हैं आपको सुखविंदर सिंह जी की आवाज में एक प्यारी सी गजल। सुनते रहिए और रेडियो गणस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

जी हाँ, इसमें मेल सिंगर दो हैं, एक का नाम हमने आपको बता दिया है सुखविंदर सिंह। जरा दूसरे को अंदाजा लगाइए, क्या आप अंदाजा लगा पाते हैं कि आवाज किसकी है? आपके उत्तर की प्रतीक्षा है चैट बॉक्स में।

ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। क्या बात है, अगर हम जिंदगी जो दे उसे मुस्कुरा कर ले लें तो हमको लगता है जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। मुश्किलें तभी होती हैं जब जिंदगी हमें कुछ देती है और उसको हम लेना नहीं चाहते, शायद समस्याएं तभी होती हैं। जी हाँ, मेरे साथ अनिल शास्त्री जी हैं, दादा चरण स्पर्श। आपको शुभ संध्या मनु जी। आज तक मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को मैंने अभी तक सुना था, लेकिन आज आपको उनसे भी आगे। अरे बिल्कुल, अरे ऐसा न कहिए, आप जैसे लोगों से सीख कर ही हम आपको सुनाते हैं, मतलब आप जैसे बड़े से, अपनों से बड़ों से थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होता है और वही आपको समर्पित कर देता हूँ। तो ये आप लोगों का है साहब, हमारा कुछ नहीं है। जी हाँ, धर्मेंद्र जी कहते हैं सर आपकी च्वाइस मिल गई। क्या बात है, क्या बात है भाई धर्मेंद्र जी, च्वाइस मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। और बात कर रहे थे नासरा जुबैरी की, उन्होंने लिखा कि सफर का और कोई सिलसिला निकालेंगे, सफर का और कोई सिलसिला निकालेंगे, भटक गए तो नया रास्ता निकालेंगे। कहा जाता है एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। इस दुनिया में हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। सफर का और कोई सिलसिला निकालेंगे, भटक गए तो नया रास्ता निकालेंगे, करीब आने लगेगी जो वस्ल की मंजिल। वस्ल मतलब करीब हो जाना, मिलन जिसको बोलते हैं आप। हम अपने बीच कोई फासला निकालेंगे, करीब मतलब किसी चीज को पा लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसको पाने की कोशिश करते रहना। अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का एक एस्से पढ़ा एल डोरेडो, और उसमें एक पंक्ति है, टू ट्रैवल होपफुली इज ए बेटर थिंग देन टू अराइव। मंजिल पर पहुंचने से अच्छा है उम्मीद के साथ यात्रा करते रहना। और ये शायद हम अपनी जिंदगी में देखें तो सच भी है। आपको कहीं जाना है, किसी पहाड़ी स्थान पर जाना है और आप रास्ते में हैं तो कल्पना में वो चीज़ें कितनी खूबसूरत होती हैं कि यहाँ आसाम जा रहे हैं, चाय की खेती कैसे होगी उसको देखेंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा, और वहाँ पहुँचने के बाद वो इंथ्यूजियाज़म नहीं रह जाता, वो उत्साह थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होता है। तो उन्होंने कहा कि मंजिल पर पहुँचने से अच्छा है उम्मीद के साथ यात्रा करते रहना। नासिरा जुबैरी जी यही कहती हैं कि अगर हम मिलने लगेंगे तो फासला बना लेंगे, क्योंकि मिलने के बाद चार्म खत्म हो जाएगा। समेट कर किसी कोने में गठरियां गम की, समेट कर किसी कोने में गठरियां गम की, नई खुशी के लिए हम जगह निकालेंगे। जी हाँ, गम तो वही है, ना समझ लाया गम तो ये गम ही से, ये भी सुना आपने, ठीक है आने दो। बनेंगे इश्क के अदालत में हम वकील तेरे, पुरानी बात में नुक्ता नया निकालेंगे, रहे जो उम्र की पूजा के बाद भी पत्थर, रहे जो उम्र की पूजा के बाद भी पत्थर, दिलों से हम वो सभी देवता निकालेंगे। तेरी जफा में, जफा मतलब बेवफाई, तेरी जफा में मिलाकर सितम जमाने के, सितम मतलब जुल्म अत्याचार, तेरी जफा में मिलाकर सितम जमाने के, शराबे गम का अजब जायका निकालेंगे। यानी आपकी बेवफाई और दुनिया के गम, ये जब शराब में मिलेंगे तो एक नया टेस्ट पैदा होगा, एक नया स्वाद आएगा, और हमें खामोश किया जाएगा सदा के लिए, हमें खामोश किया जाएगा सदा के लिए, अगर जबान से कोई सदा निकालेंगे। सदा मतलब आवाज़,

जागने का भी अपना एक महत्व है। बशीर बद्र साहब ने लिखा कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कोई काम कर लिए, है नींद तेरे आज ना आने का शुक्रिया। मतलब अगर नींद नहीं आई तो कुछ काम कर लिया तो शुक्रिया अदा किया, चलो ठीक है। अगर आज खाना खा लिए थे, नींद आ गई होती तो शायद ये काम न कर पाते। ये कहते हैं जिंदगी जो दे उसे हंस के ले लो। आपको नींद नहीं आ रही है तो आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। बशीर बद्र साहब ने इस बात को सिद्ध किया है, नींद नहीं आई तो अच्छा हुआ, कुछ काम कर लिया हमने। रात में जागना, कौन लोग जागते हैं रात में? रात में जागने का काम यही जग जामिन जागे ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। रात में जागने का काम कौन कौन करता है? योगी तपस्वी, रात्रि की पूजा होती है वो रात में जागते हैं। परमारथी दूसरों का हित करने वाले, अचानक कहीं से फोन आ गया कि भैया तबीयत बहुत खराब है, तुरंत चल दिए। प्रपंच, जिसको दूसरे की बुराई करनी हो, वो ये खराब वो खराब। आपने देखा होगा शादियों में लोग पूरी पूरी रात बिता देते हैं या देती हैं। और प्रपंच के बाद वियोगी, जो अपनी मोहब्बत से दूर है वो रात में जगता है। ये अच्छी भी बात है। और वास्तव में वियोग से बड़ा दुख नहीं होता। मैंने पंक्ति लिखी थी कभी कि श्रृंगार देखा न दुल्हन जैसा, श्रृंगार देखा न दुल्हन जैसा, दर्द देखा न बिरहन जैसा, देखने को तो बहुत देखे हैं, साथी देखा नहीं कफन जैसा। तो वियोग का जो दुख है वो शायद इंसान को जगाता है, और कुछ घर की जिम्मेदारियां जगाती हैं। पापा भी कभी कभी जागते हैं रात में कि सुबह बच्चों के लिए ये करना है वो करना है। है कितना मुश्किल सुनहरे गेहूं को रोटी करना, कहीं कमाऊं कहीं पिसाऊं तो घर चलाऊं। घर चलाने वाला व्यक्ति भी रात को जागता है कि सुबह दूध लाना है, इसमें पैसे नहीं है, क्या करूं। जिम्मेदारियां भी इंसान को जगाती हैं। अरे धर्मेश त्रिपाठी जी, क्या लिख दिया आपने, बाय बाय। ओहो, अभी आए अभी बैठे, अभी दामन संभाला है तुम्हारी, जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। नहीं साहब, बाय नहीं कीजिए, अभी ये हमको करने दीजिए। और धर्मेश लिखते हैं, भाई सर जी आपकी बात ओके है, दिल से आप कहते हैं। जी हाँ, कोशिश होती है कि दिल से कहें। और आइए अब चलते हैं एक प्यारी से गज़ल की ओर, और फिर मिलते हैं आपसे इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गन 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

0: जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि वापसी अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो शनिवार को पुनः मिलेंगे आपसे आप ही के कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
1: हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी लाजवाब। अपनी शादी का वीडियो देखते हुए पड़ोस में रहने वाली वंदना भाभी से पूछा, क्या आप इस नीली साड़ी वाली सुंदर औरत को जानती हैं? इस रूपसी का नाम कविता है, ये नीरज की भाभी भी है और पक्की सहेली भी। ये दोनों कॉलेज में साथ पढ़ रहे थे और इसका पति कपिल नीरज के साथ काम करता है। तुम ये समझ लो कि तुम्हारे पति के ऊपर कविता के आकर्षक व्यक्तित्व का जादू सिर चढ़कर बोलता है। मानसी के सवाल के जवाब में वो कुछ संजीदा हो उठी थी। क्या आप मुझे इशारे से ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि नीरज और कविता भाभी के बीच कोई चक्कर है? मानसी बोली, मानसी सच तो ये है कि मैं इस बारे में कुछ पक्का नहीं कह सकती। कविता के पति कपिल को इनके बीच के खुलेपन से कोई शिकायत नहीं है। वंदना भाभी बोली, तो आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि इनके बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है? मानसी बोली, स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण तो नैसर्गिक है, ये देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को भी दूषित कर सकता है। जल्द ही तुम्हारी कविता और कपिल से मुलाकात होगी तो तुम खुद ही अंदाजा लगा लेना कि तुम्हारे साहब और उनकी लाडली भाभी के बीच किस तरह के संबंध हैं। वंदना भाभी बोली, ये बात मेरी समझ में आती है, थैंक यू भाभी। मानसी ने उनके गले लगकर कहा और उन्हें धन्यवाद दिया और फिर उन्हें अच्छा सा नाश्ता कराने के काम में जुट गई। भगवान ने मानसी को सुंदरता देने में कमी शायद जीने का भरपूर जोश और उत्साह देकर पूरी कर दी थी। फिर होश संभालने के बाद दो गुण उसने खुद अपने अंदर पैदा किए। पहला, वो नए काम को सीखने में कभी आलस नहीं करती थी और दूसरा ये कि वो अपने मनोभाव संबंधित व्यक्ति को बताने में कभी देर नहीं लगाती थी। मानसी का मानना था कि इसी कारण रिश्तों में गलतफहमी पैदा होने की नौबत नहीं आती थी। जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में उसके ये सिद्धांत उसका बहुत साथ देते थे। तभी तो वंदना भाभी की बातें सुनने के बावजूद कविता भाभी को लेकर उसने अपना मन साफ ही रखा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है लाजवाब। अब तक आपने सुना, मानसी की शादी हो गई थी और शादी के बाद पड़ोस की वंदना भाभी ने उसके पति और कविता भाभी के बीच कुछ गड़बड़ होने का इशारा दिया, लेकिन मानसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे खुद पर पूरा विश्वास था। अब आगे, इसी हफ्ते मानसी लोग शिमला से हनीमून मनाकर लौटे थे। नई नई शादी थी तो उसका खुमार तो नीरज और मानसी पे होना लाजमी था। लोग कहते हैं कि ऐसा समय जिंदगी में फिर कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए मानसी ने तय कर लिया था कि इस मौज मस्ती को आजीवन अपने दाम्पत्य जीवन में जिंदा रखेगी। उसी दिन कपिल भैया ने नीरज को फोन करके मानसी और नीरज को अपने घर रात के खाने पर आने के लिए आमंत्रित किया। वहां पहुंचने के आधे घंटे के अंदर ही मानसी को ये एहसास हो गया कि इन तीनों के बीच दोस्ती के रिश्ते की जड़ें बड़ी मजबूत हैं। वो एक दूसरे की टांग खींचते हुए बात बात में ठहाके लगा रहे थे। मानसी को कपिल भैया का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली लगा। वो चोरू के गुलाम तो बिल्कुल भी नहीं लगे, पर कविता का जादू उनके भी सिर चढ़कर बोलता था। मानसी के मन में एकाएक ये भाव उठा कि ये इंसान मजबूत रिश्ता बनाने के लायक है, इसलिए उसने विदा लेते समय भावुक होकर उनसे कह दिया, मैंने तो आपको आज से अपना बड़ा भाई बना लिया है। इस साल मैं आपको राखी बांधूंगी और आपसे बढ़िया सा गिफ्ट लूंगी। श्योर, उसकी बात सुनकर कपिल भैया के साथ साथ उनकी माँ की आंखें भी नम हो आईं। मानसी को बाद में नीरज से पता चला कि उनकी इकलौती छोटी बहन 8 साल की उम्र में दिमागी बुखार का शिकार होकर चल बसी थी। अगले दिन शाम को मानसी ने फोन करके नीरज से कहा कि वो कपिल भैया के साथ ऑफिस से सीधे कविता भाभी के घर आए। वो दोनों ऑफिस से लौटे, कविता भाभी के पीछे पीछे घर में घुसे। ये देखकर उन सब ने दांतों तली उंगलियां दबा ली थीं कि कविता भाभी का सारा घर जगमग कर रहा था। मानसी ने कविता भाभी की सास के बहुत मना करने के बावजूद पूरा दिन मेहनत करके सारे घर की सफाई कर दी थी। कविता भाभी की सास खुले दिल से उसकी तारीफ करते हुए उन सब को बराबर बता रही थीं, तेरी बहू का जवाब नहीं है नीरज, कितनी कामकाजी और खुशमिजाज लड़की है। तुम अभी नई दुल्हन हो और वैसे भी ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कविता भाभी कुछ परेशान और चिढ़ी सी प्रतीत हो रही थीं। भाभी, मेरे भैया का घर मेरा मायका हुआ और नई दुल्हन के लिए अपने मायके में काम करने की कोई मनाही नहीं होती। अपनी कामकाजी भाभी का घर संवारने में क्या मैं हाथ नहीं बटा सकती हूँ? उनका दिल जीतने के लिए मानसी खुल के मुस्कुराई थी। थैंक यू मानसी, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ, कहकर औपचारिक से अंदाज में कविता भाभी ने मानसी की पीठ थपथपाई और रसोई की तरफ चली गई। मानसी को एहसास हुआ कि उनकी नाराजगी दूर करने में वो असफल रही है, लेकिन वो भी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्हें नाराजगी से मुक्त करने के लिए वो उनके पीछे पीछे रसोई में पहुंच गई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है लाजवाब। अब तक आपने सुना, शादी के बाद मानसी को एक पड़ोस की भाभी से पता चला कि उसके पति नीरज और कविता भाभी के बीच बहुत गहरी दोस्ती है। शायद कुछ गड़बड़ है, पर मानसी बहुत खुले विचारों की थी और वो जरा भी विचलित नहीं हुई। वो पूरी कोशिश से सबके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करने लगी। अब आगे किचन में कविता भाभी के पीछे पीछे जाकर मानसी बोली, आपको मेरा ये सब काम करना अच्छा नहीं लगा ना? घर की साफ सफाई हो जाना मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? कविता भाभी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उससे उल्टा सवाल पूछ बैठी, मुझे आपकी आवाज में नापसंदगी के भाव महसूस हुए, तभी तो मैंने ये सवाल पूछा। आप नाराज हैं तो मुझे डांट लें, पर अगर जल्दी से मुस्कुराएंगी नहीं तो मुझे रोना आ जाएगा। मानसी किसी छोटी बच्ची की तरह मचल उठी। किसी इंसान के लिए इतना संवेदनशील होना ठीक नहीं है मानसी, वैसे मैं नाराज नहीं हूं। उन्होंने इस बार प्यार से मानसी का गाल थपथपा दिया तो मानसी खुशी जाहिर करते हुए उनसे लिपट गई। उन्हें मुस्कुराता हुआ छोड़कर वो ड्राइंग रूम में लौट आई। तब तक कविता भाभी चाय बनाकर ले आई थी और मानसी ने कपिल भैया और नीरज को अगले दिन रविवार को पिकनिक पर चलने के लिए राजी कर लिया था। रविवार के दिन सुबह 10 बजे वो सब लोग घर से निकलकर नेहरू गार्डन पहुंच गए। मानसी बैडमिंटन अच्छा खेलती थी। उस खूबसूरत पार्क में उसके साथ खेलते हुए भाभी की सांसें जल्दी ही फूल गईं, तो मानसी ने उनके मन में जगह बनाने का ये मौका भी नहीं चूका। भाभी, आपका स्टेमिना बढ़ाने और बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए योगा शुरू करना बहुत जरूरी है। मानसी के मुंह से निकले इन शब्दों ने नीरज और कपिल भैया का ध्यान भी आकर्षित कर लिया था। क्या तुम मुझे योगा सिखाओगी? भाभी ने भी उत्साहित होते हुए पूछा। बिल्कुल सिखाऊंगी, मानसी बोली। कब से? भाभी बोली, अभी से पहली क्लास शुरू करते हैं। उन्हें इनकार करने का मौका दिए बगैर मानसी ने कपिल भैया और नीरज को भी चादर पर योगा सिखाने के लिए बैठा दिया। मुझे योगा भी आता है और एरोबिक डांस करना भी। मेरी शक्ल सूरत ज्यादा अच्छी नहीं है ना, इसलिए मैंने सजना सवरना सीखने पर कम और फिटनेस बढ़ाने पर हमेशा ज्यादा ध्यान दिया है, वार्म अप एक्सरसाइज करवाते हुए मानसी ने कहा।

यानिस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है लाजवाब। अब तक आपने सुना, मानसी और नीरज की शादी हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद पड़ोस की एक भाभी ने मानसी से कहा कि उन्हें उसके पति नीरज और कविता भाभी के बीच की गहरी दोस्ती कुछ सही नहीं लगती। पर मानसी इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। उल्टे वो कविता भाभी, नीरज और उनके पति कपिल भैया सबके दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करने लगी। अब आगे, तुम अपने रूप रंग को लेकर इतना टची क्यों रहती हो मानसी? कविता भाभी की आवाज में हल्के चिड़के भाव शायद सबने ही महसूस किए होंगे। मानसी ने भावुक होकर जवाब दिया, मैं टची नहीं हूं, बल्कि उल्टा अपने साधारण रंग रूप को अपने लिए वरदान मानती हूँ। सच तो यही है कि सुंदर ना होने के कारण ही मैंने अपनी पर्सनालिटी को ऑलराउंड डेवलप करने के लिए बहुत कोशिश करी है, वरना शायद सिर्फ सुंदर गुड़िया बनकर ही रह जाती। सॉरी भाभी, आप ये बिल्कुल मत समझना कि मेरा इशारा आपकी तरफ है। आपको तो मैं अपना आइडियल मानती हूँ। काश कुदरत ने मुझे आपकी आधी सुंदरता भी दी होती तो मैं भी आज अपने पति के दिल की रानी बनकर रह रही होती। अरे मुझे क्यों बीच में घसीट लिया? और कौन कहता है तुम मेरे दिल की रानी नहीं हो? नीरज के हड़बड़ा कर चौंकने ने सबको जोर से हंसा दिया। वो तो मैंने यूं ही डायलॉग मारा था। और मानसी ने आगे बढ़कर सबके सामने नीरज का हाथ चूम लिया। नीरज मानसी के इस हरकत के कारण शर्मा गए तो कपिल भैया ठहाका मार कर हंस पड़े। हंसी से बदले माहौल में भाभी भी अपनी चिढ़ भुलाकर मुस्कुराने लगी थीं। कविता भाभी योगा सीखते हुए भी मानसी से ज्यादा सहज और दिल से खुश नजर नहीं आ रही थीं। सबका ध्यान मानसी की तरफ है, ये देखकर शायद कविता भाभी का मूड उखड़ सा रहा था। उनके मन की शिकायत को दूर करने के लिए मानसी तब तक कुछ देर के लिए अपना सारा ध्यान भाभी की बातें सुनने में लगा रही थी। उन्होंने एक बार अपने ऑफिस और वहां की सहेलियों की बातें सुनानी शुरू की तो सुनाती ही चली गईं। जल्द ही मानसी उनके साथ काम करने वाले सहयोगियों के नाम और उनके व्यक्तित्व की खासियत की इतनी सारी जानकारी अपने दिमाग में बैठा चुकी थी कि उनके साथ भविष्य में कभी भी आसानी से गपशप कर सकती थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है लाजवाब। अब तक आपने सुना मानसी और नीरज की शादी हुई थी। मानसी की पड़ोसन वंदना भाभी ने उससे कहा कि उसके पति नीरज और कविता भाभी का रिश्ता उसके कुछ समझ में नहीं आता, शायद कुछ गड़बड़ है। मानसी देखने में तो उतनी खूबसूरत नहीं थी लेकिन बहुत ही समझदार थी और उसने सबके रिश्तों को समझने के लिए और सबके दिल में जगह बनाने के लिए पूरी कोशिशें शुरू कर दी थीं और अब काफी हद तक सफल भी हो चुकी थी। अब आगे आपके पास बातों को मजेदार ढंग से सुनाने की कला है, अब किसी की भी पार्टी की रौनक बड़ी आसानी से बन जाती होंगी, है ना कविता भाभी? मानसी के मुंह से निकली अपनी इस तारीफ को सुनकर भाभी का चेहरा फूल सा खेल उठा था। उस रात को जब नीरज मानसी के पास आया तो मानसी ने भावुक होकर पूछा, मैं ज्यादा सुंदर नहीं हूं, इस बात का तुम्हें अफसोस होता होगा ना? बिल्कुल भी नहीं, नीरज ने प्यार से उत्तर दिया। अगर मैं भाभी से अपनी तुलना करती हूँ तो मेरा मन उदास हो जाता है, मानसी बोली। पर तुम उनसे अपनी तुलना क्यों करती हो? नीरज बोला, आपके दोस्त की पत्नी इतनी सुंदर और आपकी इतनी साधारण, मैं ही क्या, सारी दुनिया ऐसी तुलना करती होगी, आप भी जरूर करते होंगे। मानसी ने नीरज के मन को टोहने की कोशिश की, तुलना करूं तो भी उनके मुकाबले तुम्हें 21 ही पाता हूं, ये बात तुम हमेशा के लिए याद रख लो डार्लिंग, नीरज बोला। सच कह रहे हो? मानसी बोली, बिल्कुल। मैं शादी से पहले सोचती थी कि कहीं मैं अपने साधारण रंग रूप के कारण अपने पति के मन में ना चढ़ सकी तो अपनी जान दे दूंगी, मानसी बोली। वैसा करने की नौबत कभी नहीं आएगी क्योंकि तुम सच में मेरे दिल की रानी हो, नीरज बोला। आप अगर कभी बदले तो पता है क्या होगा? मानसी बोली। क्या होगा? मानसी ने तकिया उठाया और उनसे लड़ाई करने लगी, तकिए से पीट पीट कर तुम्हारी जान ले लूंगी। नीरज पहले तो उसकी हरकत पर जोर से चौंके और फिर उसे खिलखिला कर हंसता देख उन्होंने भी दूसरा तकिया उठा लिया। उनके बीच तकियों से करीब 10 मिनट तक लड़ाई चली। बाद में वो दोनों अगल बगल लेट कर लड़ने और हंसने के कारण हाँफ रहे थे। आज तो तुमने मेरा बचपन याद दिला दिया, स्वीट हार्ट यू आर ग्रेट, नीरज ने बड़े प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए उसकी तारीफ की। तुम्हें बचपन की याद आ रही है और मैं अपनी जिंदगी के इस समय में सबसे ज्यादा खुश हूं, ये कहकर मानसी नीरज के सीने से लग गई। मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं अपने व्यक्तित्व का विकास करती रहूं ताकि हमारे दाम्पत्य में ताजगी और नवीनता सदा बनी रहे, मानसी ने ये ठान लिया था कि उनका ध्यान कभी इस तरफ जाए ही नहीं कि उनकी जीवन संगिनी की शक्ल सूरत बहुत साधारण सी है। वो होठों पर मुस्कुराएं, दिल में खुशी और आंखों में गहरे प्रेम के भाव भरकर हमेशा यही कहते रहें, मानसी तुम्हारा जवाब नहीं, तुम लाजवाब हो।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी लाजवाब। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अनगिनत ख्वाब थे, हर मुस्कान में जैसे हजारों जवाब थे। पर्दे पर आई तो चांद भी शर्मा गया, मधुबाला नाम ही सिनेमा का खूबसूरत गुलाब थी। संघर्ष की राह पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर किरदार में अपनी आत्मा पूरी उतारी। दर्द दिल में था मगर चेहरे पर मुस्कान रहती थी, यही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची अदाकारी थी।
3: प्रेम मिला, बिछड़ना भी मिला, फिर भी कभी शिकायत न की। जिंदगी ने जितनी परीक्षाएं ली उतनी ही शिद्दत से जी। कम उम्र में दुनिया छोड़ गई पर अमर हो गई, हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बना गई। मधुबाला हमें सिखाती है कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती, सच्ची पहचान इंसान के कर्मों और मुस्कान में होती है। वो आज भी हर दिल में एक चमकता सितारा है, भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और अमर धरोवर है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
2: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
3: आज लेकर के आ रहे हैं उस सिनेमा की खूबसूरत धरोहर के बारे में, जो कि आज भी हमारे दिलों में सिर्फ एक प्यार भरा जब नाम आता है तो प्यारी सी गुदगुदाहट सी होने लगती है। वो प्यारा सा नाम

0: मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने लगभग 22 वर्षों के फिल्मी करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा की अमर अभिनेत्री माना जाता है।
1: मधुबाला का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद पूरा परिवार मुंबई आ गया। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्म बसंत, जो कि 1942 में थी। बाद में निर्देशक किरदास शर्मा ने उन्हें नीलकमल 1947 में पहली बार मुख्य अभिनेत्री में अवसर दिया। तो आइए उन्हीं की फिल्म बसंत से एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: बमक बम बमक बम बमक बम बमक
1: तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग

0: 1954 में आई फिल्म महल ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और मधुबाला की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दी। इन फिल्मों में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ऐतिहासिक और गंभीर हर प्रकार की भूमिका निभाई।
1: मधुबाला केवल अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थी, असल में उनका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर था, बल्कि अपने विनम्र स्वभाव, मधुर मुस्कान और सरल व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध थी। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता था। वे समय की पाबंद, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थीं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई। वो कहा जाता है ना कि सूरत से सुंदर सीरत होनी चाहिए, और मधुबाला की सीरत उनके व्यक्तित्व का दर्पण थी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो कि मधुबाला के दर्पण में उनकी प्यारी सी छवि को दिखाता है।

हमारे भारतीय सिनेमा में प्रेम कहानियों का भी अपना ही दौर है। ऐसी एक प्रेम कहानी थी मधुबाला और दिलीप कुमार जी की, बहुत ही चर्चित। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मतभेदों और परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। बाद में उन्होंने 1960 से 61 के आसपास किशोर कुमार से विवाह कर लिया। तो आइए चलिए सुनते हैं मधुबाला जी का एक प्यारा संगीत।

मधुबाला का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में लिया जाता है। उनकी फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार आज भी अभिनय की महान मिसाल माना जाता है। उनकी मुस्कान, मासूमियत और अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। अगर हम संक्षेप में यूं कहें कि मधुबाला का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्रेम, पीड़ा और अमर विरासत सब कुछ समाहित है। उन्होंने बहुत छोटा जीवन जिया, लेकिन अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत उनकी ऐसी अमर फिल्मों में से जो एक है।

0: प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गाना सिर्फ गाना नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक मील का पत्थर है। इसके पीछे दो सबसे बड़े किस्से बहुत ही मशहूर हैं। नौशाद और गीतकार शकील इस गाने की धुन को और बोल को तैयार कर रहे थे। दोनों पूरी रात जागते रहे लेकिन सही बोल नहीं मिल रहे थे। सुबह तड़के नौशाद को एक लोक गीत की पंक्ति याद आई, प्रेम किया क्या चोरी की। इसी को आधार बनाकर शकील ने तुरंत लिखा, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की।
1: आइए अब मैं आपको बताऊंगी इस गाने में, जो कि मधुबाला ने बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर झेला, भारी जंजीरों का असली दर्द उन्होंने अपने ऊपर इस कदर से झेला था कि इस गाने और पूरी फिल्म में जब अनारकली यानी मधुबाला को जेल में दिखाया गया था तो उन पर असली और बेहद भारी लोहे की जंजीरें बांधी गई थी। मधुबाला उस समय दिल की गंभीर बीमारी से भी जूझ रही थी लेकिन उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी और उसके बावजूद इतनी प्यारी अदाकारा होने के साथ साथ इस गाने को आज भी जब भी हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो जरा सा भी फील नहीं कर पाते हैं, जरा सा महसूस नहीं कर पाते हैं कि इतनी भारी जंजीरों का दर्द उन्होंने कैसे झेला होगा। भारी जंजीरों के कारण उनकी त्वचा भी छिल गई थी और वे दर्द से तड़प रही थी लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आने दी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को एक नए अंदाज में।

एक लड़की भीगी भागी सी। ये बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और रोमांटिक बारिश के गानों में से एक है। इसके पीछे की कहानी काफी मजेदार है। किशोर कुमार हॉलीवुड और वेस्टर्न म्यूजिक के बहुत बड़े दीवाने थे। वे इस गाने के लिए कुछ अनोखा संगीत चाहते थे। उन्होंने संगीतकार एसडी वर्मन से जिद की, गाने की शुरुआत किसी वाग यंत्र से नहीं बल्कि गैराज के औजारों की आवाज से होनी चाहिए, और फिर वैसा ही हुआ। और जब ये गाना बना और सभी ने सुना तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, ये सॉन्ग ये गाना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। और मेरे हिसाब से जब कभी कोई भी रोमांटिक कपल कहीं भी अगर घूमने जाते हैं और ये गाना ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना आज भी सभी के दिलों को गुदगुदा जाता है। इस गाने ने मधुबाला को उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया था। एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग रूप उनके देखे गए थे। फिल्म के निर्देशक शक्ति सावंत ने बताया था कि जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी तब मधुबाला एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया जी रही थी। वे दिन के एक हिस्से में वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब डांसर के रूप में आइए मेहरबान गाने पर थिरकती थी और दिन के दूसरे हिस्से में वे मुगले आजम के सेट पर भारी अनारकली सूट पहनकर प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग कर रही होती थी। दो अलग अलग किरदारों को इतनी सहजता से निभाना उनकी महानता को दर्शाता है। तो आइए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं जो कि है हावड़ा ब्रिज फिल्म से।

0: मुस्कानों की वो रानी हर दिल की धड़कन थी, रूप पहले पर्दे पर उतारी जो जैसे चांद की किरण थी। हर अदा में जादू था, हर नजर में प्यार था। मधुबाला का नाम ही सिनेमा का त्योहार था। दर्द छुपा कर भी उन्होंने हंसना सीखा, हर किरदार में जीवन का रंग सजाया। वक्त ने बहुत कुछ छीना, फिर भी वो मुस्कुराती रही, अपनी कला से हर दिल में अपनी जगह बनाती रही।
1: मोहब्बत की कहानी थी, उसके संग अमर हो गई। हर गीत हर तस्वीर जैसे सुनहरी सहर हो गई। कम उम्र में चली गई पर यादों में बस गई, पीढ़ियों के दिलों में एक रोशनी बन गई। तो आइए दोस्तों, आज इस सफर को यही विराम देते हैं, लेकिन मधुबाला की मुस्कान के संग हम सभी उनको सलाम करते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत थीं जिनके बहुत सारी ऐसे किरदारों को हमने अलग अलग रूप में देखा। जब वो सेट पे होती थीं, तब भी मुस्कुराते हुए काम करती थीं। जब वो एक गंभीर बड़ी बीमारी के साथ जूझ रही थीं, तब भी उनके चेहरे पर हमेशा से मुस्कान हुआ करती थी। तो आइए दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत को, इस महफिल को यही विराम देते हैं। मैं हूँ आपकी आज एक ख्वाहिश, भूले बिसरे गीतों की ये शाम यही थम जाए। फिर मिलेंगे अगली महफिल में, तब तक आप सभी को शुभ रात्रि।